मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तृतीय तिथि तदनुसार 24 जून सन 2026 प्रातः के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सूरज की पहली किरण के साथ हो चुकी है प्रातःकालीन की शुरुआत। सूरज की नरम किरणें थोड़ी देर में संपूर्ण धरा को अपने अंदर समाहित कर लेंगी और संपूर्ण धरती पर नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ये ऊर्जा सिर्फ धरती में ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों में सभी को अपना नया जीवन का आधार देती है। और इसी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाने और अपने श्रोताओं के साथ निभाने के लिए लेकर आ गए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ। हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूं मैं, हूं आपकी रेडियो हमजोली, जी हां संजोली। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है दीन दुनिया की खबर रखने का, यानी समाचार का। तो आइए चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तान

0: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि पर चर्चा भी उतनी ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं खरीफ की सब्ज उत्पादन के विषय में कौशल कुमार नीरज जी से, और आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उद्यान निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक उद्यान कौशल कुमार नीरज साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। नीरज साहब ये बताएं कि

0: जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई, व्यवसायिक ढंग से क्या सलाह है आपकी?
1: किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। खरीफ में जो प्रमुख सब्जियां उगाई जाती हैं वो है खीरा, लौकी, करेला, तोरी और सतपुतिया, चिचिंडा, कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च और बैगन। भिंडी की भी खेती खरीफ में बहुतायत से होती है।
0: और अगेती फूल गोभी भी?
1: हाँ, अगेती फूल गोभी भी होती है, ये अच्छा मूल्य भी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं।
0: इनकी उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी?
1: इसमें खीरा की अगर खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो शीतल वैरायटी है और स्वर्ण अगेती, और करेला जैसे पूसा दो मौसमी है, IIVR से काशी उर्वशी है, प्रिया है। अगर किसान भाई लौकी की खेती करना चाहते हैं तो काशी गंगा, पूसा नवीन, और इसी तरह से कद्दू की खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो पूसा विश्वास, काशी हरित है, और एक नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से बहुत अच्छी वैरायटी निकली है, नरेंद्र अमृत
0: जी।
1: और टमाटर की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं, IIVR बनारस से निकली हुई काशी विशेष है, काशी अमृत है, काशी अनुपम है
0: जी,
1: और एक बहुत अच्छी वैरायटी अविनाश 2
0: जी।
1: वैरायटीज का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। और भिंडी की खेती अगर करना चाहते हैं किसान भाई तो परवनी क्रांति,
0: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की भी
1: कई वैरायटीज हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं, इन प्रजातियों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो जो भी खरीफ की सब्जियां हैं इनकी पौध कैसे तैयार करें या सीधी बुआई करें? जहां रोपाई करनी है वहां तो नर्सरी प्रबंधन करना होगा।
1: स्वस्थ पौध उत्पादन एक सबसे बड़ा सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक अंग है। इसके लिए लो टनल पाली हाउस में पौध तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा उद्यान विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में हाईटेक नर्सरीज की स्थापना कराई जा रही है इस उद्देश्य से,
0: और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
1: जैसे कन्नौज है, बस्ती है, वहाँ से भी प्राप्त करके किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, और रोग रहित पौध मिलती है, क्वालिटी पौध मिलती है, तो इसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं।
0: इसकी बुआई या नर्सरी कब तक डाल दें किसान भाई?
1: 3 प्रकार की प्रजातियां सामान्य रूप से होती हैं, अगेती प्रजाति, मध्यम प्रजाति और लेट प्रजाति, जो विलंब से बोई जाने वाली प्रजातियां
0: जी।
1: तो इनमें 15-15 दिन का अंतर होता है लगाने का। इस प्रकार से हम तैयारी करते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं सभी फसलों में, अर्ली प्रजाति के थोड़ा पहले पौध डालते हैं। ये जून जुलाई में सारा काम पौध लगाने का होता है और 4 हफ्ते में लगभग पौध तैयार हो जाती है रुपाई के लायक
0: जी। और उसके पहले जिस खेत में रुपाई करनी हो उसकी भी तैयारी करनी होगी?
1: हाँ, वो अवश्य उसकी तैयारी, गर्मी की जुताई से लेकर के उसमें खाद उर्वरक का प्रबंधन होता है। भूमि शोधन करना ट्राइकोडर्मा से लाभकारी होता है, इसमें कई प्रकार की फफूंदी जनित बीमारियों से मुक्ति मिलती है।
0: कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेत में सीधी बुआई करें या पौध पहले से तैयार कर लें?
1: उचित होता है कि पौध ही तैयार करें, पौध तैयार कर रुपाई करते हैं तो अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। रुपाई के समय ध्यान देने की बात है कि फसल चक्र का ध्यान रखना चाहिए, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मिट्टी की जांच किसान भाइयों को जरूर करा लेनी चाहिए। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उसकी भरपाई हो जाए। किसान भाइयों को ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई विधि का प्रयोग करना चाहिए तो न उनके केवल उत्पादन में 15-20% वृद्धि हो रही है बल्कि वे पानी की बचत भी कर रहे हैं।
0: नीरज साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 9412463510, 94124-63510, 94124-63510।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में?
1: पानी की बहुतायत होने से खरीफ में कई बार फसल खराब हो जाती है, तो कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती हैं उनको मशान पे लगाने का प्रयास करें कि गुणवत्ता युक्त उत्पादन उनका कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्राप्त होता है।
0: कौशल कुमार, नीरज साहब आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में सब्जी उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में, विषय था खरीफ में सब्जी उत्पादन। मीडियम वेव 401.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का

0: निर्माण करते हैं। इसलिए विचारों का सही और अच्छा होना बेहद जरूरी है। तो आइए सुनते हैं ये सुविचार विद्या धन सर्वोत्तम धन डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ला जी से।
1: संसार में विद्या को सबसे बड़ा धन माना गया है और मनुष्य को सभी जीव जंतुओं में सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि मनुष्य विद्या और बुद्धि के बल पर ही प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जो मनुष्य विद्या से वंचित रहता है उसका जीवन पशु सदृश होता है, क्योंकि मनुष्य और पशु का विभेदक तत्व विद्या है। विद्या के द्वारा मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, जिससे वह अधिकार और कर्तव्यों को सही अर्थ में समझने में सक्षम होता है। विद्या से मनुष्य के अंतःकरण में विवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि विद्या विवेक की जन्मदात्री है। कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम् विनयाद यादि पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमापनोति धनाद् धर्मः ततो सुखम्। संसार में जितने भी प्रकार के धन हैं, उन सब में विद्या धन को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। विद्या धन अमूल्य और अनश्वर धन है, इसका नाश कभी नहीं होता, जबकि अन्य सभी धन नष्ट हो जाते हैं। महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतक ग्रंथ में विद्या धन को सामान्य प्रसिद्ध धन से विलक्षण बतलाया है। वे लिखते हैं, हर्तुर याति न गोचरम किमपि श्रम पुष्णाति यः सर्वदा त्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान मनिषम् प्राप्नोति वृद्धिम् पराम् कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। जो धन चोर को दिखाई नहीं पड़ता है, सदैव अनिर्वचनीय सुख प्रदान करता है, निरंतर बांटने पर भी बढ़ता है तथा प्रलय काल में भी विनष्ट नहीं होता है, वह विद्या नामक गुप्त धन जिनके पास है उनके प्रति हे राजाओं गर्व को छोड़ दो, उनकी स्पर्धा करने वाला कौन है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्या ही व्यक्ति की श्रेष्ठ सुंदरता तथा अत्यंत गुप्त संपत्ति है। विद्या भोग विलास प्रदान करने वाली है, कीर्ति एवं सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है, परदेश गमन में बंधु के समान सहायक है। विद्या सबसे बड़ी देवी है, राजाओं के यहाँ विद्या ही पूजित होती है, संपत्ति नहीं। अतः विद्या विहीन पुरुष पशु ही है। न चौर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा दंड में ले सकता है, न भाई बंटा सकता है और न यह कभी बोझ हो सकता है। विद्या धन तो ऐसा धन है जिसे जितना ही बांटा जाता है वह उतना ही और बढ़ता चला जाता है।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये सुंदर सुविचार कि विद्या धन सर्वोत्तम धन है और वाकई में ये धन ऐसा है जिसे ना कोई बांट सकता है और ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, भक्ति वो रस है जो जीवन को आधार और विश्वास दोनों देती है। तो आइए श्रोताओं डूबते हैं इस भक्ति के रस में और सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।

श्रोताओं, भक्ति के मार्ग पर चला हुआ हमारा एक कदम हमारे संपूर्ण जीवन को आधार देता है, संपूर्ण जीवन को संतुलित करता है। आराधना चाहे अपनी हो, आराध्य की हो, या फिर अपने भीतर की हो,

हे मनुष्य, अपने सारे जीवन के कर्मों को अपने इस इष्ट को ईश्वर को समर्पित करते चलो। अपने जीवन में कर्म को प्रधानता बनाओ और भक्ति के रस में डूब जाओ। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगली वंदना। कि श्याम तेरी बंसी की धुन मन को बहुत लुभाती है, तेरे नाम की मधुर छाया जीवन में सुख लाती है। मोर मुकुट और पीतांबर में तू सबसे प्यारा लगता है, हे कान्हा तेरी भक्ति से हर दुख दूर हो जाता है।

श्रोताओं, भक्ति योग की वो साधना है जिसमें जीवन मनुष्य सभी कर्मों को करते हुए निरंकार की ओर बढ़ता है। जी हाँ, अपने सभी कर्मों को पूर्ण करते हुए योग की तरफ अपने आप को इस मोह माया से दूर करते हुए निरंकार की ओर जोड़ता जाता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगली वंदना कि भोले के दर पर जो झुकता है उसका हर दुख मिट जाता है, महादेव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आ जाता है, जटा में गंगा शीश पे चंदा गले में नाग सुहाता है, हर हर महादेव का जयकारा भक्तों को पार लगाता है।

0: कि हे ईश्वर, हमें इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करो। हमारे कर्मों की जो गठरी हमारे साथ है, उसको धीरे धीरे हल्का करो और धीरे धीरे अपने आप में विलीन करो। भक्ति वो मार्ग है जो हमें ईश्वर की ओर कदम दर कदम बढ़ाता जाता है। ताइए श्रोताओं, सुनते हैं ये अगली वंदना कि मर्यादा के प्रतीक हैं राम, सत्य का देते हैं ज्ञान, दया धर्म और प्रेम से भरते हर जन का सम्मान, वन वन भटके लोक हित में निभाया हर कर्तव्य महान, जय श्री राम के पावन नाम से उज्जवल होता जीवन पथ और प्राण।
1: जो क्षणिक नहीं अविनाशी हो, जहां बंधन नहीं समर्पण हो, जहां मात्र वचनों पर भावनाएं न टिकती हों, जहां बिना स्वार्थ सच्ची लगन बरसती हो, वो ही प्रेम है। ऐसे प्रेम के ही दो अविस्मृत पात्र हैं, मीरा और तुलसीदास। मीरा जो कृष्ण के प्रेम में जोगन हो गई, और तुलसी जो राम में ऐसे रमे कि संपूर्ण रामचरितमानस ही रच डाली। एक सारे सुखों को त्याग कर गली गली भटकती रही अपने मोहन की एक झलक पाने को, और एक पत्नी के ठुकराए हुए चल दिए राम की खोज में गहन पीड़ा से मुक्ति पाने को। हर घड़ी परीक्षा की थी, हर मोड़ कांटों से भरा, परंतु ना ही उनके कदम डगमगाए ना ही माथे पर बल पड़ा। मीरा जो अपने गिरधर गोपाल को अपने आप में समेट लेना चाहती थी, तुलसीदास जो सारे संसार को राम नाम की गुंजन देना चाहते थे, अंततः दोनों की तपस्या रंग लाई। मीरा को मिला दरस श्याम का, तथा तुलसी ने दी इस जग को आस राम की। शरीर मिट जाते हैं परंतु प्रेम चलता ही रहता है। जीवन के रहते सांसों में तथा जीवन के बाद स्मृतियों में, आइए स्मृतियों के सागर में डूबकर हम भी ढूंढ निकालें वो सच्चा मोती प्रेम का।

जीवन में रस का होना जरूरी है, और साथ ही साथ अगर भक्ति रस जीवन में जुड़ता है तो वो हमें आधार और संयम दोनों देता है। आइए श्रोताओं सुनते हैं ये अगली वंदना की मुरली की धुन। मुरली की मधुर तान है कान्हा, राधा के प्राणाधार हैं, भक्तों के हर संकट हरने वाले जग के पालनहार हैं। मोर मुकुट पीतांबर शोभे, अधरों पर मुस्कान प्यारी, जय श्री कृष्ण कहने से मिटती है जीवन की हर विपदा प्यारी।

ये है ईश्वर हम पर अपनी दया दृष्टि यूं ही बनाए रखना और हमें अपने शुभ चरणों में स्थान देना। इसी मंगल कामना के साथ आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव 400.6 मीटर पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। महान ग्रंथों में से एक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो करता है चरित्र का निर्माण। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 111। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। भाग 111, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रिय सुरक्षा

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, इसलिए जरूरी है खुद को स्वस्थ रखना। तो आइए श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में सुनते हैं सालर आयुर्वेद की एक प्रभावी औषधि के विषय में नीना सोनकर से।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि की जो आयुर्वेद की दुनिया में लंबे समय से अपनी खास जगह बनाए हुए है।

0: आम बोलचाल में या घरेलू उपचारों में बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। ये औषधि है सालर। ये नाम सुनते ही बहुत से श्रोताओं को ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये क्या है, किससे बनती है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। आज का ये संवाद इसी जानकारी को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। सालर एक प्रकार का वनस्पति स्रोत से प्राप्त गोंद होता है जो विशेष प्रकार के पेड़ों से प्राप्त होता है, विशेषकर शोरिया रबस्टा नामक वृक्ष से। ये पेड़ भारत के जंगलों में विशेष रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इस पेड़ से निकलने वाला गोंद ही सालर कहलाता है। इसे जंगलों में पारंपरिक रूप से संग्रहित किया जाता है और लोक चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग बहुत पहले से होता आया है। सालर की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये शरीर को मजबूती और शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। इसका सेवन विशेषकर हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द और थकावट जैसी स्थितियों में किया जाता है। ये शरीर को भीतर से पोषण देकर नई ऊर्जा प्रदान करता है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां शारीरिक श्रम अधिक होता है वहां सालर का उपयोग शरीर को ताकत देने वाले मिश्रणों में किया जाता है। इसे गर्म दूध या देसी घी के साथ मिलाकर दिया जाता है ताकि शरीर में जमी ठंडी और सूजन जैसी शिकायतें दूर हों। आयुर्वेद में इसे वायु विकार नाशक माना गया है, यानी जो वात दोष को संतुलित करता है। जिन लोगों को जोड़ों में अकड़न, कमर दर्द, घुटनों की पीड़ा या स्नायु संबंधित परेशानियां होती हैं, उनके लिए सालर एक प्राकृतिक उपाय के रूप में सामने आता है। ये मांसपेशियों की मजबूती में सहायक होता है और बुजुर्गों में विशेष रूप से ये बहुत उपयोगी पाया गया है। गर्भवती स्त्रियों और प्रसव के बाद महिलाओं को दी जाने वाली परंपरागत मिश्रणों में सालर को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये गर्भाशय को मजबूत करने और शरीर की खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। श्रोताओं, एक और दिलचस्प बात ये है कि सालर का उपयोग केवल अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि बाहरी उपचारों में भी किया जाता है। ये त्वचा पर लगाने वाले लेपों में शामिल किया जाता है, खासकर सूजन, मोच या मांसपेशियों की जकड़न में। इसकी शीतल और स्थिर प्रकृति इसे एक बहुआयामी औषधि बनाती है, जिसे आधुनिक विज्ञान अभी भी धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि श्रोताओं, सालर का सेवन किसी विशेषज्ञ वैद्य की सलाह से ही करना उचित होता है, क्योंकि इसकी मात्रा और प्रयोग विधि शरीर के दोषों और प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाती है। लेकिन इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शुद्ध और प्राकृतिक होती है, न उसमें रसायन होते हैं न ही कोई मिलावट, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्वस्थ जीवन की ओर एक पारंपरिक लेकिन ठोस कदम। श्रोताओं, आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का संग्रह ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, और सालर जैसी औषधियाँ हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारी धरती ने हमें कितनी अद्भुत चीजें दी हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन परंपराओं को दोबारा अपनाएं, उन्हें समझें और अपने जीवन में स्थान दें। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमने जाना सालर के बारे में, ये क्या है, कहाँ पाया जाता है और श्रोताओं, इसके फायदे क्या क्या हैं। अगली बार जब आप किसी वैद्य या हर्बल उत्पादों की दुकान पर जाएं, तो सालर का नाम जरूर याद रखें। ये आपकी रसोई में ही नहीं लेकिन आपकी औषधि पेटिका में एक अनमोल स्थान रख सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर को। विषय था सालर, आयुर्वेद की एक प्रभावी औषधि। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत का आप आनंद ले सकेंगे आज रात्रि 10:30 पर और प्रातः 7:31 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे पार्थ प्रीतम दास का ख्याल गायन। हारमोनियम पर संगत करेंगे दिनकर द्विवेदी और तबले पर होंगे सौरभ सिंह।

रात 8:10 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनेगा जगजीत सिंह की आवाज में गजलें। हिंदी कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00, जिसमें आज आप सुनेंगे एक वार्ता डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से। विषय होगा मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। कानून की बात, ये कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता एडवोकेट सुनीति सचान से। विषय होगा विधवा महिलाओं के अधिकार और आपसे बात करेंगी सुमोना पांडे। हमारे किसान भाइयों का फोन इन प्रोग्राम हेलो किसान होगा शाम 6:30 पर। नई उड़ान का समय होगा शाम 5:45 पर और युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग होगा शाम 5:10 पर।

श्रोताओं, मुकेश गुप्ता जी के स्वर में भोजपुरी लोकगीतों का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में और प्रातः 9:50 पर कार्यक्रम लोक रंग में। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान और किसान, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता डॉक्टर अर्चना देवी से। विषय होगा खरीफ में बीज उत्पादन तकनीक और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

मातृ शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी होगा दोपहर 1:15 पर, और हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए आप सुन सकेंगे दोपहर 1:50 पर। फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आप सुन सकेंगे प्रातः 11 बजे। उर्दू कार्यक्रम नशर किया जाएगा सुबह 9:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे मुहर्रम पर खुसूसी कार्यक्रम मेराज जिंदगी शहादत हुसैन की। तहरीर और आवाज होगी मोहम्मद फर्रुख जमाल की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोरखपुर की पेशकश होगी। प्रातः 9:15 पर आप सुन सकेंगे श्रावस्ती व सीतापुर जिले की हलचल। श्रोताओं के पत्र व मेल पर आधारित इंटरैक्टिव फोन प्रोग्राम होगा आपके मेल व आपके गीत प्रातः 8:45 पर।

तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज का विषय है खुशी, विकल्प अथवा

मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य यदि किसी एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो वह है खुशी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति और आनंद की तलाश करता है। जी हाँ, जो भी कार्य वो करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं खुश रहने की इच्छा छिपी होती है। कोई धन कमाता है, कोई शिक्षा प्राप्त करता है, कोई प्रतिष्ठा अर्जित करता है और कोई संबंधों को सहेजता है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य अंततः खुशी प्राप्त करना ही होता है। किंतु प्रश्न ये है कि क्या खुशी एक विकल्प है जिसे हम स्वयं चुनते हैं, अथवा ये हमारे कर्मों और परिस्थितियों का परिणाम है? इस विषय पर विभिन्न विचार हैं। वास्तव में खुशी न केवल एक परिणाम है बल्कि एक विकल्प भी है। दोनों का जीवन में समान महत्व है। सबसे पहले यदि हम खुशी को परिणाम के रूप में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तब हमें खुशी का अनुभव बिल्कुल होता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो वह प्रसन्न होता है। एक खिलाड़ी प्रतियोगिता को जीतता है तो वो भी खुश होता है। एक किसान की फसल अच्छी हो जाती है तो उसका मन आनंद से भर जाता है। इसी प्रकार जीवन में सफलता, सम्मान, धन, परिवार का प्रेम और अच्छे स्वास्थ्य जैसी उपलब्धियां खुशी का कारण बनती हैं। जी हाँ, इस दृष्टि से खुशी हमारे प्रयासों और परिस्थितियों का परिणाम कहीं ना कहीं प्रतीत होती है। लेकिन यदि खुशी केवल परिणाम होती तो सभी सफल और संपन्न लोग सदैव प्रसन्न रहते? वास्तविकता कहीं इससे भिन्न है। संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन, प्रसिद्धि और सुविधाएं हैं, फिर भी वे तनाव में हैं, चिंता में हैं, असंतोष है। फिर वे तनाव, चिंता और असंतोष से ग्रस्त क्यों हैं? दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सीमित संसाधन है लेकिन वे संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई देते हैं। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये खुशी का दूसरा पक्ष सामने आता है। खुशी एक विकल्प है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी लाभ होता है तो कभी हानि। ये समय में व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है कि वह खुश रहेगा या दुखी। यदि हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ लेंगे और हमारे पास है। और जो हमारे पास है उसके लिए अगर हम कृतज्ञ रहेंगे तो हम कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि खुशी तब मिलती है जब आपका विचार, वचन और कर्म एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। ये कथन बताता है कि खुशी बाहरी वस्तुओं से अधिक हमारे आंतरिक संतुलन पर भी निर्भर करती है। यदि हमारा मन शांत है और हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं तो खुशी हमारे भीतर स्वतः ही उत्पन्न होने लगती है, हिलोरे लेने लगती है। आज के आधुनिक युग में लोग खुशी को अक्सर भौतिक वस्तुओं से जोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि अधिक धन, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद मिलने पर वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वे इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप वे कभी पूर्ण संतुष्टि अनुभव नहीं कर पाते। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि खुशी का वास्तविक स्रोत बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि मन की संतुष्टि है, जो हमें कहीं ना कहीं अवश्य ढूंढनी पड़ती है। खुशी का विकल्प मानने का अर्थ ये नहीं है, अगर हम खुशी को विकल्प मान भी लेते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जीवन में प्रगति करना, सपनों को पूरा करना आवश्यक है। किंतु यदि हम अपनी खुशी को केवल भविष्य की उपलब्धियों पर निर्भर कर देंगे तो वर्तमान का कहीं ना कहीं आनंद हम खो देंगे। हमें यह सीखना चाहिए कि सफलता की यात्रा के दौरान कि खुश भी कैसे हुआ जाता है, कि अगर आपकी यात्रा भी चल रही है तो आप उस दौरान भी खुश कैसे हो सकते हैं। क्या यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए, सपनों को पूरा करना है इसलिए, लेकिन हाँ, उसके बीच में कहीं ना कहीं संतुष्टि के साथ खुशी को भी महसूस कीजिए। इसके लिए महत्वपूर्ण कई उपाय हैं। पहला है सकारात्मक सोच विकसित करना। दूसरा, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना, कहते हैं ना हमेशा ऊपर वाले को थैंक यू बोलना। तीसरा, स्वस्थ संबंधों को महत्व देना, जो कि आपके आसपास के आपके रिश्ते हैं उनको सहेज के रखना। परिवार और मित्रों का साथ व्यक्ति की सच्ची खुशी प्रदान करता है। जब आप दुखी और परेशान होते हैं ना तो वो छोटी सी खुशी आपको एक माँ का

छोटा सा कॉल दे देता है। आपके मित्र की एक छोटी सी बात आपको खुशी दे जाती है। चौथा, दूसरों की सहायता करना। जब भी कभी आपको लगे कि हाँ किसी इंसान को आपके सहारे की या आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो बिना कहे उसकी सहायता करने की कोशिश करना। वो भी आपको कहीं ना कहीं छोटी सी खुशी ज़रूर देगी। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। पांचवा, वर्तमान में जीना। अतीत की गलतियों और भविष्य को चिंताओं में उलझने के बजाय वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। भविष्य पता नहीं क्या है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है, और जो बीत गया उसको बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। जहाँ वर्तमान में है वहाँ का आनंद लेना है। भारतीय संस्कृति में भी खुशी को आंतरिक अवस्था माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी संतोष को सबसे बड़ा धन बताया गया है। कहा भी गया है कि संतोषा परमम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है। यह शिक्षा में हमें बताती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और संयम रखता है, वही वास्तविक खुशी को भी प्राप्त कर सकता है।

0: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार होंगे। चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक

0: गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
1: हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
2: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी, आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
0: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में एसआईटी का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2-4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।

0: हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
1: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह

0: एसआईटी की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
1: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य, इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश, कहा आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी लखनऊ है। श्रोताओं, संगीत हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। संगीत अनुशासन और लयबद्धता सिखाता है। शास्त्रीय संगीत का उसका एक सटीक उदाहरण है। आइए श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनते हैं पार्थ प्रीतम दास का ख्याल गायन, राग नट भैरव। हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं दिनकर द्विवेदी और तबले पर हैं सौरभ सिंह।

Gama,

Gamma,

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पार्थ प्रीतम दास का ख्याल गायन, राग था नट भैरव। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे दिनकर द्विवेदी और तबले पर थे सौरभ सिंह। और श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। कल फिर हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में नई आवाज के साथ। मीडियम वेव 400.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में इस समाचार प्रभात होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर

0: राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है। हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने

0: राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यंग बरेली।

0: हेलो
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम यंग बरेली में।
0: जी मैम, थैंक यू.
1: जी, क्या नाम है आपका?
0: मेरा नाम आन्या सिंह है.
1: जी आन्या जी, ये बताएं आप कि आप किस खेल से संबंध रखती हैं श्रोताओं को। जी
0: मैम, मैं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग करती हूँ.
1: जी, तो एयर राइफल शूटर्स हैं आप।

0: कैसे शुरुआत हुई इसको करने की?
1: मैंने 2023 में एक बोर्डिंग देखी थी स्टार स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी की और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी उसे करने के लिए और मैंने फर्स्ट टाइम वहीं से ही ट्राई किया था और उसके बाद से अभी तक मैं वहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो कंटिन्यू वहीं हैं आप?
1: हाँ जी।
0: तो मतलब जो आपकी शुरुआत हुई वो 2023 से ही हुई?
1: हाँ जी।
0: तो अब आप किस लेवल पर हैं ये बताएं श्रोताओं को।
1: मैंने अभी इंटर स्कूल नेशनल खेला है 2 बार और अभी मैं करंटली अयोध्या में हूँ, फ्री स्टेट के लिए आई हूँ
0: जी,
1: और
0: जी।
1: काफी मैचेस मैं भी खेल चुकी हूँ।
0: और वहाँ भी शायद आप इस समय अपनी प्रतियोगिता में ही हैं अयोध्या?
1: हाँ जी, मैं मैच में ही हूँ
0: जी। और रहने वाली आप बरेली की ही है?
1: हाँ जी।
0: तो ये बताइए नेहा, इस समय आप जो एजुकेशन आप इस समय जो एजुकेशन आपकी चल रही है वो आप किस स्टैंडर्ड की ले रही हैं?
1: मैं अभी बरेली कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ फर्स्ट ईयर
0: जी। तो आप ये बताएं, इसकी जब आपने शुरुआत करी तो शुरू में कुछ तो दिक्कतें आई होंगी, कैसे क्या, या इतना एक्साइटेड थी, शौक था तब दिक्कत नहीं आई?
1: दिक्कतें थोड़ा स्टडी से कोप अप करना और अपना शेड्यूल बनाना, मेडिटेशन करना होता है और प्रैक्टिस 2 आवर्स तक, तो थोड़ा उसे कोप अप करने में टाइम लगा था, बाकी फिर बढ़िया था
0: जी। अच्छा, जब आप अपना टारगेट फोकस करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है, गेम है कि जिसमें अपना टारगेट फोकस करना होता है ना,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो व्यक्ति को जैसे कि कोई भी खेल हुआ फिजिकल तो फिट होना ही चाहिए, इसमें मेंटली फिट होना भी बहुत जरूरी है देखा जाए।
1: हाँ
0: तो कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि हम लोग तो रोजमर्रा की काम होते हैं, ये काम करना वो करना है, नॉर्मल
1: हाँ जी। नहीं मैम, सुबह जल्दी आप उठिए और फिर मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फिर अपना कॉलेज, फिर बाकी आप पढ़ाई कर रहे हैं और हॉबीज भी इनके साथ, फिर उसके बाद शूटिंग करना है। आप अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो आपका मेंटली वैसे ही सब हो जाता है प्रिपेयर, शेड्यूल
0: वो तो एक पूरा ये होता है कि शेड्यूल बन जाता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: कितने घंटे आप प्रैक्टिस में देते हैं डेली ये बताएं?
1: मैम 2 आवर्स शाम को।
0: अच्छा, मतलब पूरे जो मतलब होल डे में पूरे 2 आवर्स देती हैं आप?
1: 2 आवर्स मैम मैं शूटिंग करती हूँ, बाकी उसके साथ हमें और भी मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना होता है, वो अलग है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: आप इस समय जो एयर राइफल शूटर्स हैं 10 मीटर वाले, उसमें आपका टारगेट है?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, तो आपके जो कोचेस हैं वो आपको फुल सपोर्ट कंटिन्यू करते होंगे, ये तो हम मानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या जरूरी रहता है कि वो कहते हैं आपको करना ही करना है, बिना कोच की सलाह के वो काम आपको करना ही करना है, वो बताएं आप।
1: आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको जो करना है आपको करना है, उसमें कोई भी आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको डर नहीं होना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, हमें पॉजिटिव सोचना है और बस चीजें हो जाएंगी।
0: मतलब सेल्फ कॉन्शियस जिसे कहते हैं,
1: हाँ जी,
0: वो होना चाहिए है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: खुद से ही चिंता होना अपने कार्य की। जी
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप भविष्य में हमेशा तरक्की करें, हमेशा आगे बढ़े। जी, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू।

श्रोताओं, फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम यंग बरेली में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। श्रोताओं, सकारात्मक सोच का अर्थ होता है हर परिस्थिति में आशावादी बने रहना और समस्याओं को रचनात्मक तरीके से सुलझाना या उन्हें हैंडल करना। ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, तनाव कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। आप कितना भी अच्छा अपनी डाइट कर लीजिए, खान पान कर लीजिए, लेकिन अगर आप अच्छा सोच नहीं सकते तो आप मेंटली हेल्थ के लिए कहीं से कहीं तक जो है कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि आपकी मेंटली हेल्थ अच्छी हो। और जब आप मानसिक तौर पर अच्छे होंगे तो निश्चित मानिए आप शारीरिक तौर पर भी ऑब्वियसली अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। सकारात्मक रहने के लिए आप कुछ आदतों को अपना सकते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हर दिन उन तीन चीज़ों को याद करें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। वर्तमान में जिए। सबसे पहली बात तो यही है कि जो पिछला बीत चुका है वह आपके

उसमें वह नहीं और उसका आप कुछ होना नहीं है, लेकिन जो अभी आने वाला भविष्य है वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, और वर्तमान तो हर समय ही आपके हाथ में रहता है। होता है क्या है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है, अरे आज ये काम नहीं कर रहे कल कर लेंगे, एक जिसे कहते हैं टालने की आदत, अरे कल नहीं करो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, फिर परसों कर लेंगे। कभी सोचिएगा ऐसे करते करते

लेंगे। कभी सोचिएगा ऐसे करते करते कितने दिन निकल गए। काम बहुत छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अब आपकी जो बैड हैबिट थी उसे टालने की उस आदत की वजह से वो कभी कभी इतना पहाड़ लगने लगता है कि लगता है कि वो टेंशन देने लगता है कि यार अभी तक ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। क्यों? आप उसे कर सकते थे, पर आपकी टालने की आदत ने उस काम के लिए नीरस बना दिया और उसके लिए एक तनाव देने वाला बना लिया। इसलिए अपना हर काम रूटीन से करें, टाइम से करें। उस काम को करने के लिए आप अपने मतलब प्रतिबद्ध हों, कमिटमेंट हो आप में कि हमें ये काम कर ही डालना है, करना नहीं है कल, कर ही डालना है, तब वो काम होता है। और अतीत की गलतियों में बिल्कुल ना उलझें, उसकी बजाय आप जो आज है अभी का क्या संभाल सकते हैं उसे सोचिए। और जो निगेटिव विचारों को आप के मन में आते हैं उन्हें आप कैसे चैलेंज दे सकते हैं? जब भी कोई बुरा विचार आए या निगेटिव विचार आए तो खुद से पूछें कि क्या ये सच है और इसके क्या सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है श्रोताओं कि हम वो बातें सोचने लगते हैं जो हमारे साथ कहीं से कहीं तक होती ही नहीं है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? अपनी निगेटिव सोच की वजह से। हमेशा एक तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, खुद भी पॉजिटिव रहें और जो अदर पीपल हैं उनके साथ जो भी पॉजिटिव हो हमेशा रहते हैं उनके साथ रहें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका कोई ना कोई किस कोई भी व्यक्ति हुआ, चाहे वो हाउस वाइफ हुई, चाहे वो बच्चे तो बच्चे हैं स्टूडेंट हैं, कि वो ये सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये हमारा लक्ष्य है, करना नहीं है, उसको पाने के लिए हर दिन प्रयास भी करना है। सकारात्मक रहने से आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी रहती ही रहती है। सही बात यह है कि आप फिजिकल भी फिट रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में जो भी कुछ हमारे घटित होता है या आसपास की जो घटनाएं होती हैं उनके लिए हम कभी जिम्मेवार नहीं होते। हाँ, कुछ हद तक अगर हमारी आदतें गलत हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसान उठा सकते हैं, लेकिन जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आया है उसे जाना ही है। तो उसमें इतना क्या सोचना, टेंशन तो होती ही है लेकिन इतनी भी ना हो कि वो आप पर हावी हो जाए, हर तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ दे। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना होने दें। कुछ चीज़ों को बहुत ही हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह, आप पहले अपने मन के लिए कंट्रोल करें, अपना माइंड कंट्रोल करें, बाकी सब चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे ना तो किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। जब आप अपना सुधार करते हैं तो बाकी के सुधार अपने आप हो जाते हैं।

और श्रोताओं, अब बरेली शहर की कुछ खास खबरें। युवाओं को दिया जाएगा तकनीकी प्रशिक्षण। युवाओं को रोजगारोन्मुख और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में बरेली ने एक और पहल की है। क्लब ने सृष्टि पूर्ति फाउंडेशन के सहयोग से दूसरे रोटरी कैपेबिलिटी बिल्डिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओलंपिक दिवस पर बच्चों ने दिखाई दौड़ में प्रतिभा। ओलंपिक दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेडियम रोड नंबर 4 पर एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को खेलों के महत्व और मोबाइल से दूरी बनाकर शारीरिक गतिविधियों को अपनाने का संदेश दिया गया। विभिन्न आयु वर्गों के बालक और बालिकाओं के लिए 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और 12 वर्षीय दर्श कश्यप ने शूटिंग में जीता गोल्ड। शहर के 12 वर्षीय निशानेबाज दर्श कश्यप ने पैसिफिक क्लब जेल रोड में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर इंडोर एयर राइफल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। और पुलिस आवास जेल रोड निवासी दीपचंद्र कश्यप के पुत्र दर्श अगस्त 2024 से बरेली राइफल क्लब में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। क्लब पदाधिकारियों ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए इसे युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणादायी बताया है।

जुलाई में शुरू होंगी कक्षाएं, आवेदन की तिथि बढ़ी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की कक्षाएं जुलाई में शुरू होने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इससे पहले आवेदन की तिथि बढ़ाकर 26 जून कर दी गई है। अब तक 307 छात्राओं ने 3 पाठ्यक्रमों की कोचिंग के लिए आवेदन किए हैं। छात्राओं के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग रानी अवंतीबाई महिला महाविद्यालय में और छात्रों के लिए नीट जेईई एसएससी एनडीए सीडीएस का प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज में दिया जाएगा। 26 जून तक समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर सकेंगे छात्र। अब तक 307 आवेदन आ चुके हैं। श्रोताओं, तिथि बढ़ चुकी है और जो भी बच्चे अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो 26 जून तक, अभी 2 दिन का समय उनके पास है, वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। और छात्राओं की कक्षाएं अवंतीबाई महाविद्यालय में और जीआईसी में छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 10 जुलाई तक आवेदन होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिए ओ लेवल एवं ट्रिपल सी कंप्यूटर के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए 10 जुलाई तक विभाग की वेबसाइट पर आवेदन होंगे। प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी कोई छात्रवृत्ति न लेता हो, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 12वीं पास हो और साथ ही जो आपके पेरेंट्स की वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक ना हो और उम्र आपकी 35 वर्ष से अधिक ना हो, वो ओ लेवल का प्रशिक्षण और 1 वर्ष और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण 3 महीने का होगा। इसके लिए 8 संस्थान निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन 11 जुलाई शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में जमा होंगे आपके फार्म।

दिन भर गर्मी ने खूब झुलसाया, लेकिन शाम को मिली राहत। जी हाँ, भीषण गर्मी का प्रकोप मंगलवार को भी जारी रहा। सुबह से ही तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। देर शाम अचानक तेज हवा चलने से मौसम में कुछ बदलाव महसूस हुआ और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं रही और रात में उमस भरी गर्मी का असर बना रहा, लेकिन फिर भी तापमान में थोड़ी गिरावट जो है आई है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं और अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का। आज कलाकार हैं अंजू अग्रवाल।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
1: यातायात के नियमों का पालन करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज की बचत ही कल की सुरक्षा है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सनमपुरी और नीति मोहन की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फिल्म का नाम था। अनविता दत्त ने इसे लिखा और विशाल और शेखर का संगीत। अभी वक्त है इस प्रोग्राम में एक छोटे से अंतराल का।

टू स्टेट्स, ये था फिल्म का नाम। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत और अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: फिल्म वेकअप सिड से ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

कपूर एंड सन्स इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाजों में अरमान मलिक का संगीत था। इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना जाते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। परदादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोली माँ तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेस और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था। इसलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ। फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना खबर।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन कमेंट्सों को शामिल कर पाएं, अधिक से अधिक कमेंट्सों को, क्योंकि सब तो शामिल करना मतलब कोशिश तो रहती है लेकिन नामुमकिन भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि समय जो है घड़ी हमेशा इशारा करती रहती है कि हमें तो आगे बढ़ना ही है, तो फिर हम भी कैसे रुक सकते हैं इस जगह। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके अधिक से अधिक कमेंट्स शामिल करें और आपकी पसंद के गीतों को आपको सुनवा सकें, जिससे कि आप भी जितने दिल से हम तक अपने कमेंट्स पहुंचाते हैं उतने ही हम दिल से आपकी फरमाइश पूरी भी करने की पूरी पूरी कोशिश हमारी रहती है। और आज पहला कमेंट आप सभी का हम तक पहुंचा है, सभी प्यारे श्रोताओं का, सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं आप सभी लोग, जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, कबला मुरादाबाद से हैं, अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, साथ ही इनके सभी दोस्त और इनके परिवार के सभी सदस्य। बलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान का। ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का। गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। राजस्थान से हैं बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ से भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और इनके प्यारे बेटे चटकू मटकू। कटरा चांद खा मौर्य

वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश, सुनील खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य का। कोल सिटी बरकाकाना से हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। और मोताला बाजार से हैं सोहेल शेख, शेख वजीर और बबलू का। बेरडी से हैं आप सभी लोग मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर और सुनीता करमरकर। मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश कुमार सागर उर्फ वंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह का। बिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुलरकर, रतनमाला सुलरकर और ओम कुमार का। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। पद्म टाकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। कस्बा मीरगंज बिजली घर से हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और भाई कल्लू मिस्त्री। दादा बाबू रोड गिरिडीही झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का। साथी हैं सादिया। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। ग्राम महेशपुर खेम से हैं जिला मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दकी, अतीक अहमद सिद्दकी और मोहम्मद दानिश सिद्दकी का। चंदौसी रोड चमनपुरा से हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम। बुद्धनगर खंडवा से हैं नदीम भाई, बेजोई से हैं राजू जी। कदमा जमशेदपुर से हैं चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। साधुलशहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। कृष्णाबाग दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सेठी दीवाना। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले। धोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है लोफर और इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

0: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: आरबीआई कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और गांव फरासी जिला हिसार से हैं आप सभी प्यारे श्रोता राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। बैंक सेंटर चनेठी के पास बरेली कैंट से हैं रागिनी श्रीवास्तव, मुस्कान और विनेश कुमार श्रीवास्तव। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हैं सुल्तान रजा, इकबाल, जीशान, अफजल, मोनिश, सादिक, मोनिश रजा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का। गांव लोहडडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। कस्बा उघेती बदायूं से हैं धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डी के हिटलर और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बन्ने बुजुर्ग पदेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित नामदेव। गिरगांव महाराष्ट्र से हैं गजाना नादरे और मारोतराव पांचाल। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। जिला पटियाला पंजाब से हैं सुमन।

सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनुगा ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन सुहान, अरजान अबान और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त लगान भंडारिया छत्तीसगढ़ से हैं। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का कालका से हैं आप सभी लोग। शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी शेरकोट बिजनौर से हैं। नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और गुजरात गांधीग्राम से हैं। प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से हैं। तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, भाई अजरुद्दीन मोहम्मद हसन अंसारी और इनके मम्मी पापा डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं। राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी का जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं। लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीष शर्मा और राहुल शर्मा कस्बा उगहती से हैं। देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का गंज टुंडवारा से हैं। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान सदर बाजार कुरावली से हैं। अनिल वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा का रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का झज्जर हरियाणा से हैं। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया कटरा छांद का प्राणेश्वर बरेली से हैं। चमना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि और मानवी मौर्य का पोस्ट भोजीपुरा ग्राम उदयपुर से हैं। आप सभी लोग नाजिम अली, आसिफ, मादरी, हासिम अली, खालिद अली, गुड्डू अली, अदीब फातिमा, जेब नूर, शबनम जहां, आकीब अली, हुसैफ अली और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त राहुल नगर अमरावती से हैं। आप सभी लोग सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडाने का अलागंज जनपद शाहजहांपुर से हैं। डॉक्टर आरवी सिंह, अर्जित यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय, दीक्षा यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त गनगोला दातागंज बदायूं से हैं। इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान आजम और अरहान खान का बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं। लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मिराजी अंसारी, अब्दर हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी का भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं। सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, लोकेश, पायल जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी और कुमारी अंकिता जोशी का खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। अब्दुल गफ्फार डावर जी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं। श्रीमती जयवंती केवट जी अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हैं। मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जैस्मीन सकीला और हिना रजिया का साथी सुल्ताना अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त राजनगर मधुबनी बिहार से हैं। नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू

रावण करनाल से हैं विनोद लखनपाल, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हैं आप सभी लोग नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जयलाम से, हर्षिता लाम से और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवास शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा का साथी है मैंडी शर्मा। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। ग्राम कोलासर तालुका नादुरा महाराष्ट्र से हैं प्रमोद बगाड़े, वर्षा बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और संकेत बगाड़े का। गुजरात पाटन से हैं धीरज वी रावारी। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता जी। मीरगंज निकट अंडरपास से हैं त्रिलोकी पाल, ओमकार गंगवार, एनएल शर्मा और विक्की पाल का। काठ रोड लदावली से हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन और इस गीत को गाया है एसपी बाला सुब्रह्मण्यम ने।

और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं आप सभी लोग, मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभय मीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या और इनके सभी दोस्त। बाकरगंज से ही हैं आप लोग, अख्तर अली, शाहरुख अली, साहिबा मोबीन, मोहम्मद आसिफ। काशी निवास नगर नागपुर से हैं आप सभी लोग, प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े, वैष्णवी के साथ हैं हर्षल रंभाड़े। ओखला संगम विहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का। पंचकुला सेक्टर 9 से हैं आशु चुक, अश्वनी चुक, गोविंद चुक, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भावे साथी हैं। इनके परिवार के सभी सदस्य साथी इनके दोस्त। मेरठ से हैं दिग्दर्शन गौर और कविता गौर। गांव खोकरा वाली श्री गंगानगर से हैं विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा का। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से हैं राजेश सेन। कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ से हैं गोगावा जिला खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबवेल और पीबी कुलथे का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अंकुश। शाहू नगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी का। ग्राम पंचायत बठेना पाटन से हैं आप सभी लोग, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, अजीत और अमित वर्मा का। कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन एमपी से हैं प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। मानहरा दरवाजा एटा से हैं नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सुहेल हसन। सियोहारा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, अराफत, अदीब और कादिर चौधरी का। बीरम गांव गुजरात से हैं अजीत भवसार, प्रमीला भवसार, भावेश कुमार भवसार और राकेश कुमार भवसार का। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। गांव बोंडीवाला फजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। मध्य प्रदेश से हैं राजपुर से आप लोग।

यीशु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे का। उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत और मिथिल नाचानी का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं महराज जहां, गुलाम साबिर रही और ताज मोहम्मद अंसारी। ग्राम देगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात का। बोरखेड़ा पितरामर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त और चेतन नाहटा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। पटियाली रोड गंज

साबिर रही और ताज मोहम्मद अंसारी। ग्राम देगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात का। बोरखेड़ा पित्रामर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त और चेतन नाहटा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन और अरहान हुसैन। वडिंगखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हैं भाई गणेश, काशीनाथ, चंद्रकला, आरव वाणी, रितिका मस्कीन और विष्णु मस्कीन का। सोनी और आरोही प्रियांशी का। गांव थाना पंजाब से हैं हरजीतन शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। साउथ एक्सटेंशन से हैं नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। मोती नगर दिल्ली से हैं आप सभी लोग गौरव, कविता, अनिल अरोड़ा, मानसी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का। संबलपुर कांकेर से हैं फागुरम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत घबड़ाकर रही, श्रीमती सरिता घबड़ाकर, प्रणीता सिद्धांत घबड़ाकर, अर्जुन घबड़ाकर और टुकटुक का। जिला पीलीभीत ग्राम ढकिया केसरपुर से हैं एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, खुशी, संतोषी, प्रिया और छोटी सी गुड़िया का साथी हैं चंचल कुमारी। गांव भोजपुर तका सहनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद का। रघुवीर नगर दिल्ली से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना, भरत कुमार। नीमच मध्य प्रदेश से हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बुआ हिमाक्ष का। एयरपोर्ट रोड वंदनानगर इंदौर से हैं नारायण भाव खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, कार्तिक खड़से, रक्षताई निखिल खड़से, रूशाली खड़से और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथी इनके दोस्त। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है दो रास्ते और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी प्यारे श्रोताओं का, हम तक। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारायण।

अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। सविता सिटी हरियाणा से हैं। आप सभी लोग नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त झारखंड राज्य से हैं। महेंद्र मोदी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं। पीएस नभाकर, निर्मला नभाकर, विशाल नभाकर। मलकापुर से हैं सोपान ताड़े, नारायण इंगले और आशीष मुहेकर। मरियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी। नागचून रेडियो संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाहुल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर अमर से हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। होली चौक उत्तम नगर से हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का। सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पुलोमा और ईशानी का। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, ननक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम अदीब। राजकोट से हैं जैमिन कुमार, जैन हैतल, जैन कृष्णा और जैन राकेश। बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से हैं अरुण कुमार मालवीय, फजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित देविका गजेंद्र और हियांश कुमार चंदन का। बरकत जमाली जी का ये कमेंट हम तक पहुंचा है बलूचिस्तान से। भोला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से हैं विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल कौर, साहिल और वाणी जयजान का। सिहारा जिला बिजनौर यूपी से हैं आसिफ चौधरी, अराफत अदीब और कादिर चौधरी। ग्राम पंजौनिया जिला चालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। सरलाही सोकनाहा नेपाल से हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और इनके बहुत सारे साथी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत छावड़ा, स्वीटी छावड़ा। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि, बन्नी, आरु शौर्य, दिनेश। मोहल्ला गड़गिया बली मस्जिद के पास से हैं केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी और रजिया शमसी, साथी हैं बेबी। वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। फ्लाई नगर बीड से हैं बालाजी प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। विराटनगर नेपाल से हैं अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका और इनके सभी साथी। बदायूं रोड बेहतरी रेलवे फाटक कॉलोनी से हैं आप सभी लोग आमीन अली और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। और ये कमेंट हमारे पास आया है रमेश कुमार खत्री जी का। कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर, सादिक शेख और शंकर गुल शर्मा का। जिला मुरादाबाद गांव बेजना से हैं रिजवान खान, आरिज रजा खान, फैजा नाज और नाजिया खान।
एमएलबी

रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरफ खुराना और एस के पप्पी का। हितेंद्र दास जी का ये कमेंट हमारे पास आया है राज्य असम से। दत्रेंगी भट्टापा छत्तीसगढ़ से हैं, हीरामणि वर्मा, पासमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर। श्रोताओं, हम आपसे बार बार यही गुजारिश करते हैं, जब आप हमें एक बार कमेंट कर देते हैं तो कोशिश कीजिए कि आगे और लोगों को मौका दें और एक कमेंट को कई बार ना करें, क्योंकि कमेंट तो पढ़ा एक ही बार जाएगा, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि जब हम लिस्टेड होते हैं और हम पढ़ते होते हैं तो डबल डबल हमें पढ़ना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए और एक बार कमेंट करने के बाद में अपने नामों के जो आप हमें लिख के भेजते हैं दोबारा ना भेजिए। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले। ग्राम रसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी और रमेश चंद्र डांगी का। चुनार मिर्जापुर से हैं अनीश राजभर, मनीष राजभर, आकर्ष और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशाका। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है जुनून और इस गीत को गाया है कुमार सानू ने।

और श्रोताओ, अब आपकी पसंद की ये आखिरी पेशकश आप सभी की पसंद पर। ये कमेंट हमें भेजा है आप सभी लोगों ने, जनकपुरी नई दिल्ली से हैं, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रदीप और प्रथम सलूजा का। कोटवा नारायणपुर पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। पंचकूला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधान और तुलसी मस्कीन का। कस्बा के ओलड़िया नवाबगंज जिला बरेली से हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेदपाल और संजीव गंगवार का। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, रितु, कृषव और गुड़िया वेदा सिंह का। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिक्रेस्ट्रो, रोजी डिक्रेस्ट्रो, पर्ल डिक्रेस्ट्रो और विलिस डिक्रेस्ट्रो का। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तनवी बोट का। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है आप सभी लोगों का, नई मस्जिद करेली से हैं इंतजार अंसारी, बेटी हिब्जा नूरी, नथु और नन्हे का।

रतलाम मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय, रचना कमलाबाई, वनदेवी, आकाश, विनायक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से हैं सुरेंद्र खुराना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है इंग्लैंड से, भेजने वाले हैं जावेद इनायत और यूसुफ इनायत का। सागर लखनाथौन मध्य प्रदेश से हैं लाडला जी चौबे, लालडी जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे का। जिला बखर और पंजाब से हैं मोहम्मद हफीजर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान का। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंडूरकर, सदानंद मंडूरकर और कुमार गौरव का। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हैं पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता, शोभा, रेखा, लड्डू चौधरी, प्रज्ञा चौधरी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बेचेलाल जी का कमेंट हम तक पहुंचा है और ये कमेंट हमारे पास आया है बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ का। मलियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का। श्रोताओं, जब हम आपको दोबारा कमेंट पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत हंसी आती है, मुस्कुराहट आ जाती है हमारे चेहरे पर। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है पंजाब से रिहाना खान और हफ्जुर रहमान खान का। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है सड़क और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। आपकी पसंद आपके लिए, आपकी पसंद की आखिरी पेशकश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे सब रंग में ये भजन बेला सुलाखे के स्वर में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और लीजिए आप सुनिए ये भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे सब रंग, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम जिम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, बस कुछ पलों की।
1: आना मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक,
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: साढ़े 11 बज गए हैं भाई, क्या कर रहे हैं आप? जहाँ कहीं भी हैं रेडियो के वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके, गीत हमारे। और हम जब बात करते हैं संदेशों की तो बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं और शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप सबकी तरफ से मिल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार। अब देख लेते हैं हमारे साथ फोन पर कौन है। हेलो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नमस्कार। कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं?
5: मैं विकास गांव सलीम तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से।
4: क्या बात है विकास जी,
5: सबसे पहले आपको 24 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बस आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे। और विकास, आपका नाम पता तो हमें भी रट गया, ईमेल्स अक्सर आपके आते हैं, फोन कॉल्स बहुत कम आती है ना?
5: मैम फोन है मैम, आपने जो मना किया ना, आपकी बात सुन मैम कायम रहता हूँ कि एक एक महीना गैप किया था, उसके बावजूद भी मैं एक डेढ़ महीने बाद ही फोन करता हूँ।
4: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आई होप सब इस बात को फॉलो करें और कोई बुरा ना माने, क्योंकि जब बात आती है, क्योंकि चीजें अक्सर ऐसे हम कह जाते हैं कि मुझे भी लगता है कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे श्रोता सब समझदार हैं, बहुत अच्छे से सब समझते होंगे कि हम जब अगर कुछ कहते हैं तो उसकी वजह क्या है। क्या कहना चाहते हैं विकास आज?
5: मैम मैं आज एक कार्यक्रम के फीडबैक देना चाहता हूँ, बुधवार है।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं।
5: कार्यक्रम प्रमुख मैम को से। और मैम कार्यक्रम मैम से ये कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ के सभी आर्मी लगातार मेहनत करते हैं और कितना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया
4: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, और आपकी बात मैं जरूर मैम तक पहुँचाऊंगी।
5: मैम से हमारी विजय श्रीवास्तव सर को कार्यक्रम सबरमती में लाया जाए।
4: अच्छा चलिए नोट कर लेते हैं हम। एक किसी और श्रोता ने भी ये बात कही थी, तो ये बात हम जरूर पहुंचाएंगे वहां तक। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये थे विकास उन्नाव से, और बहुत सारे लिसनर्स हमें ईमेल्स के माध्यम से अपनी अपनी बात भेज रहे हैं। आइए उनका रुख करते हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल आया और इन्होंने राम राम प्रणाम भेजा। अच्छा, ये मेल पिछले प्रोग्राम में आया था, थोड़ा सा देर हो गई आपको मेल भेजने में, है ना, इसलिए शामिल नहीं हो पाया था। 10:57 पर आपका मेल हमें मिला था। लिखते हैं कि आपके FM रेनबो में सेवा देते 24 वर्ष पूरे होने पर हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा धन्यवाद तेज बहादुर जी। और बोला है आपने बहुत कुछ हमारे लिए कहा है, थैंक यू सो मच। और सुगंध माटी की में बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनवा रही है, थैंक यू, अच्छा लगा आपको प्रोग्राम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं ये, और गुरुग्राम हरियाणा में हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। रामराज जी का भी मेल आया है, इन्होंने हमें मेल किया है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से। रामराज, राजू, भानु शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, रामचरण प्रजापति, सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार और बहुत शुभकामनाएं। संदेश के तौर पर कहना चाहते हैं कि सबको सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जी, शुक्रिया। इसके अलावा मोनू जी का मेल, मानवता हमें दया, करुणा, सहानुभूति और सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान सिखाती है, भाईचारा, समानता को बढ़ावा देती है, सिखाती है कि सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मानव का सार दूसरों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना है।

और ये हमें एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। मानवीय मूल्यों को समझें, एकता बनाकर रखें। बहुत ही सुंदर सा मैसेज आपकी तरफ से मिला मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल, हैदराबाद तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं, प्रोग्राम की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। संदेश है कि बिजली की बचत करें, जब कोई कमरे में ना हो तो कमरे में बल्ब और पंखे बंद कर दें, अगर आप दुकान पर हैं तो दुकान बंद करने के टाइम पूरी लाइट बंद कर दें जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो, और अपने घर या दुकान में अग्नि नियंत्रण यंत्र जरूर रखें। और आपने भी सभी श्रोताओं के नाम लिखकर भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। गीता जी का भी मेल, नमस्ते, बोला है जल बचेगा तो कल बचेगा। एक छोटे से मैसेज में बहुत बड़ी बात आपने लिखकर भेजी है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, थैंक यू सो मच गीता जी। सोनू जी का मेल, इन्होंने कहा एक दो चरणों में यदि उसे आशातीत सफलता नहीं मिलती तब भी वह संघर्ष करता रहता है और अंततः विजयश्री उसे प्राप्त हो ही जाती है, इसलिए सच ही कहा गया कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। हमारी पराजय का सीधा अर्थ है कि विजय के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई होगी और शायद इसीलिए सफलता इस बार नहीं मिली, लेकिन अगली बार और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलेगी। वकील अहमद जी, कैसे हैं आप? आपने आवाज की प्रशंसा की, बहुत शुक्रिया। गर्मी हो रही, किसान भाइयों खेतों में काम हो तो सुबह जाएं या शाम को पानी साथ ले जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ से भी आया। वकील अहमद मसूरी, कटका तुरी सिला सीतापुर से भी आपका भी मेल आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें मेल भेजे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखकर भेजी हैं, फोन कॉल्स भी आप ट्राई कर रहे हैं लगातार, तो उन्हें भी हम शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लीजिए, सुनवा देती हूँ आपको एक बढ़िया सा गाना, इसे एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी, रूप की रानी चोरों का राजा है ना, ये गाना था। मतलब नहीं, रूप दी रानी, चोरों का राजा नहीं है, रूप दी रानी, काली तेरी चोटी वाला गाना। और सबसे बड़ी बात ये कि जो है, जब इस तरह के गाने जो ओरिजिनल वाले हम लोगों ने सुन लिए होते हैं ना, तो बड़े सारे लोगों को नए वर्जन, जो रिक्रिएटेड वर्जन होते हैं ना, उसमें मजा नहीं आता है मेरे जैसे लोगों को। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं हम भी। एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से सही है, लेकिन जो पुराने गाने जो ओरिजिनल बने थे ना, वो तो ओरिजिनल ओरिजिनल ही है यार, क्या ही कहा जाए। खैर, फिलहाल वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला, आपके साथ 11 बजकर हो लीजिए हो गए एक ये 40 मिनट। लेकिन जो लोग हमें न्यूज ऑन एयर ऐप में सुन रहे हैं या लाइव रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उनका उन तक हमारी जो आवाज है, प्रसारण है, वो कुछ सेकंड्स लेट पहुंचता है। तो इसलिए जब आप अपनी घड़ी मिलाएं तो उसके अनुसार मिलाएं, ठीक है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:40 और 18 सेकंड्स का वक्त हो रहा है। हमारे साथ फोन पर कौन है, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते, मैं आराध्या बोल रही हूँ।
0: नमस्ते आराध्या, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल जबरदस्त हूँ। आराध्या क्या करती हैं आप? बड़ी छोटी सी प्यारी सी आवाज लग रही है। किस क्लास में है?
1: 6th क्लास में।
0: क्लास 6 में, और कहाँ से बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं इटावा से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इटावा में आप हमें लाइव रेडियो पे सुनती हैं या ऐप में?
1: मैम मेरे पास छोटा फोन है मेरी मम्मी का, तो मैं फिर सुनती हूँ।
0: अच्छा, साफ सुनाई पड़ता है वहाँ पर हमारा प्रसारण?
1: बिल्कुल मैम।
0: क्या बात है, और आप कितने दिनों से रेडियो सुन रही हैं पढ़ाई के साथ साथ?
1: मैम अभी आधा एक ही साल हुई है मुझे, 25 सुननी हूँ 2025।
0: ओके, और फोन भी लगाती हैं हमारे प्रोग्राम्स में?
1: यस मैम, मेरे वैसे में तो कभी नहीं लगा, पर संदेश आपकी गीत हमारे में होली पे लगा था।
0: अच्छा, और आज दूसरी बार मिला फोन आपका?
1: यस मैम।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आराध्या आपसे बात करते हुए। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? एक बहुत ही अवेयर लिसनर हैं हमारी, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा आपका, आपकी आवाज से पता चल रहा है। और जब आप जब इस तरह से जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, क्लास 6-7 के बच्चे हैं, वो अवेयरनेस की बात करते हैं और मैसेज देते हैं बड़े लोगों को, तो और अच्छा लगता है। तो क्या मैसेज है आपका जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए?
1: मैम मेरा मैसेज ये है कि मैं कभी भी अगर कोई दावत वगैरह में जाते हैं तो लोग बहुत सारा खाना ले लेते हैं, वो खा नहीं पाते और फेंक देते हैं। तो मैम खाना तो वेस्ट होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है, वो ना दो रोटी की इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें ऐसा वेस्ट नहीं करना खाना चाहिए। अगर घर पे आप खाना बनाते हैं तो अगर आप अच्छा तो किसी गरीब को डाल कर दीजिए, उसको उसकी दुआएं आपको लगेगी, आपका भी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी और समझदारी वाली बातें आप करती हैं आराध्या। और इस इतनी सी उम्र में आपको ये समझ है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर आपकी बात सभी लोग मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वेडिंग सीजन फिर से आ रहा है और बहुत सारे लोगों के घरों में पार्टी होगी, तो जो लोग खाना वेस्ट करेंगे वो आराध्या की बात को उससे पहले जरूर ध्यान रखेंगे, है ना।
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू सो मच, फिर से कॉल कीजिएगा। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर। तो ये थी आराध्या इटावा से हमारे साथ जुड़ी थी, और बहुत सारे लिसनर्स ईमेल के माध्यम से अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे हैं। संजू देवी ने हमें लिखकर भेजा है, ग्राम पहाड़पुर पोस्ट भिटौरा जिला सीतापुर से, रेनबो की जान, अच्छा रेनबो की जन्नत, आए है, खुश हो जाते हैं हम ये सब सुनकर। लेकिन ये मतलब आपका प्यार है और बहुत ज्यादा मिल जाता है मुझे, मेरी खुशकिस्मती है, थैंक यू सो मच। और 24 साल पूरे होने पर इन्होंने भी हमें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनेश कुमार जी का भी ईमेल आया है, और आपने क्या लिखा है, आप लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, संदेश के तौर पर इन्होंने एक छोटी सी कविता लिखकर भेजी है। मस्त रहने वाला बचपन मोबाइल में व्यस्त है, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्सत हो गई फुर्सत, अब तो सबके पास काम बहुत है, नहीं जरूरत बूढ़ों की, अब हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है। बहुत बड़ा वाला तंस कसा है इसमें आपने, उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है, मट्ठा दही नहीं खाते हैं, कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब चाय तब कहीं कहते हैं आराम बहुत है, बंद हो गई चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है, आदि हैं एसी के इतने कहते हैं, बाहर घाम बहुत है, घाम मतलब धूप, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। लिखते हैं कि झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है, नहीं बचे कोई संबंधी, अकड़ ऐठ एहसान बहुत है, सुविधाओं का ढेर लगा है पर इंसान परेशान।

शान बहुत है। मुनीश कुमार राज जी, बहुत सारी बातें आप इसमें कह गए हैं जो बहुत गहरी हैं और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णकांत जी का भी मेल है, कैसरगंज बहराइच से लिखते हैं कि एफएम रेनबो लखनऊ प्रसारण में सेवा में 24 वर्ष पूरे करने पर बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा धन्यवाद कृष्णकांत जी। कैसरगंज बहराइच से आपका मेल मिला मुझे, उपरोक्त अच्छा ये 2003 से जुड़े हुए हैं और ये सफर निरंतर जारी है और बीते वर्षों में इस चैनल से कई आरजेस जुड़े जिनमें आपकी उत्कृष्ट सेवा आज भी जारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीजें आपने हमारे लिए लिख कर भेज दी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये व्यक्तिगत बातें ना पढ़कर आपका जो मैसेज है वो मैं पढ़ूं। इस चैनल के प्रति आपका प्रोग्राम प्रस्तुति का अच्छा, आज कोई मैसेज नहीं भेजा है आपने शायद, हमें लिखते हैं कि हमें पिछले सालों में मिला ईश्वर समर्पण भाव, जैसे हमें पिछले सालों में मिला, ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी सराहनीय प्रस्तुति सुनने का सौभाग्य आने वाले सालों में मिलता रहे, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो जरूर आप स्वस्थ रहें ऐसी कामना, और शानदार प्रस्तुति से लाखों श्रोताओं के दिलों पर राज करती रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। 24वीं वर्षगांठ पर ये एक शुभकामना भरा बधाई भरा मैसेज कृष्णकांत जी का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका दिल से। और मुझे लगता है कि एक मेल और पढ़ लेती हूँ, उसके बाद गाना सुना दूंगी। और ये मेल है, सादर प्रणाम भेजा है पिंकू सोनी जी का, टिकैत नगर बाराबंकी से ये मेल कर रहे हैं। संदेश ये है कि लोग शादियों में लिफाफा भेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार जब अगर आप किसी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाएं तो वहां पर भी लिफाफा ही भेंट करें जिससे किसी की मदद हो सके। बिल्कुल सही बात आपने कही है और इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। उधौली से आप आकाशपुर आकाश जी भी सुन रहे हैं, मुरारपुर से रिंकी पिंकी गुलफशा जी भी सुन रही हैं, सबके नाम आपने लिखे हैं, कुलदीप जी भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक गाना बढ़िया वाला एनर्जेटिक सॉन्ग आप सबके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: 11:50 का वक्त हो गया है। 100.7 FM रेनबो ट्यून कर रखा है आपने, जिस पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और थोड़ी देर बाद हम कहेंगे चल रहा था। फिलहाल एक हमारे आज के इस प्रोग्राम की लास्ट कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
5: हेलो मैम, प्यार भरा नमस्कार।
4: नमस्ते, कैसी हैं आप, और बहुत दिनों बाद आपका फोन लगा या अभी हाल ही में लगा था?
5: नहीं मैम, काफी अंतराल के बाद हमने कॉल लगाया है, और मैम आपको आज के दिन पहली बार ड्यूटी पर आई थी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
4: थैंक यू सो मच। अपना नाम बता दीजिए हमारे लिसनर्स को।
5: मैम मैं रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
4: क्या बात है। अच्छा, दीवानों का शहर रायबरेली का नाम था या आपने रख दिया?
5: मैम हमने रखा
4: क्योंकि यहाँ पर दीवानियाँ रहती हैं।
5: जी जी मैम बिल्कुल।
4: बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या कहना चाहती हैं आज आप रिंकी?
5: मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लखनऊ में हादसा हुआ है उसको हम लोगों ने भी देख सुनकर मैम बहुत भावुक हुए हैं, तो उन माता पिताओं को और भाई बहनों को हमारी तरफ से बहुत सारी मतलब वो श्रद्धांजलि है, जो बच्चे इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं।
4: जी जी।
5: उसका काफी ज्यादा हमें भी दुख है मैम, उनके माता पिता को रोते हुए देखा तो हमारी आंख में भी आंसू आ गए।
4: बिल्कुल, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी रिंकी, और मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, और वास्तव में छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, और जिंदगी इतनी सस्ती कैसे हो सकती है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता।
5: बिल्कुल, बहुत ही अफसोस है उस बात को सुनकर देख करके। मैम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे कभी भी ऐसा हादसा किसी के साथ भी ना हो।
4: बिल्कुल, और इसके लिए हमको और आपको सबको सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। हम तो ये कहते हैं कि जब ऐसे छोटे छोटे जगहों पर मकड़ जाल की तरह बिजली के तार फैले हुए हैं, या बिल्डिंग्स खड़ी हैं, आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल काम चल रहा है, तो हमें लगता है कि हमें ऐसी जगहों का विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे स्थानों पर जाना ही नहीं चाहिए, और शिकायत तो करनी चाहिए, अपनी तरफ से आवाज उठानी चाहिए, विरोध करना चाहिए।
5: मैम बिल्कुल, कहीं भी अन्याय हो तो हमें आवाज जरूर।
4: बिल्कुल, तो इसीलिए आज का ये एक
5: बात ये कहना चाह रही हूँ, सोमवार को हमारे भाई की परीक्षा है, तो मैम आपको और आपकी पूरी टीम को इनवाइट कर रहे हैं।
4: बहुत बहुत शुक्रिया न्योता देने के लिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भाई को, आपके पूरे परिवार को।
5: उन सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी इनवाइट है।
4: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच रिंकी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी रिंकी हमारे साथ, और अब हम ईमेल्स का रुख कर लेते हैं और जल्दी से अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जरीना बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, स्टूडियो में आ चुकी हैं। अच्छा, अब हमारे सामने मेल है कौशिक वधावन जी का, राजकोट गुजरात से ये हमें मेल कर रहे हैं। कौशिक, अस्मिता, वडवारा परिवार है ये, और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। मेल में मैसेज में ये कहना चाहते हैं कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं, पर महान होने के लिए शुरुआत करना है जरूरी। बिल्कुल सही बात आपने कही, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। मुनेश कुमार जी ने आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपने एक बहुत ही प्यारी सी कविता लिखकर भेजी थी। साथ ही साथ राममोहन गुप्ता जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि वर्किंग एनिवर्सरी पर बधाई स्वीकार करें 1000 राममोहन गुप्ता, अमर की शुभेच्छाएं बार बार, वर्ष 24 से खनकती लुभाती आवाज, प्यारी शतवर्षीय वह तक बनी रहे पहचान, दुआ हमारी FM रेनबो संग, जीवन के हर पग पर छाएं, सपरिवार रहे समृद्ध स्वस्थ सुखी हैं अमर इच्छाएं। क्या बात है राममोहन गुप्त अमर जी, लखीमपुर खीरी से आपने इतनी प्यारी शुभकामना लिखकर भेजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी फोटो खींचकर मैं लेकर जाऊंगी अपने साथ, बहुत शुक्रिया। कुलदीप गुप्ता जी, इन्होंने भी

बधाई दी है हमारे 24 साल के सफर के लिए। साथ ही साथ 8 बजे से ही हमें सुन रहे हैं, मगर मेल भेजने का टाइम नहीं मिला। मैंने काफी समय से महसूस किया कि जिस दिन आपका कार्यक्रम होता है उस दिन मेरी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाती है, क्या बात है, और मुझे कार्यक्रम सुनने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता है कार्य की व्यस्तता की वजह से। गुड मॉर्निंग लखनऊ में बुद्धिजीवी श्रोता साथियों द्वारा मुद्दे पर बहुत ही जरूरी प्रतिक्रिया सुनने को मिली। यहां पर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि अभी पिछली रात 9:30 बजे हमारी दुकान के थोड़ी दूर पर बिजली के पोल से ऑटोमेटिक वायर केबल जा रही थी, जल रही थी, जिसका एरिया लगभग 5 किलोमीटर कवर कर रहा था। तो वहां पर जो भी छोटे दुकानदार हैं अक्सर अपनी दुकान लगा देते हैं, उनको भी सेफ्टी के साथ रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपने पिछले प्रोग्राम माटी की सुगंध की भी तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत सारी छोटी छोटी सावधानियां अगर हम रखें ना तो बड़े हादसों को हम टाल सकते हैं। कुलदीप गुप्ता जी उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल मिला और बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हम उम्मीद करेंगे भैया रोज आपकी आमदनी इतनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, आप ऐसे ही बढ़ती रहे। अरुण कुमार जी का मेल पढ़ते हैं, गमैया हरदोई से कुशवाहा जी। अरुण कुमार जी आपको नमस्कार, और आपने लिखा है कि अलग अलग किरदारों में प्रोग्राम प्रस्तुत करने में कितनी मेहनत करती हैं जी। हम लोगों का मनोरंजन के साथ साथ अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आज का संदेश आपके अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत है जरूरी, उतना ही हमें अपने कर्तव्य के प्रति भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है। संदुजू देवी जी ने भी आपका मेल मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूं, आपने पिछले प्रोग्राम की तारीफ भी की है, और संदेश के तौर पर इस मेल में ये कहना चाहती कि हमेशा नमक की तरह रखना चाहिए रिश्ते, आपको ज्यादा इस्तेमाल भी ना कर सके और आपके बिना रह भी ना सके। अगली बार मैम आप कब आओगे भाई, शनिश्चर को आएंगे ना, शनिवार को, ठीक है, सैटरडे को। ब्रजेश सिंह दीपू जी का भी मेल पढ़ लेते हैं। जो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं हमको पता है शायद उनकी प्रॉब्लम उनका गुटखा पान मसाला होता है, ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं लगाते, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता। बाकी डिसीजन उन भाइयों का है जो आप सब ना समझदार हैं, वरना समझाना बेकार है। थैंक यू सो मच, कैसरगंज बहराइच से आपका मेल आया, मैंने सारे के सारे मेल्स पढ़ लिए, सारे फोन कॉल्स जितने भी आए वो शामिल कर लिए, और अब एक धमाकेदार गाने के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। जितनी भी शुभकामनाएं आपने हमारे लिए भेजी उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार दुलार बनाए रखिए एफएम रेनबो के साथ, हमारे साथ, हम सभी आरजेएस के साथ, और हम इसी तरह आपका मनोरंजन करते रहेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। स्टे ट्यून 200.7 एफएम रेनबो। मैं मिलूंगी आपसे शनिवार सुबह 8:15 पर, अगले कुछ घंटे रहेंगी जरीना आपके साथ। अंजू की ओर से आज बस इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियात तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि देश में अब तक लगभग 83% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है। लगभग 315 जिलों में वर्षा सामान्य से कम होने की संभावना है और इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही सीमित है। इनमें से अधिकांश जिले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के हैं। प्रदेश सरकार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्लों की गायों पर आधारित डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान देगी। पात्र गोपालकों को अधिकतम 11,80,000 रूपये तक का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत इकाई लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा और महिला पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना में गिर, सहीवाल और थार पारकर जैसे उन्नत नस्लों की गायों पर आधारित डेयरी इकाई स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इच्छुक गोपाल नंद बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ के लामाटीनियर कॉलेज की शूटिंग टीम के कप्तान राजवीर सिंह कक्कड़ ने नई दिल्ली में आयोजित 39वीं उत्तर प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। राजवीर ने अंडर 18 यूथ वर्ग की 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा में 400 में से 383 अंक हासिल किए। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने प्रतिष्ठित ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गंगा दशहरा व ज्येष्ठ दशमी गंगा स्नान पर्व के अवसर पर कछला बॉर्डर व कछला गंगा घाट क्षेत्र का जिलाधिकारी बंदायु अवनीश राय और एसएसपी अंकित शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। चित्रकूट जिले के 15वें वित्त आयोग के तहत 2,62,00,000 रूपये की लागत से 5 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 1 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण चिल्ला माफी, चुरहे, केशरुवा, बरदरा, तीरमऊ और सरधुआ ग्राम पंचायतों में होगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में बीपीएचयू की स्थापना होगी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब अली।
5: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ भाई, मोनाली ठाकुर की इस प्यारी सी आवाज के साथ स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो पर। 12:08 का वक्त, और ये जो वक्त है वो कहता है कि भाई प्रोग्राम शत्रुपा की शुरुआत हो जाती है। और आज जो होता है डे, वो होता है स्पेशल डे हमारे जायका और बेकरी का, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसी जो कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारे व्यंजन से जुड़ी होती। तो बस ऐसी ही बातों को लेकर के आपकी दोस्त जरीना हाजिर है एक बार फिर से। वैसे भाई मौसम ने बड़ा आज हम सभी के साथ गेम खेल दिया। सुबह से हम सभी लोग रिसीव कर रहे थे मैसेजेस कि भाई आज कुछ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, और हम सभी को लग रहा था कुछ तो आज मौसम में बढ़िया होने वाला। लेकिन भाई 12 बजते दोपहर आते आते हम सभी के सपनों पर पानी फिर चुका है। सूरज देवता बढ़िया सा बिल्कुल चमचमा रहे हैं, और रोज की तरह चमचमा रहे हैं। जहां थोड़ी सी डिसहार्टनिंग हम सभी को हो रही है कि भाई

सा तो बारिश, मतलब हल्की फुल्की हवा चल ही जाए। खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बिल्कुल हम सभी भी ऐसे ही कायम है। आई होप कुछ शाम तक बढ़िया सा मौसम कमाल दिखाए। और आज जिस तरह से हम बात करते हैं ना शत्रुपा में आज के सेगमेंट पर, तो मैंने सोचा कि जब हम भारत की बात करते हैं, हमारी कंट्री की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो है लाजवाब खान पान, जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर शहर, हर राज्य, हर गली का एक अपना स्वाद है, जो अपने साथ इतिहास, संस्कृति और लोगों की भावनाओं को बिल्कुल समेटे हुए है। तो चलिए कुछ ऐसा ही बढ़िया बढ़िया मैं परोसने वाली हूँ आपकी प्लेट में भी। क्या है वो बात, उसके लिए फिलहाल इंतजार करिए। अगला गाना जो है वो भेजूंगी आप सभी के रेडियो सेट पर। इंजॉय करिए इस गाने को और उसके बाद बहुत सारी बातें करेगी आपकी दोस्त ज़रीना आज आप सभी के साथ।

0: मानो।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म बर्फी का था ये प्यारा सा गाना आप सभी की रेडियो सेट पर। और इसी के साथ बता देते हैं आप सभी को, अपने घर में अगर आपको लगता है कि ना आपको घड़ी मिलाने की जरूरत है तो बस मिला लीजिए। 12:18 का वक्त हो रहा है और साथ ही ये देखिए सेकंड जो है 58, और ये देखिए बस 58 कहा।

ये था, उसके बाद ये सेकंड्स पूरे हो चुके हैं, 12:19 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, और आज है वेंसडे, तो आज हम बात करते हैं भाई कुछ खान पान की। कहते हैं ना, जायका सिर्फ खाने में नहीं होता जनाब, कभी कभी पूरा शहर अपनी पहचान थाली में परोस देता है। यस, यही है बिल्कुल हमारे देश की पहचान, जहां पर हजार चीजें उसको जब यूनिक बनाती हैं, तो उनमें आता है एक बहुत बड़ा फैक्टर, वो है उसका खान पान। देश के अलग अलग जो हमारे प्रदेश हैं या राज्य हैं, अलग अलग तरह से खानों से बिल्कुल भरे हुए हैं। जब कोई कहीं घूमने जाता है ना, तो घूमने के साथ साथ वहां के अलग अलग जो प्लेसेस हैं उनमें क्या कुछ खास है, इसकी लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई जाने क्या खाएं यहां पर और क्या खास है। जितना हमारा यूनिक देश है, उतना ही यूनिक यहाँ का खाना भी है। वही कहते हैं ना, जुबान पर जो स्वाद ठहर जाए वही असली पहचान बनता है, और भारत का हर व्यंजन अपने प्रदेश का मेहमान नवाजी भरा पैगाम बनता है। यस, यही होता है। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो कौन भूल सकता है पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी। यस, सर्दियों का मौसम हो और बिल्कुल मक्खन से सजी हुई रोटी हो और साग हो, तो ऑब्वियसली किसको नहीं भाता। सेम एज जब हम बात करते हैं पंजाब की खुशबू की थाली में जब वो उतर जाती है ना, तो सीरियसली हर किसी का मन डोल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पता है स्पेशली ये सारी डिशेस को ट्राई करने इन प्रदेश में जाया करते हैं। वहाँ के जो पराठे हैं या परौंठे जिनको हम कहते हैं, वो शायद ही पूरे देश में उस तरह के मिले। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं ना अलग अलग प्रदेशों की, तो हमेशा बहुत सारी खुशबू, खाने की खुशबू ये प्रदेश अपने में समेटे हुए हैं। ऐसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो दाल बाटी चूरमा। यस, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देख करके कि किस तरह से संस्कृति जो है वो अपने आप को खाने में भी समेटे हुए हमारे देश में। तो ऑब्वियसली जब हम देखें इन चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा ब्लेस फील होता है कि हम उस देश में बिलोंग करते हैं जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमारी थाली में नज़र आती हैं। और जैसा कि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि घी में डूबी बाटी, मसालेदार दाल और मीठा मीठा चूरमा, तीनों मिलाकर ऐसा स्वाद रचते हैं जिसे एक बार खाने वाला इंसान कभी भूल नहीं सकता। तो बस ये है राजस्थान की खासियत। तो आज हम बात करेंगे ऐसे अलग अलग जगहों पर और क्या क्या यूनिक चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपसे करने वाली हूँ, वो ये है कि भारत में खोती हुई पारंपरिक डिशेज, शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो आज से 20-25 साल पहले हम सभी के घरों में बना करते थे, अब शायद वो हमारे थालियों से मिस होते जा रहे हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। बट फिलहाल अभी जो है वो अगला गाना है चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज में, बहुत ही प्यारा सा गाना है, एंजॉय करते हैं इस गाने को, और उसके बाद बहुत सारी बातें आप सभी के साथ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: चलिया चलिया चलिया, चुरान मैं हूँ ऐसी चलिया।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: टूटना, बिखरना और फिर से सवरना, चंद लम्हात में एक उम्र बसर करना। यूं तो तमाम रंग हैं इस रुपहली जिंदगी में, पर मुझे हर वक्त है तेरे नूर से तरबतर रहना।
5: मकतबे इश्क में मसरूफ रहने की कवायद से दो चार रहने वाला दिल जब दर्दमंद नजर आने लगे, गजलों के मायने जब खुद को अपने अपने से लगने लगे, एक शायर के अशार जब दास्ताने हयात बया करने लगे, तो जहन से निकले सुरीले सफरनामे की तस्दीक किया करता है आबशार। सुनिए

0: रात 9 से 10 सिर्फ सौ आशारिया सात FM रेनबो पर।
1: कितनी मुद्दत बाद मिले।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, अरिजीत की आवाज थी अभी अभी आप सभी के रेडियो सेट पे, और इसी के साथ बता देते हैं आप सभी को कि भाई प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, और हम सभी बात कर रहे हैं भारत के यानी हमारे देश के अलग अलग जायकों की। भाई कहते हैं ना कि खुशबुएं जो हैं वो सिर्फ महकती नहीं है बल्कि याद बन जाती हैं, और जब हम बात करते हैं हमारे देश की बिरयानियों की तो ऑब्वियसली ये वो खुशबू है जो शायद ही किसी के जहन से कभी भी जाए। हैदराबाद की बिरयानी हो या लखनऊ की बिरयानी हो, ऑफकोर्स हमेशा से एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन दोनों में रहा है, और जो बिरयानी के शौकीन है शायद ही वो इन दोनों स्वाद को कभी भी भुला पाए या कभी भी इनसे दूर होना चाहे, है ना। वैसे ये तो हो गई बात बिरयानियों की। वैसे उधर जब हम रुक करते हैं ना पश्चिम की तरफ यानी पश्चिम भारत की रंगत का, तो राजस्थान की हम बात कर ही चुके हैं, दाल बाटी चूरमा, गुजरात का ढोकला, यस, और साथ ही में खांडवी, महाराष्ट्र का वड़ा पाव और पूरन पोली। पश्चिम भारत का हर व्यंजन अपने आप में एक पहचान है, यहाँ का खान सादगी और स्वाद

का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और सीरियसली जब इस जगह इस साइड यानी वेस्ट साइड हम जब भी जाते हैं तो इनकी जो खासियत है, इनका जो लुत्फ उठाना है, वो आई डोंट थिंक कोई भी कभी भी मिस करना चाहेगा। आपको पता है स्पेशली राजस्थान जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि हम लोग भैया पानी से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं। यस, जिस तरह से वहाँ के लोग घी का, देसी घी की हम बात करें, इस्तेमाल करते, कहा जाता है शायद ये उन्हीं की कैपेसिटी की उतना उस तरह से वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। और वो खाने में जो खुशबू है उनके घी की, वो हमेशा ही उस खाने को महकाती रहती है। तो जब भी आप जाइए तो ज़रूर ट्राई करिएगा इन सारी डिशेस को और बिल्कुल भी इनसे अछूता ना रहिएगा। अच्छा, इधर हमने अगर बात की तो ऑब्वियसली हम बंगाल की भी बात जरूर करना चाहेंगे। बंगाल का रसगुल्ला, यस रसगुल्ला, और ये शायद अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। जो मीठे के शौकीन लोग हैं या जिनको मीठा पसंद आता है, वो ऑब्वियसली इसको खाए बिना रह नहीं सकते। और आपको पता है, एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, यूजली बंगालीज हैं या जो बंगाल के लोग हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी सुबह होती है तो नाश्ते में कुछ भी खाने से पहले वहाँ के लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। जितनी यहाँ पर हमारे लखनऊ, हमारे यूपी में नाश्ते में पूरी सब्जी पराठे ये सब चलते, उतना ही वहाँ पर नाश्ते में मिठाइयाँ भी चलती हैं। तो अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ऑब्वियसली वेस्ट ज़रूर जाइए, सॉरी बंगाल ज़रूर जाइए, और वहाँ पर आप ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिठाइयों का आप स्वाद ज़रूर चख सकेंगे। तो बस देखिए, इसी तरह सैर करते करते और मीठे मीठे व्यंजन को सूंघते, खुशबू उनकी लेते और महसूस करते हुए वक्त बहुत तेज़ी से भागता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम उन डिशेस की भी बात करेंगे आज जो हमारी थालियों से कहीं ना कहीं मिस होती जा रही हैं। तो बस थोड़ा सा ज़रूर वक्त मैं चुराऊंगी, गाना आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रही हूँ और उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी ही। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, जितनी मीठी मिठाई होती है मुझे लगता है उतनी ही मीठी होती है इन फीमेल सिंगर्स की आवाज भी। जैसे कि मोनाली ठाकुर की आवाज थी अभी अभी आप सभी के रेडियो स्टेज पे, और इतना प्यारा सा गाना आप उन्हीं की आवाज में सुन रहे थे फ्रॉम द फिल्म दम लगा के हईशा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बता देते हैं कि आज प्रोग्राम शत्रुपा में हम सभी बात कर रहे हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से बढ़िया बढ़िया खाने हैं जो मशहूर हैं। और अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सोशल नेटवर्क के या सोशल साइट्स के हमारी जिंदगी में आने से बहुत सारी चीजें नेगेटिव तो हुई, लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव हुई जो मतलब खान पान के सेंस में, वो ये है कि हम यहाँ अपने घर बैठे या अपनी जगह पर रहते हुए पूरी दुनिया पूरे देश के डिशेज के बारे में पता कर पाते हैं, और जब हम वहां जाते हैं तो बड़ी ईजिली हम उन चीजों को देख करके पहचान लेते हैं और खाने की कोशिश करते हैं ना। मतलब आज से कुछ साल पहले तक अगर आप देखें तो इतना हम सिर्फ सुनते ही थे, हमें नहीं पता था कि फला डिश कैसी दिखती है, कैसी होती है या उसका फीडबैक क्या होता है। लेकिन जब हम इस तरह से सोशल साइट्स या रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी चीजें हमारी नजरों के सामने आती हैं, और सीरियसली नजरों के सामने क्या आती हैं, नाक में वो खुशबू जरूर बिखेर देती हैं जो इन खानों में हम स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं ना। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो इडली डोसा सांभर उत्तपम, यस ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया है। मतलब अगर आप यूपी में भी देखें तो बहुत ज़्यादा लोग साउथ इंडियन डिशेस भी खा रहे हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स ऐसे बन चुके हैं जहां पर आप देखते हैं कि साउथ इंडियन डिशेज जो हैं वो सिर्फ वही सर्व की जा रही हैं, या सिर्फ पंजाब की खुशबू, या सिर्फ जो इधर राजस्थान का खाना है वो सर्व किया जाता है। तो एक संस्कृति का कहते हैं ना मिंगल होना, मेल जोल जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हम जिन जगहों पर रहते हैं वहां बढ़ चुका है, जो शायद बहुत ही अच्छी और बड़े ही गर्व की बात भी है। और बिल्कुल ऐसे ही हम बिल्कुल हमारे देश में सबसे ऊपर का पोर्शन कैसे छोड़ सकते हैं, कश्मीर का रोगन जोश और गोवा की फिश करी, एमपी का पोहा जलेबी, छत्तीसगढ़ का चीला हो या झारखंड का धुसका, अगर आपने खाया हो तो सीरियसली आपको बेहद पसंद आएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का हर कोना अपनी थाली में एक नई कहानी परोसता है। यही विविधता भारत को स्वादों का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा देश बना ले जाती है ना। यही हम बात अगर देखें तो ऑब्वियसली हम कहते हैं ना कि हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कहीं मिठास दिल जीत लेती है और कहीं मसाले जो हैं वो यादगार बन जाते हैं। Yes, तो ये तो हो गई बात हमारे देश में अलग अलग जगहों के अलग अलग खानों की। लेकिन एक जो बात हम हमेशा से आपसे करना चाहते हैं, जो हमारी पारंपरिक डिशेस हैं जो खोती जा रही हैं हमारी थाली से, उस पर हमें लगता हम सभी को विचार करना चाहिए। मतलब अगर हम इन पारंपरिक इन ट्रेडिशनल डिशेस की बात करें जो शायद आप कुछ साल पहले तक अपने घर में भी देखते थे, बनते हुए देखते थे, आपकी दादी, आपकी नानी या बहुत पहले शायद आपकी मम्मी भी वो बनाया करती थी, लेकिन अब उन

चीज़ों को हम कहीं ना कहीं सिर्फ मिस करते हैं। शायद इसमें एक रीज़न ये भी है कि जो वेस्टर्न कल्चर जिस तरह से हम सभी पर हावी हो रहा है, तो वेस्टर्न खाना भी उसी तरह से हावी हो जा रहा है, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो खोती चली जा रही हैं। तो उसके लिए कुछ राइम एंड रीजन्स हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या ऐसी डिशेस हैं जो होनी चाहिए पर नहीं है, उसको हम बताएंगे आपको अगले कट में। फिलहाल ये अगला सा गाना जो है प्यारा सा, और ये है श्रेया घोषाल की आवाज में, इसको भेजते हैं आप सभी के रेडियो सेट पर, और इंजॉय करिए इस गाने को। और आप भी जरा सोच लीजिए, माइंड में सोचते चलिए कि कौन कौन सी ऐसी डिशेस हैं, ऐसे कौन से खाने हैं जो कभी हमारे घर की, हमारी रसोई की जान हुआ करते थे और शान हुआ करते थे, आज वो शायद नहीं है, हम सिर्फ उन्हें मिस कर रहे हैं। मेरे माइंड में तो बहुत सारे हैं, आप भी सोचते रहिए। फिलहाल हम नेक्स्ट बात करते हैं उन पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर, हर सुबह 7 बजे।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ दोस्तों, और धड़कन लखनऊ की पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जहां हम बात करते हैं आज के दिन यानी बुधवार को यानी वेंसडे को जायका या बेकरी की। और आज हम हमारे देश की अलग अलग जगहों पर जाकर वहां के डिशेस को बखूबी बहुत प्यार से चख कर आ चुके हैं। और अब हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो है कि कौन सी ऐसी डिशेज हैं या कौन से ऐसे खाने हैं जो आज के समय में हम सभी की थाली से गायब हो चुके हैं। कहते हैं ना कि जो स्वाद कभी रसोई की शान थे, आज बस किस्सों और यादों की पहचान है। और ऐसे बहुत सारे खाने हैं। अच्छा, मैंने कहा था आप भी सोचिए और आपके जहन में क्या क्या आता है। खैर, ये शायद आप सोच ही रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो फटाफट से मेल करके बता भी देते हैं, क्योंकि हमारी मेल्स जो हैं वो यहाँ लगातार खुले रहते हैं। तो उसमें नीलम सिंह ने अभी बस तुरंत ही टेक्स्ट किया है कि बाजरे का राब इनकी दादी हमेशा बनाया करती थी और वो अब घरों में नहीं बनता है। यूपी सिद्धार्थनगर से इन्होंने मेल लिखा है। तो नीलम सिंह

देश की अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ की डिशेस को बखूबी बहुत प्यार से चख कर आ चुके हैं। और अब हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो है कि कौन सी ऐसी डिशेस हैं या कौन से ऐसे खाने हैं जो आज के समय में हम सभी की थाली से गायब हो चुके हैं। कहते हैं ना कि जो स्वाद कभी रसोई की शान थे, आज बस किस्सों और यादों की पहचान है। और ऐसे बहुत सारे खाने हैं। अच्छा, मैंने कहा था आप भी सोचिए सोचिए और आपके जहन में क्या क्या आता है। खैर, ये शायद आप सोच ही रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो फटाफट से मेल करके बता भी देते हैं, क्योंकि हमारी मेल्स जो है वो यहाँ लगातार खुले रहते हैं। तो उसमें नीलम सिंह ने अभी बस तुरंत ही टेक्स्ट किया है कि बाजरे का राब इनकी दादी हमेशा बनाया करती थी और वो अब घरों में नहीं बनता है। यूपी सिद्धार्थनगर से इन्होंने मेल लिखा है। तो नीलम सिंह जी, आपने वैसे मेल दिया, ये प्रोग्राम मेल का था नहीं, बट स्टिल ये बहुत अच्छी चीज है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई और आपने अपने माइंड एक्सरसाइज करके मुझे वो चीज बता ही दी कि क्या आपके घर से गायब हुआ है। यस, ऐसा ही था भाई। यूपी की अगर हम बात करें तो एक समय था जहां पर लगभग हर घर में बाजरे का राब बना करता था। और ये मैंने, खैर सही बताऊं तो खाया नहीं है, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है। मेरे फादर इस चीज़ का हमेशा से जिक्र करते थे कि पहले घरों में बनता था। उनकी माँ, मतलब मेरी दादी जी, हमेशा इस चीज़ को बनाया करती थी, इस डिश को, जो अब के समय में शायद सोचना भी बेहद मुश्किल हो चुका है ना। अच्छा, अगर देखें तो अभी थोड़े टाइम पहले ही विंटर्स में मटर का सीजन गया है और शायद ही बहुत कम ऐसे घर हों जिनमें निमोना बना हो। और निमोना एक ऐसी डिश थी जो मटर का सीजन जब एंड होने लगता था तो घरों में ज़रूर बना करती थी। अब बहुत कम ऐसे घर बचे हैं जहां पर ये डिश अभी भी बन रही हो। वो और घरों में बहुत प्यार से बनाई जाती थी ना, रागी की रोटी, जौ या सत्तू, कोदो या कुटकी, इन सब मोटे अनाजों की खिचड़ी, लगता है भाई दाल चावल मिक्स किया और खिचड़ी बना दी। तो अब इन्हीं पर लोग ज्यादा स्विच हो चुके हैं ना। मोए के लड्डू हुआ करते थे, फरा सो हैप्पी ऑल्सो कि एटलीस्ट जिस तरह से मार्केट में कुछ कुछ जगहों पर अब फरा देखने को मिल गया है तो दिल बिल्कुल हरा भरा रहता कि एटलीस्ट ये डिश जो है वो फिर से वापस आ चुकी है ना। और सेम एज अगर हम बात करें ठुसका, ये भी कहीं ना कहीं अब हम सभी के घर से, हम सभी के किचन से विलुप्त हो चुका है। और आज की जो आने वाली पीढ़ी है ना, मतलब अभी भी हम बात कर सकते हैं या जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए तो शायद ये सब भूली बिसरी बातें हो जाएंगी। वैसे बात करते करते मुझे एक और चीज़ याद आ रहा है, शायद आपने सुना हो कि एक घर में हम सभी के, खासकर लखनऊ में बना करते थे, उल्टे पुल्टे बेसन के, वो भी बिल्कुल विलुप्त से हो चुके हैं। और आज से 10-15 साल पहले ये बहुत ही कॉमन सी डिशेस हुआ करती थी, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी डिशेस है जो हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद भी होती थी और कहीं से नुकसान भी नहीं हमारे शरीर को पहुंचाती थी। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे ट्रेडिशन को, हमारी परंपरा से जुड़ी थी, तो हम सभी को हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुई थी। तो अगर कभी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर में क्या बनाएं, क्या आज बनना चाहिए, तो कोशिश करिए उन डिशेस पे वापस जाने की जो आपको लगता है पहले, बहुत पहले हम खाते थे, बनाते थे और अब वो हम नहीं बनाते। देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा सीरियसली ये चीज़ करने में और शायद घर के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जो हमारे खाने हैं ना वो सिर्फ स्वाद से नहीं जुड़े होते, वो हमारे इमोशंस होते हैं। और बहुत सारे आप भी शायद इस चीज़ को फील करते होंगे, आपके घर में बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील करते होंगे या बात भी करते होंगे, फला टाइम पे मेरी माँ या मेरी दादी वो खाना बनाया करती थी, बड़ा अच्छा लगता था और अब नहीं बनता। तो कभी हम सभी को मिलकर ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जब लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कोई ऐसी डिश ज़रूर महीने में एक बार एटलीस्ट ट्राई करें जो आपको लगता है कि अब आपकी रसोई से, अब आपके घर से या अब आपकी यादों से गायब हो रही है ना। तो चलिए, मैं पूरी उम्मीद में हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे घरों की कोई भी ऐसी डिश जो हमेशा से चली आ रही है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, बिल्कुल भी गायब ना हो, बिल्कुल भी विलुप्त ना हो, इसके लिए ज़रूर कोशिश करिए। और इसी बात के साथ अब प्रोग्राम शत्रुपा से आपकी दोस्त जरीना को दीजिए इजाज़त। अगला प्रोग्राम लेकर के जल्दी से वापस आती हूँ। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर छोड़े जा रहे हैं, फ्रॉम द फिल्म चलते चलते। तो एंजॉय करिए इस गाने को और जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और लेकर फिर से हम हाजिर हैं आपकी पसंद के नगमे अनुरोध गीत में। और आपको बता दें कि आज पहला पत्र आप सभी श्रोताओं का हम तक पहुंचा हुआ है, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश पत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश पत्ता का। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से हैं, रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं, नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का। पीर बोहड़ा बरेली से हैं, आजाद खां, दिलशाद, मुस्तकीम और तबस्सुम। मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से हैं, फजरुद्दीन भाई, अब्यार भाई, अफजाल भाई, रामप्रसाद शर्मा, गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से हैं, फहीम खां, सिद्दीकी अली, साबिया और दुनिया नगर से हैं ठाकुर मुन्ना।

सिंह कठेरिया। और ये पत्र हमारे पास पहुंचा है जसपुर उत्तराखंड से, हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ। पीएससी नकटिया से हैं ताराचंद्र बबली। बैली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमान भारद्वाज, महीपाल, प्रदीप पाल, नमन, संतोष और नितेश सोनू। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरज श्री यादव का। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। बहड़ी से हैं अंजुम भाई और खालिदा बेगम। पीपरपारा पालचुवा मुंगेरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर का। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर, हितेश सागर उर्फ पंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी एकता, दिव्या रचना, ओमवती भारती, रवनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है एक रिश्ता और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी का अनुरोध गीत में। मलोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा शायना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल धर्मपाल, रमेश मिगलानी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। बठिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव कुमार हेड़ा जिला सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया। वीरमगांव गुजरात से हैं हेतल कृष्णा, जैमिन भवसार, अजीत भवसार, भावेश और सनी। जमभेदपुर से हैं बड़ा बांबो गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी का। गंज डुंडवारा से हैं मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बबली, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महजबी शेख बाद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांधी रोक चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक, विरक मीका विरक। जिला जलगांव से हैं आप सभी लोग बहादुरपुर से सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, रविन्द्र सोनार, नरेंद्र दंगवाल, संतोष कुमार। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनिष सेतिया। छावनी अशरफ खां मंदिर के सामने से हैं आप सभी लोग जिला बरेली से रीता, विनोद कुमार, वंश, छोटी गौरी काकू, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, रामप्रसाद शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है हर दिल जो प्यार करेगा और इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

0: मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@bareilly.cbs.gmail.com।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली और 100.4 FM पर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोत्रा मुस्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। डावर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी। कंजुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत घमड़ाकर राही, सरिता घमड़ाकर, सिद्धांत घमड़ाकर, प्रिंस एकांश घमड़ाकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुरा से हैं शैलेश घमड़ाकर, वैशाली घमड़ाकर, श्वेता सुमित और कुमारी धुनी घमड़ाकर। परी यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं फिशन दत्त भरद्वाज, शिव दत्त, गंगा दत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भरद्वाज, शिप्रा नीलम और मुन्नी देवी भरद्वाज, साथी श्री राम राठौर। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। लक्षनपुर से हैं आप सभी लोग छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष और अरु साहू। शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहल्ला हलवाईयान से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर का। खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉ त्रिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समर, राज वर्मा, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। मोहल्ला गड़गिया बरेली मस्जिद के पास से हैं केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवे शमसी, रजिया शमसी और बेबी का। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। कुंज निवास धाकुंज इज्जतनगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित जौहरी और शायना बी। वजीरगंज जिला बदायूं से हैं प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वर्ष।

ने कहा। राजनंदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान का। जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश, कुड़िया और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी ने पसंद किया है अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में जुनून फिल्म का ये गीत।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIRBareilly@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareilly@gmail.com।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहां है आप वहां है हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और सुन रहे हैं आप इस समय अनुरोध गीत। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चेतन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। लिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा। लेवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी। लक्षणपुर से हैं विश्वनाथ साहू। चर डोगरी एपरिया से हैं दुर्गाराम साहू। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक रोशनी प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार। बिलरामगेट कासगंज से हैं आवाद खान, अकरम सैफी, जैबुनिशा बेगम। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप बुगलानी और जगमोहन प्रजापति। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। मस्तनपुरा से हैं आनंता भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत। दसमले चौक परतूर जालना से हैं जय श्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और इनके परिवार के सभी सदस्य सुधाकर, सौरभ दसमले, सुरेश अप्पा दसमले। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशनी, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवि श्रीवास्तव का। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्री

श्रीवास्तव, रट्टे नगला अलीगंज एटा से हैं। दीपक शाह के, ज्योति शाह के, अंकित शाह के, पूजा और सक्षम शाह के। प्राण तल्लभ डुमराव से हैं। वली उल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी और सोनम। सारिमपुर बक्सर से हैं। शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं। डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से हैं। लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। जिला बदायूं कस्बा बिलसी से हैं। रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फरासत अलवी, गुलशन अलवी, जानवी अलवी, हानिया, रिजाकत अलवी, शाहीन अलवी, आहिल बाबू अलवी और आदिल अलवी। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं। राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से हैं। विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त कस्बा शीशगढ़ से हैं। गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी, फरहान इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है फिजा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने।

और श्रोताओं ये पत्र आप सभी का हम तक पहुंचा है, बठेना पाटन से है बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम, चटौदा सरागांव से है सुजान, सुभद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष्ण वर्मा का, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से है नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल और पायल वर्मा, साथ ही प्रियांश और ऋषि वर्मा, करुणा मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान, और सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, रेहान शेख और इमरान शेख, अजीत नगर मलोट पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंता, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर का, लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, मोपका भट्टापारा से हैं देवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा साहू, आजाद नगर लक्सर हिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से हैं मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, पुराना होली चौक ग्राम करगेना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज, इशिता, वीर, संदीप, चंचल, सूरज, शिंकी और अबरार अंसारी, कटरा चांद का मौर्य मंदिर पार्ट नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, श्रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, और अब अनुरोध गीत ही ये आखिरी पेशकश आप सभी की पसंद पर। जी हाँ, अनुरोध गीत में बेलडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर और प्राची करमरकर, साथी हैं तनु। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शायना शर्मा। ग्राम बुड़गहन से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी, इनके दोस्त। चिरेठी बरेली से हैं, रेलवे बरेली कैंट से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं लालू मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन और मस्तान बाबा का साथी हैं निसार। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। गांव चौहलदा से बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, मुस्कान और कुणाल। ग्राम बगबुड़वा पथरिया नेताम से हैं नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका और प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। झलावाड़ राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई, प्रभुलाल बागरी। और इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश कौड़, शादाब खत्रिका। और बहड़ी से हैं नकुल, नैन्सी, प्रिया और रोजी। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है राजा और इस गीत को गाया है उदित नारायण और कयाग्निक ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया है इस गीत में नदीम श्रवण ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
1: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
0: यातायात नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अपने और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। आज की बचत ही कल की सुरक्षा है। पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दें। श्रोताओं, जाइएगा कहीं नहीं और आप बने रहिए हमारे साथ लगातार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेश 4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत रोचना मिश्रा के साथ। साथियों, दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम रसरंग का। तो आज का रसरंग कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं आपका रेडियो दोस्त। सबसे पहले आइए सुनते हैं जहीर अहमद खान और शाहिद अहमद खान की आवाज़ में ये कव्वाली।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। अगला आपके बीच हम लेकर के आए हैं गजल पंकज उदास की आवाज में, लेकिन उससे पहले एक सूचना। श्रोताओं आपकी बात आकाशवाणी के साथ आज हम रिकॉर्ड करेंगे 2:30 पर और इसका प्रसारण होगा शाम को 4:00। हमारा आज का विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। जी हाँ श्रोताओं, एक बार पुनः नोट कर लें, टॉपिक हमारा गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। और आप हमें फोन कर सकते हैं 0581-251-7200 पर। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, पंकज उदास की आवाज में अभी आपने सुनी ये गजल। आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रोग्राम रसरंग, ओनली ऑन 100.4 FM पर। श्रोताओं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, जिसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे 2:30 पर। हमारा आज का विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, और इसका प्रसारण होगा शाम 4 बजे। हमारा फोन नंबर है 0581-251-7200। जी हाँ श्रोताओं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ साथ आप हमारे आकाशवाणी के पेज पर अपने कमेंट भी कर सकते हैं, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अमित चंद शर्मा के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं रसरंग में गजल कव्वाली और लोकगीतों का। तो आइए सुनते हैं इसी कड़ी में कैसर आजाद बदायूनी की गाई हुई ये कव्वाली।

0: रूप की देवी।
1: श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 2:30 पर हम रिकॉर्ड करेंगे आपकी कॉल, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। और हमारा आज का विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, और इसका प्रसारण शाम 4:00। आइए रसरंग में सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, इसी गजल के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी।

का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का यह पहला गीत, जो कि है उजाला फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में यह अगला गीत, जिसे लिया है फिल्म नागमणि से। गीता दत्त की आवाज है, प्रदीप के पुल हैं और अविनाश व्यास ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे शरारत फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे धूल का फूल फिल्म से यह गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और एन दत्ता ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं संतान फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल और दत्तराम के संगीत के साथ और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सदा सुखी रहिए नमस्कार।

0: की सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
2: बैठी हुई हूँ आपके सामने। बैठी
1: भाई मेरे सामने तो बैठी हूँ, इन दिनों क्या कर रही हो मैंने ये जानना चाहा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
2: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
1: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए। और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं, तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
2: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी, कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे होंगे,
2: हमें सुन रहे हैं,
1: कुछ अचार भी डाल रहे हैं।
2: हाँ, हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं, तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते ही अपने टिफिन।
2: और कभी कभी ऐसा होता ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है, तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
1: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना, तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
2: या
1: है?
2: फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
1: और या प्याज का सलाद खाना हो ना, उसमें भी अचार डालकर
2: खा सकते हैं,
1: मस्त।
2: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती है।
1: शान होते, तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना, तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक आचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिख कर भेज चुके होंगे
2: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है, उस पर हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय हैं आज के?
2: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
1: संयम
2: इसे कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
1: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारी सखाओं से, हमारी सखियों से, कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहां कहां संयम खो दिया था
2: या फिर झुंझला उठे।
1: वही बात कि मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है, और आपकी धर्मपत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
2: संयम टूट गया।
1: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप

0: और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है, और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, भाई क्या हो रहा है।
1: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहाँ हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। हाँ, संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
0: और कब कब खो दिया संयम,
1: वो तो बताना ही है, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों
0: भी है
1: ना।
0: जी। और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है इस बारे में जानकारी।
1: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
0: बहुत नरम मुलायम, बहुत सुंदर।
1: तो सोनाली, इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे,
0: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इलकल साड़ी के,
1: क्या बात है। तो और देखिए, सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
0: बहुत ही ज्यादा। यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं, उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं, किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उस पे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही है,
1: बिल्कुल मिलता कुछ नहीं है, है ना। लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं, और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
0: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त,
1: समय, और सोचिए दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
0: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
1: बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें। हाँ, कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए,
0: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
1: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया। हम नाराज हो जाते हैं, पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया।
0: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे
0: भाई
1: भाई।
0: हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इलकल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना है,
1: खरीदनी पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है, हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इलकल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इलकल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इलकल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इलकल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग है।
1: मांग हो गई है, बिल्कुल सही कहा। और इलकल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे तेनी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे

0: और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की एक पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, इसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
1: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है घर चल सके, उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और इलकल साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था, ये कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और इसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
1: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और से और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है। तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो, तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का ऐसा लगता है वक्त बहुत
0: ज्यादा लगता है,
1: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़े 1-2 घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसके जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे, तो हम आराम से पहन के जा सकते।
0: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं, कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
1: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं हम साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है, तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
0: उतना ही समय लगता है, उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट्स लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा कुछ और होता है
1: ना।
0: चलिए तो गीत सुन ले,
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं, जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है
1: तो ऐसी
0: कि
1: जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं।
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता
0: बिल्कुल, एक पन दो काज है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में आपने कहा अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, की जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
0: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: बहुत
0: है,
1: बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा

0: मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ।
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत। ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।
1: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम है।
0: हाँ वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है। हम किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी,
1: की भाषा
0: का। आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं। उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं। तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: ये सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए। समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने। और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग। और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें। तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले तो यही माध्यम ज्ञान जुड़ा और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताबें।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 104.4 FM पर। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: प्रबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओ आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर

जाटो, अकरम जाटो, आफताब जाटो, महताब जाटो, मिराज जाटो और अल्ताफ जाटो। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थी, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना। जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढ रहे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्य करता है इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है,
कुटुम्ब सर की गुफाओं में फुस

0: फुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और बसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग दीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि

0: तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
0: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूँ।
3: तो फादर, मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही

0: हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
3: आइए आइए फादर बुल्के, मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
3: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
3: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
3: जी,
1: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
1: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
4: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
4: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
1: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे वो अपनी मात्र

0: त्रिभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक दिन 2:30 पर और इसका प्रसारण होता है शाम को 4 बजे। और हमारा फ़ोन नंबर है 0581-2517-200। और आज का हमारा श्रोताओं विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। साथियों, गर्मियाँ अपने उरोस पर हैं और इस गर्मी के मौसम में जहां मानव जाति त्राही त्राही कर रही है, वहां पर जो बेजुबान पशु पक्षी जो होते हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम उन बेजुबान पशु पक्षियों का ध्यान रखें ताकि वो इस गर्मी के मौसम में भी स्वस्थ रह सकें। देखते हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के पहले कॉलर कौन हैं। देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो।
6: हेलो
5: जी, प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका फोन लग गया। कौन बोल रही हैं आप?
6: जी मौलागन नई बस्ती बरेली से तरन्नुम अंसारी बोल रहे हैं।
5: तरन्नुम अंसारी जी, प्रोग्राम सुनती हैं आप हमारे?

0: नहीं सर, हम सुनते हैं रोज आपके प्रोग्राम, अच्छे लगते हैं।
1: कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
0: जी सर, यही सुनते हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आपकी पसंद और ग्राम जगत भी सुन लेते हैं कभी कभी
1: जी,
0: और अंकुर भी सुनते हैं, इस बार को आता है ये पसंद, तो सबसे अच्छा प्रोग्राम लगता है मुझे।
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हम रोज लिसनरों से बातचीत करते हैं, तो इससे आपके ज्ञान में क्या बढ़ोतरी होती है, कुछ इससे जानकारियां जी
0: मिलता है, क्योंकि हर दिन एक नया विषय होता है, तो हर दिन हर श्रोता का अलग अलग विचार जानने को मिलते हैं, और अपने आप में भी पता चल जाता है कि इसका ये मतलब है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आज हमारा विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। गर्मी पड़ रही है तो जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है?
0: जी सर, हमारी जिम्मेदारी तो ये है, अगर हम जैसे सुबह में उठ रहे हैं तो रात का थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है उसे डाल दें, और फिर पानी भी कटोरी में रख दें तो वो पी भी लें और खा भी लें।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि
0: हमारे घर पर पेड़ लगे हुए सर, पक्षी बोल भी रहे, हम ऐसा ही करते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी,
1: चलिए, बड़ा अच्छी बात आपने कही, और वाकई में ये हमारा नैतिक दायित्व भी है कि जो बेजुबान जानवर हैं या जो पक्षी हैं उनकी देखरेख करने का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति इस गर्मी के मौसम में, जबकि भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस भीषण गर्मी
0: पेड़ के ही नीचे हूँ सर, बोल भी रहे पक्षी।
1: अच्छा,
0: आती भी होगी आवाज।
1: कौन सा पक्षी बोल रहा है?
0: वो छोटी वाली गौरैया है।
1: चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज इस प्रोग्राम के माध्यम से?
0: जी सर, फिल्म का नाम है दहक और गाने के बोलन, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम मेरी आंखों में तुम।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: श्रोता 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारे फेसबुक पेज पर ये कमेंट आया है, विष्णु मस्कीन, रितिका मस्कीन, वाणी आराब, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मस्कीन, आरोही, प्रियांशी सोनी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट, सोलापुर महाराष्ट्र से। आप लिख करके भेजते हैं कि गर्मी के दिनों में पशु पक्षियों को भी पानी और छाया की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी मनुष्यों को। हमारी जिम्मेदारी है कि घर के बाहर छत या आंगन में स्वच्छ पानी से भरे बर्तन रखें और नियमित रूप से उन्हें भरते रहें। पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें तथा आवारा पशुओं को भी पीने का पानी उपलब्ध कराएं। पेड़ पौधे लगाकर और उनकी रक्षा करके हम उन्हें छाया और सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। संदेश इन्होंने ये देना चाहा है कि मानवता केवल इंसानों की सेवा में नहीं बल्कि पशु पक्षियों की देखभाल में भी दिखाई देती है। गर्मी में एक कटोरा पानी किसी जीव के लिए जीवनदान बन सकता है। जी वाकई में विष्णु मस्कीन जी, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे सभी सुनने वालों के लिए दिया और हमें चाहिए कि हम इसे अपने जीवन में शामिल करें और साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों की देखरेख करें। एक फोन कॉल्स इस वक्त हमारे साथ है, तो आइए सुनते हैं ये कॉलर क्या कहते हैं।
1: ये बात आकाशवाणी के साथ हो रही, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी सर, कसबा सीजल से गुड्डू इदरीसी बोल रहा है सर।
1: गुड्डू इदरीसी जी, बहुत स्वागत है आपका, और अक्सर आपका नसीब माने कि आपकी कॉल, जब भी मैं फोन पर होता हूँ तो आपकी कॉल लगी जाती है ना?
2: सर देखिए, मुझे इस रेडियो से बहुत लगाव है सर।
1: चलिए, लगाव आपको इस प्रोग्राम से है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि आप और प्रोग्रामों से भी अपना लगाव बनाए रखें, अपने मेल्स भेजें। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप आकाशवाणी बरेली के?
2: अरे आपकी फरमाइश है, फरमाइश है, और भी कृति मंच है, लोग मंजर, ये सब सुनते ही रहते हैं सर।
1: जी, अनुरोध गीत है आपकी पसंद कार्यक्रम? जी जी, चलिए अच्छी बात है कि आप हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को सुनते हैं। कैसे लगते हैं आपको प्रोग्राम?
2: सर बहुत बढ़िया सर, आप इतनी मेहनत करते हैं तो सर बढ़िया।
1: गर्मी का मौसम चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: जी सर देखिए, पशु पक्षी बेचारा एक बेजुबान जानवर परिंदा होता है सर।
1: जी,
2: उसकी जिम्मेदारी सर हमें को ही रखना, उसको सर कभी मिले बेचारा पानी रख दो, उसको दाना खिला दो, सर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सर उसकी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और साथ साथ जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये भी पशु ऐसे होते हैं कि जो बेजुबान ही होते हैं, और इनके प्रति भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, खास तौर से गर्मियों के मौसम में, है ना?
2: जी सर, वो बेचारे
1: जबकि हम
2: प्यासे होते हैं तो सर हमें देखना चाहिए कि कभी प्यासा तो नहीं।
1: जबकि हम लोग तो कह सकते हैं और फ्रिज से निकाल करके ठंडा पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ये बेचारे ना तो कुछ कह सकते हैं, सिर्फ अपना इशारों के माध्यम से ही अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, है ना?
2: जी सर,
1: तो हमें इनकी भाषा को समझने की जरूरत है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर से इनके खाने, इनके पीने का विशेष अगर हम ध्यान रखेंगे तो देखिए, ये एक तो पुण्य का काम भी होगा और साथ साथ हमें इसका सवाब भी मिलेगा, है ना?
2: जी सर, जी सर।
1: गुड्डू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
2: दादा पिछले
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ?
1: बापू तुम आ गए बापू।
2: बापू
0: मुन्नी देख मैं तेरे लिए गुड़िया लाया।
1: गुड़िया? बापू करीमन आपा बड़ी अच्छी बातें सुनाती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए।
0: ईमान? ईमान क्या होता है आपा?

0: सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ कहते हैं, गर्मी हो या सर्दी हमेशा पशु पक्षियों जीव जंतुओं की देखभाल हमें करनी चाहिए। ये इंसान का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, लेकिन गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों को पानी और छांव की ज़रूरत होती है जो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे कि हम सभी साथी मिलकर पशु पक्षियों के लिए पेड़ पौधों के नीचे वहाँ पर पानी की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि इन अनमोल जीवों की हम रक्षा करें। वाकई में बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि हमें आपको आगे आना होगा और इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए इनकी देखभाल करनी होगी, इनके दाने का, इनका पानी का व्यवस्था करनी होगी, इनकी छांव की व्यवस्था करनी होगी, तभी हम इस धरोहर को बचा पाएंगे। वरना हम देखते हैं कि पहले जो छोटी छोटी गौरैया हुआ करती थी हमारे घरों के अंदर आके चाँ चाँ करती रहा करती थी, लेकिन आज वो प्रजाति हमारे घरों से विलुप्त हो चुकी है। तो हमें फिर से दोबारा से उसी गौरैया को अपने घर की मुढ़ेर पर लाना होगा और उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना होंगे, तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जो पक्षी आज हमारे बीच चला गया है कहीं दूर रूट कर हमसे, वो दोबारा हम तक पहुंचेगा। और देखते हैं एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है।
1: हेलो,
2: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं जिला बरेली थाना मेरगंज ग्राम रसूलपुर इमामबाड़े के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
0: बहुत स्वागत है आपका। और
2: सर,
0: आज का हमारा इस प्रोग्राम में जो विषय है, गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
2: जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से गर्मी में हम अपनी देखभाल करते हैं, इसी तरीके से हमें अपने पशुओं की, पक्षियों की देखभाल करना चाहिए, बेजुबानों की। हम अपने अगर उनकी देखभाल करेंगे तो उनके भी दिल को खुशी मिलेगी, क्योंकि समय से उनके लिए हमें चारा भी डालना चाहिए और अपनी छतों पे पानी भी उनके लिए हमेशा बदलना, ताजा रखना चाहिए, ताकि वो भी अपने पीकर और अपने दिल की प्यास बुझा सके और उन्हें भी सुकून मिले।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके घर में पशु तो होंगे पले हुए?
2: जी हाँ, मेरे घर में पशु हैं, बकरी भी हैं और दो तीन बिल्ली भी हैं।
0: क्या बात है, क्या
2: और बाकी मतलब जो मेरे घर में पक्षी भी हैं।
0: बिल्कुल, इस गर्मी के मौसम में आप उनका खास तौर से ख्याल रखें और ज़्यादा, और जहाँ तक हमारी ये आवाज़ हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी विशेष ध्यान रखेंगे इन बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके अल्ताफ हुसैन अंसारी। कौन सा गीत सुनेंगे?
2: जी आज मोदी है आग और सोला, गाने के बोल है, आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।
2: सर ये मैं अपने कुछ दोस्तों के नाम ले सकता हूँ?
0: बोल दीजिए
2: जी। बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और बंदन अली भाई है, इन्हीं के लिए गाना सुनना चाहता हूँ।

0: रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत कहते हैं कि पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था रखें, पानी की व्यवस्था रखें, पानी रोज बदलते रहें। जहां पक्षी इकट्ठा हों वहां शोर करने से बचें। पशुओं को रोजाना नहलाना चाहिए, उन्हें ताजा घास और चारा देना चाहिए। बाल्टी और बड़े टब में ठंडा और साफ पानी दें। बहुत ही प्यारा संदेश गंगा सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं कि हमारे ये कॉलर कौन है इस वक्त फोन लाइन पर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, कौन श्रोता बोल रहे हैं हमारे?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा बोरिया, तहसील नवाबगंज, चंपारण, बरेली से ही बोल रहे हैं सर जी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। राजेंद्र जी, आपके कमेंट्स, आपका मेल हमें बराबर मिलता रहता है। कैसे लगते हैं आपको हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम?
1: सर जी, कार्यक्रम सभी अच्छे चल रहे हैं और अच्छे लगते हैं, सुनते रहते हैं। मनोरंजन के हो, चाहे ज्ञान की बातें हो, चाहे बच्चों का प्रोग्राम हो, सभी सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, बस यही आपका जुड़ाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब आप हमारे कार्यक्रम से शिद्दत के साथ जुड़ते हैं तो हमें भी कार्यक्रम करने में बड़ा अच्छा लगता है। आज का हमारा टॉपिक है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: सर जी, जैसे जिम्मेदारी तो हमें निभानी भी चाहिए, जैसे हम अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हैं, वैसे वो भी हमारे बेजुबान होते जानवर हैं, तो उनका तो ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है। पशु के लिए वो तो अपने यही देखते हैं कि हमें कब चारा कब पानी मिले, वो बोल तो ही नहीं सकते, वो इशारे ही दे सकते हैं। अगर आप नलके गाय जा रहे हो तो वो इशारा ही दे सकते हैं कि वो देखते हैं, जब प्यासे होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि हमारा पशु प्यासा है, उसे पानी पिलाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी तरह से ये बेजुबान जो पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं, इनका भी ध्यान रखने का हमारा दायित्व है और हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ कोशिश करें कि
1: हमारे पक्षी होते हैं, जैसे गौरैया है, गिलगिलियां हैं, और ये हमारे जानवरे और हैं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। हम तो खैर एक टब ले लिया है, उसी में टंकी आती रहती है, उसी में पानी छोड़ देते हैं, चिड़िया आके पानी पीती रहती है और दाना भी रख देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत अच्छी गौरियों के लिए
0: बहुत अच्छा, क्योंकि ये बेजुबान जानवर जो होते हैं इनकी जो दुआ होती है वो डायरेक्ट हमें असर दिखाती है ना, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके राजेंद्र गंगवार जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: हाँ जी, तो मूवी का नाम रहेगा शेषनाग, तो पशु पक्षियों की बात चली है तो उसमें एक सॉन्ग है, दोस्तों चले आओ मैं तुम्हें बुलाता हूँ, कुछ ऐसे ही सॉन्ग में है उसके बोल
0: जी।
1: याद नहीं है,
0: चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हुए हैं और साथ ही फोन कॉल्स भी हैं। ये हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से। कहते हैं कि बहुत अच्छा विषय है जी आज का, बहुत शुक्रिया। वास्तव में हमें इस गर्मी में पशु पक्षियों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, उनको भी तो उस खुदा ने ही तो बनाया है। वो बोल नहीं सकते पर हम सब तो उनका ख्याल रख सकते हैं, उनको दाना पानी आदि दे ही सकते हैं। पक्षियों के लिए आवश्यक स्थान पर इस गर्मी में पानी जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद विनेश कुमार जी। और अगला कमेंट ये हमारे पास आया है लाल मोहम्मद अंसारी का। आप कहते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और आज का विषय है गर्मियों में के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। गर्मी के मौसम में हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम पशु पक्षियों का पूरा ख्याल रखें। जहाँ पानी की व्यवस्था करके रखें, उनके घोंसलों के पास छाई की व्यवस्था करें, पशुओं को पानी पिलाएं ताकि पशुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और लालू मिस्त्री अंसारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत सा संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुँचाया। और आप हमारे श्रोता हैं भेरूलाल बख्तारिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आप कहते हैं कि पानी की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती, इंसान हो या जानवर। गर्मी के दिनों में पोखर तालाब नहर आदि जगह हर जगह पानी सूख जाता है, ऐसे में पशु पक्षियों को प्यास बुझाने भटकना पड़ता है। इसलिए अपने घर की छत पर आंगन में और पेड़ों के आसपास हम पानी के सकोरे भर कर रखते हैं जिनमें पक्षी पानी पी सकें। साथ ही खेतों में एक निश्चित जगह पानी एक हौद नाद या गड्ढे में रोज भर देते हैं जिससे बड़े जानवर वहां पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। बहुत ही प्यारी बात भेरूलाल बख्तारिया जी आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन पर हैं।
1: हेलो,
0: वालेकुम सलाम, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: सुल्तान अज़ा बात कर रहा हूँ जी आपसे।
0: सुल्तान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज का हमारा जो विषय है, गर्मी क्योंकि पड़ रही है, आज 24 जून हो चुकी है और गर्मी बराबर अपने उरोज पर है। आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके प्रति हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: उनकी जिम्मेदारी हमारे लिए रहती है कि धूप में कुछ लोग ऐसा होता है पशु को बांध देते हैं फिर वो बांध के भूल जाते हैं
0: जी।
2: तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको उनको भी गर्मी लगती है तो उनको टाइम से पानी है, उनके लिए चारा है और वो छाई में बांधे ज्यादा अच्छा रहेगा। और छतों पे थोड़ा सा एक नमकीन वगैरह दाने आते हैं ये डाल दें और एक कुंडे में पानी रख दे जो की चिड़िया हमारी जो है वो पीती रहेंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और मतलब हमारे अपनी... तो सर अभी 3 दिन पहले ही चिड़िया ने 3 अंडे भी दिए।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और वाकई में हम लोगों को चाहिए कि जो बेजुबान है पक्षी हैं या पशु हैं उनका ध्यान रखें और
2: हम समझ सकते हैं हमारा कर्तव्य है कि उनके प्रति जो है हम धूप से बचा के छांव में बांधे उनके लिए दाना पानी रखते रहें, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है।
0: जी जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
2: सर आज एक बात चिड़िया और पशु पक्षी को ये तो फिर गाना है इसके अंदर टेंशन करती आई चिड़िया तल का दाना लाई चिड़िया
0: सुनवाते हैं। ये गीत आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे जो श्रोता इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको भी ये गीत अच्छा लगेगा।

दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ। जी हाँ साथियों, दोस्ती में, प्रेम में वो ताकत होती है कि बेजुबान जानवर को भी अपना दोस्त बना लेती है। बहुत सारे कमेंट आपके हमारे पास आए।

आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: भी आया बंदर भी आया छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: श्रोता 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और ये मैसेज हमारे पास आया है बबलेश पवार का। आप कहते हैं कि भीषण गर्मी का मौसम है आया, सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाया, तब रही धरती सूख गए हैं सब तालाब, पशु पक्षियों का जीना हुआ बेहिसाब, उड़ते उड़ते थक जाते हैं पंख बेचारे ढूंढ रहे हैं, बूंद बूंद पानी के धारे गौ माता भी छांव को तरस रही है, धूप आसमान से आग की तरह बरस रही है। साथियों आओ मिलकर हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इन बेजुबान जीवों को इस संकट से बचाएं, छत पर मुढ़ेर पर मिट्टी का सकोरा रखें, शीतल जल भरकर पक्षियों का जीवन सुखी रखें, दरवाजे पर गाय श्वान के लिए पानी का टब सजाएं, थोड़ा सा दाना भूसा रखकर पुण्य कमाएं, पेड़ों की कटाई रोकें, हरी भरी छांव बढ़ाएं, कुदरत के इन अनमोल तोहफों को हम बचाएं। प्यासे कंठ को पानी देना सबसे बड़ा धर्म है, बेजुबानों की सेवा करना ही सच्चा कर्म है, एक छोटा सा प्रयास हमारा रंग लाएगा, इस तपती गर्मी में कोई जीव न प्यासा मर पाएगा। वाकई में बहुत सुंदर सी कविता लिख करके बबलेश पवार जी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, आपकी बात को सुन रहे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं सत्येंद्र सिंह मिंटू चनेटी बरेली से। घर की छत बालकनी या आंगन में पक्षियों के लिए स्वच्छ पानी से भरा पात्र रखें, पक्षियों के लिए दाना और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराएं, आवारा पशुओं के लिए छायादार स्थान और पानी की व्यवस्था करें, पानी के बर्तनों को नियमित रूप से साफ रखें और ताज़ा पानी भरें, पशु पक्षियों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें तथा उनके प्रति दया और प्रेम का व्यवहार रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनके लिए प्राकृतिक आश्रय उपलब्ध कराएं। पशु पक्षी भी प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग हैं, गर्मी के मौसम में उनकी सहायता करना केवल मानवता ही नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है, छोटे छोटे प्रयास उनके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। बहुत प्यारा संदेश आपने दिया, हमारे ये श्रोता थे सत्येंद्र सिंह मिंटू चनेटी बरेली से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप हैं तिगड़ी कस्बा आशीषगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किश्वा नूर। गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना और उन्हें भीषण धूप से बचाना हमारा सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है, एक छोटी सी पहल कई बेजुबान जीवों की जान बचा सकती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो रोज का मेरा एक नियम है, सुबह छत पर दाना और पानी रखना पक्षियों के लिए मेरा कर्तव्य है रोज का, और पौधे लगाना और उनमें पानी देना मेरा शौक, बहुत ही अच्छा शौक है आपका, और हम तो यही चाहेंगे कि आप इस शौक को हमेशा कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख खान साहब।
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: सर मैं मंसूरी क्लब ग्राम है चोरा तहसील लक्ष्य सखावत सेन बात कर रहा हूँ। सर
1: कैसे हैं सखावत जी?
2: जी बहुत अच्छे, आप सुनाइए सर।
1: हम भी ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है, गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति

0: हमारी जिम्मेदारी। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: सर यही कहना चाहेंगे सर, हमारी जिम्मेदारी है गर्मियों में सर, तो पशु पक्षियों के लिए मतलब पशुओं के लिए अपने जैसे छत है या कुछ है सर, वहाँ पानी उनी रखना चाहिए, पानी दाना ये मतलब ख्याल रखना चाहिए पानी उनी का सर ज्यादा से ज्यादा।
0: जी
1: जी ये हमारी जिम्मेदारी होती है सर,
0: ताकि जो बेजुबान पक्षी हैं या पशु हैं वो इस गर्मी के मौसम में राहत महसूस कर सकें, क्योंकि वो कुछ कह तो सकते नहीं।
1: मतलब वो हमारी जिम्मेदारी होती है सर।
0: आज हम देखते हैं कि पेड़ पौधे भी कम हैं और तालाब पोखर भी कम देखने को मिलते हैं, तो जिसकी वजह से इन पशु पक्षियों जो हैं वो पूरी तरीके से हम लोगों पर आश्रित होते हैं ना, तो इनकी देखरेख करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है इन गर्मी के मौसम में।
1: अच्छा जी, हमारी है सर।
0: अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे
1: सर आज? कुछ सर अपनी पसंद का इसी टॉपिक के ऊपर कोई गीत हो सुना दीजिए। दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ सर। सर मेरा छोटा भाई है तालिब हुसैन मंसूरी और लहीक मंसूरी, तौफीक मंसूरी, राहुल रस्तोगी, सुनील रस्तोगी, यही सब लोग हैं सर।
0: सुनवाते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, ये कमेंट हमारे पास आया है एडवोकेट वारिस अली खान का, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आप कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। आपको भी आकाशवाणी परिवार की ओर से आदाब और सलाम। आज का विषय मुझे पसंद आया। मैं अपने छत के एक कोने पर मिट्टी के बर्तन में पानी रख देता हूँ, साथ में अनाज के दाने छत पर बिखेर देता हूँ। इतना ही नहीं, पानी भी बदलता रहता हूँ। बेजुबान जानवरों के लिए भी पानी का इंतजाम मैंने अपने घर के दरवाजे पर कर रखा है। गाय को रोज़ शाम को खाना देता हूँ। यकीन मानिए, ये सब करने से मुझे दिली सुकून मिलता है। बहुत ही प्यारी बात वाकई में, जो ये बेजुबान पशु पक्षी होते हैं, अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो जो राहत, जो सुकून हमें मिलता है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट वारिस अली खान साहब।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, कौन बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं इफ़त बात कर रही हूँ, बरेली घंटा घर के पास से।
1: इफ़त जी, प्रोग्राम में स्वागत है आपका। पहली बार कॉल लगा है आज?
2: जी।
1: अच्छा, देखिए, हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं किसी न किसी टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। तो क्या कहना चाहेंगी इस विषय पर?
2: समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसीलिए पशु पक्षियों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो आप पशु पालते हैं घर में, उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उन्हें टाइम पर पानी खाना देना चाहिए, और जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं अपने छत पर या तो कटोरी में किसी में पानी रख देना चाहिए, ताकि वो उसे पी सकें और सही रह सकें।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, पशु पक्षी जो हैं बेजुबान होते हैं, वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम उनका ध्यान रखें, है ना?
2: जी जी।
1: कौन सा गीत सुनेंगी आज आप?
2: जी, मैं जाने दुश्मन एक अनोखी कहानी का सुनना चाहूंगी, जाने मन तू खूब है।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत शुक्रिया आप।

और श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का ये सफ़र बस यहीं तक। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर भेजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली और हमारा पिन कोड है 243001। तो श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत ज़रूर कराइए। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो क्यों, और अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। खत भी भेज सकते हैं और साथ साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हमारा आज का विषय था गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी। 104.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। ये समय है कार्यक्रम विवरण का। तो श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। विषय रहेगा दौरे पड़ने की बीमारी और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शकील अहमद। रात 8 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। नारी संसार का समय रहेगा आज शाम 5:30 पर। इसमें आप चर्चा सुनेंगे, साथ ही होगी एक वार्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के कानूनी अधिकार। जानकारी देंगी हिना जैदी, साथ ही पेरेंटिंग टिप्स और इनसे मिलिए में ओबी। आज ये प्रोग्राम आप सुनेंगे शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। चर्चा रहेगी सह फसली खेती, कृषक गोष्ठी, खेती को लाभकारी कैसे बनाएं। प्रतिभागी होंगे रईस जाफर, जहूर अब्बास, राम सहाय और इनके साथी। साथ में होंगे लोकगीत और आज के इस प्रोग्राम को पेश करेंगे सुरेंद्र पाल और राकेश कुमार शर्मा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज का सवाल कुछ खास है आज, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और साथ ही प्यार की धुन और कार्यक्रम चक्रव्यूह। अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप आनंद ले सकेंगे भजन संध्या का। श्रोताओं, कल की प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर आपका स्वास्थ्य।

डॉक्टर रतन गंगवार के साथ। 8:15 पर आप सुनेंगे नमस्ते बरेली। इसमें बरेली की खबरें और साथ ही ओबी फोनो आप सुन सकेंगे। 11:15 पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम झुमका गिरारे। 3:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम और 4:00 आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपकी पसंद का समय रहेगा 10:00। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनेंगे आप 1:00। लोकगीतों का आप आनंद ले सकेंगे 8:45 पर। 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरंग। रसरंग में गजल कव्वाली और लोकगीत आप सुनेंगे 2:00। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:45 पर। उसके बाद अपराह्न 2:30 पर और रात्रि 9:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कल शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार। इसमें चर्चा होगी जीवन चलने का नाम, साथ ही हेल्थ टिप्स और इनसे मिलिए। 6:00 युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, इसमें आप सुनेंगे कुछ खास है आज। 9/संविधान हत्या दिवस पर जानकारी दी जाएगी और साथ ही डे ऑफ द सेफेरर और ओइलकी और साथ में ओबी। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी, इसमें आज की बात खेत बचाओ अभियान, साथी कृषक गोष्ठी और कृषि समाचार, मौसम नसीहत, सवाल और लोकगीत। श्रोताओं, 7:00 आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड टॉक्सफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर से भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:31 पर और उसके बाद रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी, हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 102.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5:05 और 5 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भजन संध्या।

अनुप जलोटा व साथियों के स्वर में आपने सुना ये भजन। श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। तो आइए सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये एक और प्यारा सा भजन।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या 100.4 FM पर आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है। समय हुआ है शाम के 5:30 और आइए आप सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार, शिप्रा श्रीवास्तव के साथ।

स्वागत है, अभिनंदन है सभी सखियों और श्रोताओं का। आपके साथ आज हूं मैं शिप्रा श्रीवास्तव और आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पर बरेली का आकाशवाणी केंद्र और सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार। सखियों, गर्मियों की छुट्टियां अब समाप्ति की ओर हैं और बच्चों के लिए छुट्टियों का मतलब देर तक सोना, खेलना, घूमना, टीवी देखना और बिना किसी तनाव के दिन बिताना। लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुलने के दिन करीब आने लगते हैं, बच्चों के साथ साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगती है। तो आज हम जानेंगे, हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि कैसे छुट्टियों के बाद बच्चों को स्कूल के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाए। सबसे पहले तो सखियों, हमें ध्यान रखना है बच्चों के रूटीन का। छुट्टियों में तो बच्चा चाहे जितनी देर से सोकर उठे, लेकिन स्कूल जाने के बाद तो सोने और जागने का समय बदल जाता है और बाद में बच्चे को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आज और बल्कि हम तो यही कहेंगे कि अभी से ही उन्हें समय पर सोने और जागने

ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनकी दिनचर्या, पढ़ाई और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो स्कूल शुरू होने से पहले धीरे धीरे उनका स्क्रीन टाइम कम करें, उसकी जगह उन्हें किताबें पढ़ने, कलरिंग या फिर परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। सखियों, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करने का एक और मज़ेदार तरीका है उन्हें उसकी तैयारी में शामिल करना। उनके साथ उनके बुक्स और कॉपीज को अरेंज करें, उनका छूटा हुआ प्रोजेक्ट या हॉलीडे होमवर्क जो रह गया हो पूरा करवाएं। चाहे तो उनकी पसंद की स्टेशनरी, टिफिन, टिप बॉटल या फिर बैग भी दिलवा सकती हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे हमें हर चीज़ नई जब मिलती है तो उसका उत्साह ही अलग होता है, तो बच्चों का भी उत्साह बढ़ जाता है। तो ये सब भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा जो एक बात जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है वो ये रेगुलरिटी। देखिए, छुट्टियों में बच्चों का जब जी चाहता है वो पढ़ते हैं, जब नहीं चाहता है तो नहीं पढ़ते। लेकिन स्कूल खुलने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा समय पहले से ही उनके पढ़ने लिखने को सुनिश्चित करें। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें कि इस बात का बच्चे पे दबाव नहीं डालना है, बल्कि ये एक उस प्रैक्टिस, उस अभ्यास का एक हिस्सा है जो हम उसे तैयार करने के लिए दे रहे हैं। बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्कूल खुलते ही उनकी बहुत सारी गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी और पूरी नींद आवश्यक है। सखियों, छुट्टियों के बाद स्कूल जाना बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी एक नई शुरुआत है, तो इसका स्वागत करें पूरे उत्साह और ऊर्जा के। और सखियों, ये जो बात हम कर रहे हैं ना ब्रेक के बाद या छुट्टियों के बाद स्कूल वापस जाने की या फिर एक तरह के कम बैक की, तो एक बात आपको हम बताएं, ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। और ऐसे ही एक कम बैक के बारे में हम बात करेंगे लेकिन आगे के कार्यक्रम में, जो हमारा अगला सेगमेंट है। उससे पहले आइए इस माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं और सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत सा सदाबहार गीत।

0: सखियों कम बैक, चाहे वो छुट्टियों के बाद स्कूल लौटना हो या करियर में एक ब्रेक के बाद वापस से अपना करियर स्टार्ट करना, दोनों ही चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। और जब बात महिलाओं की हो तो ये बात थोड़ी अलग और हो जाती है। कई बार परिवार या मातृत्व या कई अन्य जिम्मेदारियों के कारण महिलाएं अपने करियर से कुछ समय का विराम लेती हैं, लेकिन जब वे दोबारा कार्य क्षेत्र में लौटना चाहती हैं तो उनके सामने कई अवसर और चुनौतियां दोनों होती हैं। तो कैसा महसूस होता है और वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना वो करती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम जा पहुंचे अपनी एक सखी शिवानी जी के पास और जाने उनके अनुभव, क्योंकि वो कुछ समय पहले तक कामकाजी महिला थी लेकिन उन्होंने भी किन्हीं कारणवश बीच में ब्रेक लिया। तो आइए जानते हैं उनके अनुभव और देखते हैं कि क्या परेशानियां ऐसी हर महिला के सामने आती है जो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस कम बैक करती है। तो शिवानी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी संसार में। शिवानी जी, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि जब महिला एक ब्रेक के बाद अपने काम पर दोबारा लौटती है।
1: नमस्कार शिप्रा मैम, नमस्कार मैं सभी सखी श्रोताओं को। मैं शिवानी अब पिछले 2-2.5 साल से हाउसवाइफ थी, लेकिन मैंने इसी साल कमबैक किया है। और मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती आई है मेरे 2 बच्चे, इसमें मेरा एक बच्चा स्कूल गोइंग है और एक बच्ची मेरी छोटी है। तो उन दोनों बच्चों को इसमें सामंजस्य बैठाना, बैलेंस बैठाना, ये सबसे बड़ी चुनौती एक महिला के लिए है। इनफैक्ट मेरे लिए मैं कहूँगी इस समय है कि कैसे उस बच्चे को स्कूल वाले को मैनेज करना, छोटे बच्चे के कैसे मैनेज करना। तो ये एक महिला के लिए जो मुझे लगता है अपने पति बात को ले छोड़ के बच्चों की सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उन लोग को कोई भी बच्चे में सफर ना करें, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो एक महिला की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कम बैक के लिए।
0: अच्छा, पहले के समय के तुलना में आपको क्या लगता है कि आज महिलाओं के लिए करियर में वापसी में आसान है या अभी भी वो उतनी ही कठिन है?
1: इस विषय में मैं कहना चाहूंगी, जैसे पहले के समय में महिलाओं के लिए नौकरियों के अवसर बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाओं के लिए नौकरियों के अवसर बहुत है। क्योंकि अवसर बहुत है इसलिए प्रतियोगिताएं बहुत बढ़ गई हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और उस कंपटीशन को पार करते हुए एक महिला के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है उस नौकरी।

0: को पाने के लिए। तो पहले तुलना में देखा जाए तो अब की आप नौकरी करना बहुत ही मुश्किल हो गई है। बहुत प्रतियोगिताओं का सामना करके आपको एक छोटी सी नौकरी मिलती है। किसी भी आप नौकरी के लिए जाइए, वहाँ एक वैकेंसी के लिए 10 लोग खड़े होंगे, 50 लोग खड़े होंगे, तो उन सबको आपको करते हुए आपको उस नौकरी को लेना होता है। तो उसके लिए आपको अपने क्षेत्र की पूरा ज्ञान होना चाहिए और आपकी और सब आजकल ज्ञान के साथ साथ और बहुत बातें हो गई हैं आपकी, पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स, आपकी लैंग्वेज, आपकी स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ बहुत मैटर करती है आज के समय में। तो एक महिला के लिए इन सबको पार करके एक नौकरी को लेना बहुत मुश्किल हो गया है और वास्तव में पहले की कंपैरेटिवली अब टफ हो गया है।
1: और इस कमबैक के प्रोसेस में आपको क्या लगता है कि परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है?
0: मैम, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि परिवार का सहयोग, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और परिवार के हर एक सदस्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का समय होता है जब एक महिला नौकरी पर जाती है। क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के एक महिला एक दिन भी नौकरी नहीं कर सकती है। उस परिवार में चाहे उसका पति हो, उसकी सास हो और उसके बच्चे, इन तीनों के सहयोग के बिना वो नौकरी नहीं कर सकती। सबका अपना अपना एक रोल होता है, उसके बच्चों का, उसकी सास का, उसके पति का, जिस कारण वो जहाँ जिस क्षेत्र में नौकरी करने जाती है वहां पर ध्यान पूरा केंद्रित कर सकती है और अपना पूरा ज्ञान जो भी उसके पास है उसको पूरा दे सकती है उस क्षेत्र में और आराम से नौकरी कर सकती है। अगर उसको सहयोग नहीं मिलता है तो वो अपन जहाँ पर जा रही है वहां पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकती है, वह नौकरी कर ही नहीं सकती है और इस कारण उस महिला का दिमाग जो है दो जगह बटे रहेगा और वो ना अपने परिवार में ध्यान दे पाएगी ना नौकरी की जहाँ पे कर रही वहां ध्यान दे पाएगी। इसी कारण मेरा मानना है कि परिवार का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बिना एक महिला के लिए कमबैक करना या कोई नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है।
1: चलते चलते आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास तौर पर उन सखियों को जो ऐसे किसी दौर से गुजर रही हैं जिन्होंने एक ब्रेक लिया था और ये वापस कम बैक कर रही हैं, या फिर जिन्होंने पढ़ाई के बाद बहुत लंबे समय तक कोई काम नहीं किया लेकिन वो भी अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: महिलाओं का अपने नौकरी के क्षेत्र में कमबैक मुझे लगता है उनके लिए बहुत एक अच्छा अवसर होता है उनके अपने अपने लिए अपने जीवन के लिए। क्योंकि मैं उसी ही स्थिति में हूँ, मैंने इस साल ही, मेरी 2.5 साल की बच्ची है, मैंने इस साल ही कमबैक किया है, मैंने फिर से अपना स्कूल ज्वाइन किया है और मैं बता सकती हूँ मैं कितनी अंदर से खुश हूँ। क्योंकि जिस महिला का जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, जब उसको वो चीज मिलती है तो महिला बहुत खुशी खुशी हर काम मैनेज कर लेती है, परिवार के साथ साथ वो उस क्षेत्र की नौकरी को भी बड़े आराम से मैनेज कर लेती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी उन औरतों के लिए कि आप जिस क्षेत्र में भी नौकरी कर रहे हैं सबसे पहले आपको वहां का पूर्ण ज्ञान जरूर होना चाहिए, बिना पूर्ण ज्ञान के किसी नौकरी के लिए ना निकले। और आपको अपने जीवन के हर महिला पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, सब जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपने लिए जरूर समय निकालिए। क्योंकि अगर अपने लिए जब समय नहीं निकालेंगे तो एक आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जिससे आप और कामों पर ध्यान नहीं दे पाए, ना अपने बच्चों की पढ़ाइयों पे, ना अपने घर के परिवार के और कार्यों सदस्यों को कोई समय दे पाएंगे, कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अपना जिस नौकरी में जा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि जिसमें आपकी रुचि उसी क्षेत्र की नौकरी करिए और जब जब आपका वहां पर रुचि होगी तो आराम से उसको नौकरी कर सकते हैं।
1: शिवानी जी, आपने अपने अनुभव और अपने विचार हमारी सखियों के साथ साझा किए और साथ ही आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सखियों, शिवानी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे पास अवसर तो होते हैं लेकिन कई बार हम उनके लिए तैयार नहीं होते, और कई बार ऐसे बहुत सारे अवसरों और अधिकारों के होने के बावजूद जागरूकता और जानकारी के अभाव में हमें उनके बारे में पता नहीं चल पाता। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्पसंख्यक महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी, और जानकारी दे रही हैं हमारी वार्ताकार हिना जैदी। तो आइए सुनते हैं ये जरूरी बात।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और आज का विषय है अल्पसंख्यक महिलाओं के कानूनी अधिकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे कोई किसी धर्म, भाषा से या समुदाय से संबंधित हो। लेकिन संविधान सभी को समान अवसर प्रदान करता है, लेकिन जब बात अल्पसंख्यक महिलाओं की आती है तो उन्हें कई बार सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी अनेक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उद्देश्य उनकी सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, यानी कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसका मतलब है कि किसी भी महिला के साथ धर्म या समुदाय की वजह से गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी अनेक कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। श्रोताओं, शिक्षा हर महिला का मूल अधिकार है। शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां और सहायता योजनाएं चला रही है ताकि छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। महिलाएं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। यदि किसी महिला के साथ शारीरिक

0: मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक हिंसा होती है तो हर महिला की कानूनी मदद ले सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो पुलिस या अदालत की मदद ले सकती है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को लेकर हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। 3 तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया गया है, जिससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और न्याय मिला है। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त है। बेटियों को भी परिवार की संपत्ति में कानूनन बराबर का हिस्सा मिला है, जिससे महिलाओं को अधिक सुरक्षा मिली है और वो आत्मनिर्भर और सशक्त बनी हैं। इसके अलावा महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण का अधिकार है। यदि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होता है तो वो शिकायत दर्ज करके कानूनी न्याय प्राप्त कर सकती है। महिलाओं को विवाह, तलाक, भरण पोषण और संपत्ति से जुड़े कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं। किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसे अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। प्रिय श्रोताओं, ये याद रखिए, अधिकार तभी प्रभावी होते हैं जब उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए आवश्यक है कि अल्पसंख्यक महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में उन्हें परेशानी ना हो और वो संकोच ना करें। जागरूकता ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। जब महिलाएं अपने अधिकार को समझेंगी तभी वो आवाज उठा सकेंगी। महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं, जैसे महिला आयोग, महिला राज्य आयोग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तरह महिला हेल्पलाइन जैसी संस्थाएं महिलाओं के मार्गदर्शन और सहायता का उपलब्ध करा रही हैं और अल्पसंख्यक महिलाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर रहें। लेकिन कानूनन बना देना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएं अपने अधिकार की जानकारी प्राप्त करें और उनका उपयोग करना सीखें। मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्पसंख्यक के अधिकार केवल कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का आधार है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करे और सभी महिलाओं को समानता का अवसर और सम्मान और न्याय मिले। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्पसंख्यक महिलाओं और न्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। एक शिक्षित और जागरूक महिला न केवल अपने जीवन को बदलती है, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देती है। अब बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि महिलाओं का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा ही एक सशक्त समाज की पहचान है। इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।
1: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता अल्पसंख्यक महिलाओं के कानूनी अधिकार, और हमारी वार्ताकार थी हिना जैदी।

ऐसा क्यों? घड़ी का इशारा है कि ये वक्त आ चुका है आपसे इजाजत लेने का। तो आज का सफर बस यहीं तक। दीजिए अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम नारी संसार शिप्रा श्रीवास्तव के साथ 100.4 FM पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

हाय हेलो नमस्कार एंड गुड इवनिंग। प्रोग्राम युवाणी में आप सभी सुनने वालों का, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त परवेज। आज हम बातचीत करेंगे आज का सवाल। जी हाँ श्रोताओं, आज का हमारा सवाल है, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका आप जवाब ढूंढ कर रखिए हमारे फेसबुक अकाउंट पर। और साथ ही कुछ खास है आज, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, साथ ही प्यार की धुन, और लेकर आएंगे आपके लिए चक्रव्यूह। श्रोताओं

कर लेते हैं कुछ खास है आज में। साथियों, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। साथियों, प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2022 में घोषित ये दिवस वैश्विक शांति, कूटनीति और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। जी दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं की समान भागीदारी हो, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना। साथ ही विश्व स्तर पर शांति निर्माण, मानवाधिकारों और सतत विकास में महिलाओं के योगदान को स्वीकार करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 20 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प संख्या A/RES/76/269 के माध्यम से 24 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्य लक्ष्य कूटनीति के क्षेत्र में मौजूद लैंगिक समानता को दूर करना और एक समावेशी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना। ऐतिहासिक रूप से कूटनीतिक पद मुख्य रूप से पुरुषों के पास रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से महिला राजनयिकों, राजदूतों और विदेश मंत्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में भी विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जैसे कई अग्रिम महिला राजनयिकों ने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। यदि आप कूटनीति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान या किसी विशिष्ट महिला राजनीति के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो श्रोताओं, इसकी वेबसाइट पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं आज किसी भी रूप में पुरुषों से पीछे नहीं है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही है। बस जरूरत है उनको मान सम्मान देने की, साथ में उनके आगे बढ़ाने की।

कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का रूप ही नारी है। जी हाँ साथियों, आज नारी किसी भी रूप में पुरुष से कम नहीं है। हर उस पद को सुशोभित किया है नारी ने जिसको पुरुष समाज करता है। आज अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिला सुशोभित ना हो। यहां तक कि अगर बात करें कि वर्ल्ड के 5 टॉप 10 बिजनेसमैनों में 2 महिलाओं का नाम आता है। महिलाओं ने आज हर वो काम करके दिखा दिया है जो पुरुष समाज करता है। श्रोताओं, 100.4 FM पर आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम युवाणी, और अब बात करते हैं प्यार की, प्रोग्राम प्यार की धुन। ये प्यारा सा गीत पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्यार की धुन। चक्रव्यूह के पिछले अंक में हमने आपसे कुछ प्रश्न किए थे आपके दिमागी खतरत के लिए। जी हाँ श्रोताओं, उस प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पर आपको बताते हैं, आप भी अपने उत्तर से मिला लीजिए। हमारा पहला प्रश्न था, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु। जी हाँ श्रोताओं, भारत का आईटी हब माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है एशिया। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। चौथा प्रश्न था, दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जी हाँ, इंडिया। पांचवा प्रश्न था, ओलंपिक गेम का आयोजन कितने वर्ष में एक बार होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष में 1 बार। छठा प्रश्न था, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। और सातवां, यूएन के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 193। जी दोस्तों, 100.4 FM पर आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी।

दोस्तों चक्रव्यूह पहेली के हमारे आज के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दूसरा सवाल है, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तीसरा सवाल, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? चौथा सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आज का पांचवा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? छठा सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? और आखिरी सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। पहला सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? नंबर दूसरा सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नंबर तीन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? नंबर चार, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? नंबर पाँच, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? नंबर छः, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? और नंबर सात, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसके जवाब हम आपको देंगे अगले अंक में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं।

0: लंबे जाएंगे?
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जी दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। जी हाँ साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर आए हैं। आप हैं मेहरूलाल बख्तारिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। आपने लिखा है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संजय डिगिया बागपत से। आप हैं पद्मा टाकिस नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और इनके परिवार के सभी लोग। और आप हैं मोहम्मद यासीन अनजान, इन्होंने अपना पता नहीं भेजा। आप हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से। आजन कुमार सिंह, वंदना विनायक सिंह, आप लिखती हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का विस्मार कहा जाता है। मुकेश कश्यप का ये कमेंट सही जवाब आया है। मोहम्मद दानिश सिद्दीकी का मुरादाबाद से। आप हैं झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत। और आप हैं हमारे श्रोता सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आप लिखते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। आप हैं रवि कुमार राहुल। आप हैं राजवीर सिंह यादव मुरादाबाद से। आप हैं जगदीश धाकड़ नायमा। आप हैं सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो। ये दिनेश वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ से। कुंडलेश्वर वार्ड खंड खंडवा से। आप हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, अभय गुजराती और इनके सभी साथी। हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से। आप हैं विजय सुरलकर। बबलीश पवार, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। आप हैं सतेंद्र सिंह मिंटू चनेटी बरेली से। लनेश्वर नगर नारवेल महाराज से PS नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल और इनके परिवार के लोग। मोहम्मद जाकिर मंसूरी कालपी वाले। आप हैं नानक खन्ना, चंचल खन्ना, सफीदो सिटी हरियाणा से। फागुराम यादव, राजेश वर्मा, प्रवीण चौहान, दिग्दर्शन गौड़ और इनके साथ हैं ये गजानन एले दयापुर बावली से। आप हैं सुनील पाठक, सिद्धार्थ गंगदाने गोडाने, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। आप हैं तिवर्ता छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम और शाहजी बुकाडे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सुरेश यादव पैठण से। मोहम्मद अफजाल ताज, लाल मोहम्मद अंसारी, कटर चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली, चनो खिलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी, कपिल बेदराम, कैलाश, सुनील मौर्य, खुशबी मौर्य, आरोही मौर्य, स्वाति मौर्य, नवी हसन अब्बासी मारहरा दरवाजा एटा से। आप हैं मोहम्मद कैसर शमशी बरेली से और इनके सभी साथी। आप सभी के सही जवाब आए। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत सुरेंद्र पाल और राकेश कुमार शर्मा के साथ।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनन वारे सब भैया बहनों को आपके भैया सुरेंद्र
1: और आपके भैया राकेश शर्मा की
0: राम राम। और सुनाओ राकेश भैया, क्या हालचाल है तुम्हारे?
1: भैया हालचाल तो बहुत बढ़िया है, और मौसम में भी देखो थोड़ो बदलाव हो रहा है, कहूँ मौसम ठंडो हो जाता है, कहूँ धूप वगैरह हो जाती है, तो मुझे उतार चढ़ाव तो लगे ही है, लेकिन खेती को काम तो भैया देखो ऐसा है, बारह मासी को काम होते, और हमारे जो किसान भैया हैं खेतन में हर समय कोई ना कोई काम लगो ही रहता है।
0: काम को देखो राकेश भैया, खेती बाड़ी को काम ही ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे भैया बहन काम करता ना, तो कऊ तो कोई फसल ही जाता है, कऊ कोई फसल कर देता है, कऊ कोई फसल कर देता है। और भैया एक बात देखिए आप ना, आज से अगर हम चले जाए 30 साल पहले, 30 साल पहले खेती में काम कम हो, पता भैया कम क्यों हो? कम इसलिए हो कि पहले जो हमारे किसान भैया है ना, वे गिनी चुनी खेती करते, दुइये खेती कर ली उनने, धान कर दे, धान के बाद अपने गेहूँ कर दे, और भैया ज़्यादातर क्या करते, एक आध साल को खेत पर छोड़ दो, ऐसे छोड़ देते भैया, वहाँ में घास या ढेंचा वेंचा बो देते, बाकी तरफ लौट गए नहीं देखते। लेकिन जानवरों को बहुत पालते, जानवरों की देख रेख करते, एक एक के घर में भैया कम से कम 15-15, 20-20 डंगर होते।
1: भैया बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो होगा कि पहले के समय में व्यक्ति के पास में जमीन बहुत थी, और जमीन ज़्यादा ही तो वे लोग उतनी खेती करियो ना पाते, जे साधन तो है ना, जो आज के समय में साधन है, तो बैल हुए किसान भैया के पास में, और बैलन के माध्यम से जुताई वगैरह

0: करते, खेत है बहुत बहुत, तो वे अपने सारे खेत जोतियों नहीं पाते। एक तो जो कारण हो कि उनके बहुत खेत खाली पड़े रहते, दूसरी चीज का ही देखो भैया, अगर बात करें आज की, तो आज हमारे खेत इनके हुए गए हैं टुकड़ा। जहाँ किसी के पास में 100 बीघा जमीन ही, अब धीरे धीरे टुकड़ा होत होत होत 10-5 बीघा बची है। और जब खेत हमारे पास में कम बचे हैं, खर्चा ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो आदमी का सोचता है कि हम इतने ही खेत में कई प्रकार की चीज़ें पैदा कर लें।
1: समझ गए आपकी बात, अब कहना चाह रहे हो, आपको सीधो सीधो कहने का मतलब है कि खेत तो हमारा एक है, लेकिन खेत में एक साथ हम 2 या 3 फसलें एक साथ कर सकते हैं, यानी कि सह फसली खेती करने में ज़्यादा फायदा।
0: बिल्कुल भैया बात आप सही कह रहे हो कि हमारे किसान भैया एक ही संग 2-3 चीजें को खेतन में करते हैं। वैसे होत का जैसे मान लो एक चीज उन्होंने उठाई ली, बाकी बाद में दूसरी चीज तैयार हुई गई, फिर दूसरी चीज को लाभ ले लो। इस प्रकार से हमारे किसान भैया सह फसली खेती को अपनाए गए, अपनी आमदनी को बढ़ाए रहे हैं।
1: राकेश भैया, आज जब हम सवेरे खेत पर काम करने गए ना,
0: हाँ,
1: तो हमने जय करूँगा
0: अच्छा
1: गन्ना के संग भैया शिवाली।

0: खेती को अपनाए गए अपनी आमदनी को बढ़ाए रही हैं।
1: राकेश भैया, आज जब हम सवेरे खेत पर काम करने गए ना,
0: हाँ,
1: तो हमने जय करुआ।
0: अच्छा,
1: गन्ना के संग भैया से वाली लगाई दी।
0: बहुत भैया, देखो कितना बढ़िया आपने काम करू कि उत्तु खेत है,
1: हाँ,
0: वहां में तो गन्नों को आपके लिए लाभ मिल जाए और शिवालियों को लाभ मिल जाए।
1: ऐसे भाई नौ लाख गन्ना वो हमने,
0: हाँ,
1: नौ लाख गन्ना होने के बाद में शिवाली समाओ दी, हमने शिवाली लगाई दी। अब जब शिवाली कट जाए तो भैया गन्ना हमारा सही हो जाए।
0: बहुत बढ़िया काम आपने करो हो, क्योंकि शिवाली की जो ताकत है वाऊ को लाभ हमारी जो गन्ना की फसल है वाको मिल जाए।
1: देखो बहुत से भैया ऐसे हैं, एक हमारे मतलब राम साहब भैया है ना,
0: हाँ,
1: उनने पता क्या करो,
0: क्या करो, उनने
1: गन्ना मक्का बो दी।
0: अच्छा,
1: अब अक्सर गेहूं में लेटा तो अक्सर लोग बो ही देते हैं
0: ना। जाते बात मानेंगे, खैर आपके यहाँ पे जैसे आप जुगाड़ू हो वैसे और भैया किसान भैया आपको देख देख के, हाँ, भी जुगाड़ से काम लेते हैं।
1: जुगाड़ वाली बात है भैया, अब तुमने कही यही, देखो जमीनें तो वास्तव में कम होगी,
0: हाँ,
1: अब खर्चा बढ़िए गए हैं, तो उन खर्चन को पूरे करने के लिए हमें अपनी जो जमीन है वहां में सिर्फ फसली खेती करनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल भैया,
1: जैसे चाहे हम मसूर और लेटा कर लें, गन्ना के संग में कोई फसल कर लें, जैसे कुछ भैया हमारे बरेहानों करता ना भैया,
0: हाँ,
1: तो जैसे एक गांव में गए भैया, हम किसान भैया से बातचीत करने आए, तो हमने देखी उनकी तुरैया लटकी बनी ऊपर, कारी तुरैया।
0: अच्छा,
1: खूब अच्छे जामे पर लटकी भी, तो हमने भैया आओ अब्बा में क्या कर रहे हैं पता नीचे वे,
0: हाँ,
1: बेवा में सेमी और लगाए रहे नीचे से।
0: अच्छा,
1: तब वे जा कह रहे तोलो हमारी कारी तुरैया चलाई,
0: हाँ,
1: तोलो देने हम चला बंगे, और झामा हमारो भाई पुरो रहा है, खेत तो हमें जोते जरूरत ना है, डराई तुरंजन की भैया है तो घास भास तो वहां ही नहीं भैया, तो सेमी तोलो हमारी तैयार हो चुके हैं। जब सेमी तैयार ही जाए काली तुरैया को वो जो जार होते भैया वो उतार के अलग खेत के बाहर रख देंगे, या वो घूरे गड्ढा में डाल देंगे, सड़ जाएंगे वो झामा जो काली तुरैया को, और जाए झामा जाए जो तार बंदी भैया करी ना रस्सी की, बाप है भाई अपने सेमी की बहुत पढ़ाए, यानी कि बांस बल्ली को खर्चा एक बार, जुताई को खर्चा एक बार, नराई गुलाई को खर्चा कम, यानी कि एक पंथ दो काज।
0: ये बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो आज के समय में हमारे किसान भैया जो हैं बहुत जागरूक हो गए हैं, और विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं और हमारे आसपास जो किसान भैया हैं या कृषि के वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से भी उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है, और सहफसली खेती तो करते करते हैं, इसके साथ ही साथ जो हमारे खेती से संबंधित अन्य व्यवसाय हैं उनकी तरफ भी हमारे किसान भैया बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे बहुत से भैया आपने देखी है कि फूलों की खेती करने लगे हैं, कुछ हमारे भैया ऐसे हैं जो कि जो हमारी ऐसी चीज़ों की खेती करते हैं कि दवाई के काम में आवें, और सब्जी वाली फसल तो हमारे किसान भैया करते हैं बढ़ चढ़ के। इसके साथ ही साथ बहुत से भैया हमारे पशुपालन करते हैं, कोई बकरी को पालन कर रहे हैं, कुछ हमारे भैया भेड़ को पालन कर रहे हैं, तो कहने को मतलब कृषि से संबंधित जो अन्य व्यवसाय हैं वे भी हमारे किसान भैया अब अपना रहे हैं।
1: देखो राकेश भैया, हमारे जो भैया बहन है ना गांव में तो रहते हैं, और गांव में रहने को मतलब जो ना है भैया कि उन्हें कोई काम ना आता है, वे उनको जो व्यवसाय है खेती बाड़ी को या गाँव के काम काज में वे भैया बहुत निपुण होता है। और आपने एक बात देखी हुई, अब तो चलो छप्पर कम हो गए, सब्जी खेत पर हम गए ना, एक भैया ने इतना बढ़िया टाण बांध लो, गर्मियों कम लग रही वहां में, हवा इतनी बढ़िया आ रही, खेत की रखवारी हो रही, मक्का ही लगी हुई उनकी, तो उन्होंने कि मक्का को हम कैसे कर रखा हमें, तो भैया उनने खेत के चारों खाई ना देखी धोती बांध दी, जिससे जानवर न आवे धोती से, अब जंगली जानवर भैया काफी है खेतन में जंगलन में,
0: जावा सी करो किसान भैया धोती से खैर आड़ करिए कर लेते हैं, पास एक फायदा कहा है कि कुछ भैया ऐसे में तारवार लगा देते हैं, वैसे हमारे जानवर कट जाते हैं छिल जाते हैं, और धोती हमने लगाई दी है तो धोती से बहुत चीज को खतरा बना रहते हैं। देखो
1: तो भैया बात तो फिर टाण की कर रहे हैं, तो उनने बीच खेत में टाण बांध लो अपने,
0: हाँ,
1: और भैया हम वहां पर चढ़ गए।
0: अच्छा,
1: इतनी बढ़िया हवा आ रही बाबू, बेका करता शाम को उन्हें मक्का रखान जा रहे हैं, दिन मक्का खान जा रहे हैं, बहुत बढ़िया करके छो वो है, बहुत बढ़िया करके अच्छी तरीका से, और बाम बिस्तर लगो वो उनको आराम से जाके बैठे हवा भी खा रहे हैं और अपनी फसल की भी रखवाली कर रहे हैं। यानी कहने को मतलब राकेश भैया जय है, जो हमारे किसान भैया बहन है खेती बाड़ी कर रहे हैं,

0: आप लोग भी ध्यान रखें, मौसम से भी बच के रहे, गर्मी पड़ रही है भाव से बचे, और जंगली जानवर जो भैया जंगल में छुट्टा घूम रहे हैं उनसे भी बचे, यानी कि अपनी खेती बाड़ी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा करना भी बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल भैया, बात आपकी सही है, क्योंकि अगर अपनी सुरक्षा हमारे किसान भैया करेंगे तभी हमारी जो खेती बाड़ी के काम हैं, पशुपालन के काम हैं, तभी हमारे किसान भैया ठीक ठाक और समय से कर पाएंगे, और उनके लिए जिस प्रकार को मुनाफा होना चाहिए वो मुनाफा उन्हें प्राप्त हो पाए।
0: यानी कि कहने को मतलब यह है, हमारे जो किसान भैया बहन है सह फसली खेती करेंगे, यानी एक साथ दो फसल करेंगे तो उन्हें लाभ ज्यादा मिले। तो राकेश भैया देखो, जा तो ही सह फसली खेती करके में बात करी, लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हम कृषि गोष्ठी में लेकर आए हैं खेती को लाभकारी कैसे बनाए, यानी कि जो हमारी खेती है इसको और लाभकारी कैसे करके बनाए। तो जो जानकारी हमारे स्टूडियो हमारे किसान भैया आते हैं, वे किस तरीके से खेती करते हैं वे जानकारी देते हैं, और हम उस जानकारी को अपने जो हमारे भैया बहन हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो जो जानकारी लेके हमारे पास आए प्रतिभागी हैं रईस जाफर, जहूर अब्बास, राम साय, और भैया जो कृषि गोष्ठी को संचालन करो है रविंदर भैया ने। तो आप सुन लेते हैं जो कृषि गोष्ठी।
2: सब भैया को स्वागत है कृषि गोष्ठी कार्यक्रम में। तो भैया देखो, बातचीत तो करेंगे हम लोग, और बातचीत से पहले जाए एक दूसरे को नाव जान लें, गांव को नाव जान लें, तो बातचीत करने में और अच्छा लगा है। तो भैया क्या नाम है आपको और कौन से गांव से आए हो?
3: मेरा नाम है राम सहाय राठौर।
2: हाँ हाँ।
3: नौगमा बीरान, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।
2: और भैया आपको क्या नाम है?
4: मेरा नाम जहूर अब्बास, मैं ग्राम बरखना हरचंदपुर से आया हूँ।
2: और आपको क्या नाम है?
5: मेरा नाम है रईस जाफर, ग्राम बरखना हरचंदपुर, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली।
2: और देखो भैया, हम करेंगे खेतीबाड़ी की बात है। राम साहब भैया, हम जानना चाहते हैं कि क्या उम्र है आपकी?
3: हमारी उम्र होगी 45 वर्ष।
2: खेती कौन से कर रहे हो?
3: खेती करते भी हो गए 20-25 वर्ष करीब।
2: अच्छा, पढ़ाई लिखाई करी ना करी?
3: पढ़ाई लिखाई ऐसी थोड़ी बहुत करी थी,
2: मतलब ज्यादा ना करी?
3: ज्यादा नहीं करी।
2: अब बात करें जहूर अब्बास भाई से कि आपकी क्या उम्र होगी जा समय?
4: करीब मेरी उम्र है 37 साल।
2: 37 साल उम्र है। खेती कौन से कर रहे हो?
4: वही 10-12 साल है।
2: काय काय की खेती कर रहे हो?
4: धान की, गन्ने की, गेहूं की। अच्छा। ये खेती करता हूँ।
2: रईस जाफर भाई, आपकी उम्र क्या होगी?
5: हमारी उम्र है 55 साल लगभग।
2: अच्छा, खेती कौन से कर रहे हो?
5: खेती तो हम कर रहे हैं करीब 20 साल से।
2: 20 साल से। कौन कौन सी फसलें करते हो?
5: फसल करते हैं, गन्ना है, धान है, गेहूं है, सरसों है, और साथ में पशु भी पाल रहे हैं।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, खेती भी कर रहे हो और पशु भी पाल रहे हैं। तो राम साहब भैया जा बताओ कि इस समय आपके खेत में कौन सी फसल है?
3: इस समय हमारे खेत में गन्ना है।
2: तो गन्ना की फसल में किसान भैया क्या क्या काम कर सकते हैं इस समय?
3: गन्ना के खेत में हमने अक्टूबर में गन्ना बोया था, ऊपर से उसमें लाई बो दी थी। अब लाई काट के गन्ना की खुदाई कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं।
2: अब जैसे लोग कहते हैं कि सह फसली खेती करो तो ये फसल हल्की हो जाता है, आपको क्या विचार है?
3: अजय, तो हमें भी महसूस हो रही है कि हाँ हल्की है।
2: तो इस समय आप क्या काम चल रहा हो गन्ना में?
3: गन्ना में पानी लग रहा है, खुदाई हो रही है, यही काम है गन्ना।
2: यही काम है,
3: दवाई भी लग रही है।
2: और कोई फसल इस समय खेतन में ना है?
3: नहीं, पौध डाल दी है धान की।
2: तो धान की पौध कैसे डाली?
3: धान की पौध पहले धान में बोया के दाब दिए, उसके बाद जब जबई हो गई उसमें तभी बो दी खेत में कंधार बना के।
2: तो खेत कैसे तैयार करो?
3: खेत ट्रैक्टर से जुतवा दिया, सूखे हुए, उसके बाद पानी वो भर के और उसमें पटेला मार के बो दी।
2: तो कितने दिन में रोपाई करोगे इनकी?
3: रोपाई 25 से लेकर 30 दिन तक।
2: तो इस तरह से अब धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं?
3: तैयारी।
2: अब जहूर भाई आप बताओ, आपके खेतों में इस समय कौन कौन सी फसल है?
4: इस समय अब धान के चौड़ने की तैयारी चल रही है।
2: तो धान की चौराई से पहले बाकी पौध डालने पड़ती है?
4: जी हाँ, डाल दी।
2: तो अब जी बताओ कि बीज कहाँ से लाए?
4: बीज बरखन दुकान से लिया था।
2: तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन से धान लगाते हैं?
4: पीआर है और मंसूरी है, बहुत सी अन्य ऐसी वैरायटी है।
2: अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सा धान होता है आपकी तरफ?
4: ये मोटा धान ज्यादा होता है।
2: मोटा धान से क्या फायदा है? मोटा धान में
4: पैदावार ज्यादा है,
2: उत्पादन ज्यादा मिल जाता है,
4: लागत कम है।
2: तो जैसे धान की बुवाई आपने पौध डाल दी है, तो पौध की देखभाल में क्या क्या काम किसान

0: भाई को करने पड़ते हैं।
1: पौध की देखभाल के लिए रखाना पड़ती है, चिड़िया उड़िया वगैरह ना आए, और उसे अब बिजार उजार वगैरह है, साढ़ है, इनकी देखभाली।
0: धान की रोपाई के लिए खेत कैसे तैयार करोगे?
1: खेत जोते हुए हैं, ट्रैक्टर से जुतवा दिए हैं खेत,
0: तो फिर
1: अब
0: भी तो
1: वो
0: अच्छा कधार
1: पानी
0: करना
1: भर,
0: पड़ता है।
1: हाँ पानी भर के फिर कंधार बना के तब चौड़ाई शुरू हो गई।
0: अच्छा, तो किस तरह से, मतलब काय से जुतवाते हो? रोटावेटर से जुतवा रहे हो, हैरो से जुतवा रहे हो, कल्टीवेटर से जुतवाओगे?
1: हैरों से जुते हुए हैं, अब उसे रूटर से कंधर बनेगा, कंधर रूटर से ही बनता है।
0: तो क्या फायदा होता है रूटर से कधार बनने से?
1: उसमें मिट्टी जो है सब मिक्स हो जाती है
0: अच्छा, खेतों को समतल कराते हैं,
1: जी।
0: बासे का फायदा होता है किसान को? खेत इकसार कराते हैं, बासे का फायदा होता है?
1: उससे ऐसा है टाइम बच जाता, पानी एक सार लगता पूरे उसमें खेत में
0: और अगर समतल ना होए तो फिर पानी की दिक्कत आवे।
1: दिक्कत आती है।
0: अब बात करें रईस भैया से, तो आपके खेत में इस समय कौन कौन सी फसल है?
2: हमारे खेत में साहब इस वक्त गन्ने ही का है खाली।
0: गन्ना।
2: हाँ
0: तो मतलब जा कही जाए कि गन्ना गेहूं धान की खेती ज्यादा होती है,
2: ज्यादा होती है
0: तो गन्ना पेड़ी है 9 लाख,
2: गन्ना, 9 लख भी है, पेड़ी भी है। पेड़ी
0: तो पेड़ी में इस समय का काम हीरो है?
2: में इस समय खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, स्प्रे भी करी है, सुड़ी जो लग जाती है उसमें पोए में उसकी स्प्रे करी गई है,
0: अच्छा
2: पानी लग रहा है, दवाई दुकान से ली बरखन।
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ
0: स्प्रे करने पड़ती है जाके, तो
2: स्प्रे है, हर पानी पे स्प्रे करना पड़ती है। देख
0: स्प्रे मतलब किस तरह से कर दो स्प्रे?
2: स्प्रे जो टंकी होती है उसकी पानी वाली, उसी में घोल कर दवाइयाँ मिक्स करके फिर एक आदमी से अपने स्प्रे करी जाती है ऊपर पानी भरने के बाद
0: तो जैसे स्प्रे करते हैं किसान भैया, तो
2: जी।
0: स्प्रे करते हैं क्योंकि वे दवाएं जो होती हैं वे जहर होती
2: जहर
0: हैं,
2: होती है उनसे,
0: तो
2: बड़ा
0: अपनी सावधानी कैसे
2: अपनी
0: करते हैं?
2: सावधानी है, उसमें दस्ताने पहनना, मुंह मुंह में मास्क लगाना,
0: अच्छा
2: इस तरीके से
0: बहुत।
2: पैंट पहन के,
0: क्योंकि गन्ना की तो पत्ती अब
2: पत्ती
0: बड़ी
2: लगती
0: हुई
2: बड़ी होगी, पैंट पैंट पहन के ही लगाना पड़ती है।
0: लगानी पड़ती है,
2: हाँ
0: अगर जाके उपचार ना करेंगे तो गन्ना खराब ही
2: गन्ना
0: जाएगा।
2: साहब खत्म, बिल्कुल खत्म कर देगा,
0: अच्छा,
2: सुड़ी तो कतई खा लेती है जड़।
0: तो इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है तो इस समय पानी कितने दिन में गन्ना में लगाने पड़ रहे
2: पानी
0: हो?
2: 8वें दिन 10वें दिन पानी लगाने पड़ता है इसको।
0: और जा तो बात भाई पेड़ी की, अब 9 लख की बताओ, 9 लख की कैसे कर रही है, कर रहे हो देखभाल?
2: 9 लख की भी ऐसी इसी हिसाब से 9 लख की देखभाल हो रही है। 9 लख की भी मैं पानी जो दोनों में साथ ही साथ लगता है बराबर ही बराबर, लेकिन पेड़ी में जो है एक या दो खेव खोद लगती है। अच्छा 9 लख में 2 से 3 4 तक खोद लग जाती
0: खोद
2: है।
0: लगती है। अच्छा
2: हाँ
0: रईस भैया, एक बात देखने में आई है कि
2: जी
0: आप, हमने देखी है कि ट्रैक्टर के पीछे एक यंत्र लगा था, बाहू से गन्ना की खुदाई
2: हाँ,
0: करवा
2: उससे
0: रहा है।
2: खुदाई होती है, लेकिन होती है साहब खुदाई, लेकिन बढ़िया जो है कसी की ही खुदाई रहती है बढ़िया,
0: कसी की खुदाई, क्योंकि बात से तो नुकसान भी हो सकता
2: उससे
0: है,
2: नुकसान भी हो जाता है, वो पेड़ के गहरी कर बराबर की जड़ें जो है वो काट देता।
0: काट देता है। अच्छा, अब आने वालों समय जो है वो मानसून को है,
2: अब मानसून
0: तो
2: का है,
0: मानसून में गन्ना की फसल की कैसे देखभाल करी जाएगी?
2: मानसून में इसी देखभाल करी जाएगी उसको कि खरपतवार उसका खत्म करा है, मानसून पानी बरस रहा है, पानी लगाना कम पड़ता है बस।
0: पानी कम लगाना पड़ेगा,
2: हाँ
0: और फिर जो घास उस हो जाएगी गन्ना में वो
2: वो अगर ज्यादा घास हो जाए तो स्प्रे कर दी, घास की
0: घास की
2: स्प्रे भी हो
0: स्प्रे,
2: जाती है,
0: क्योंकि जब गन्ना बड़ा हो जाता है
2: बड़ा हो
0: तो
2: जाए।
0: स्प्रे कर देते हैं।
2: हाँ
0: और वैसे कसी की खुदाई सबसे
2: सबसे
0: ज्यादा।
2: बेहतर जो है कसी की खुदाई ही है।
0: अच्छा, अगर बात करें तो खुदाई से क्या फायदा मिलता है फसलन को?
2: फसलन को यह फायदा मिलता है कि उसकी जड़ें जो है पौड़ने में उसमें जल्दी पौड़ जाती है, जगह जो कुक्कल होती है उनकी मुलायम होती है, वो खरपतवार जो खत्म जल्दी हो जाते हैं उससे कसी से, तो पौधे की जड़ पर रह जाती है खरपतवार, वो फिर उसे नुकसान देता है
0: नुकसान करता है।
2: जी।
0: तो अब बात यह है कि ये सब काम तो चल रहे हैं, मुख्य रूप से धान की फसल की तैयारी चल रही है।
2: तैयारी चल रही है मुख्य रूप से।
0: अब हम बात करते हैं कि खाद की, खाद तो हमें लगानी पड़ती है,
2: हाँ
0: तो
2: खाद
0: राम साहब भैया खाद लगा दो, कौन कौन सी खाद अपने खेतन में लगा दो?
3: सबसे पहले तो देसी खाद डालनी पड़ती है,
0: हाँ,
3: देसी खाद, और उसके बाद में लगा दी रुपाई कर दी धान की, फिर जरूरत पड़ती है हमें तो फिर बाद में यूरिया है थोड़ी बहुत, MP यूरिया मिला कर
0: हाँ,
3: लगा दी, दवाई लगानी पड़ती है, नराई करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया कि देसी खाद लगाते, देसी खाद से क्या फायदा होता है खेतन को?
3: देसी खाद ज्यादा दम देती है और ज्यादा से ज्यादा फायदा करती है।
0: तो जहूर भाई जैसे बता रहे हैं राम साहब भैया कि देसी खाद ज्यादा

0: रकम देती है, तो देसी खाद कैसे तैयार करी जाती है?
1: जो जानवर गोबर करते हैं उसको गड्ढे में डाल के उसको गलाते हैं, तो उससे खाद बनती है। हरा ढैंचा खेत में गलाते हैं, जोतते हैं, फिर पानी भरते हैं।
0: और जो गोबर घर का कूड़ा कचरा ये गड्ढे में जो करते रहते हो इकट्ठा, वो
1: जी
0: देसी खाद के रूप
1: देसी
0: में बदल
1: खाद
0: जाता है। एक साल में तो तैयार हो जाती,
1: 1 साल में तैयार हो जाती है।
0: रोपाई शुरू होने वाली है, तो अभी तो खेतों में हम डाल सकते हैं ना उसको,
1: हाँ,
0: तो
1: हम
0: कैसे
1: डाल रहे
0: डालते
1: हैं,
0: हो?
1: ट्राली से डलप से भर के ले जाते हैं, उसे फैला देते हैं, बीच बीच ढेर लगा के फैला के फिर जोत देते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं।
0: तो इस समय सही समय है कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो देसी खाद डालना चाहें तो इस समय डाल सकते
1: डाल
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: हाँ, तो रईस भाई आप बताइए कि देसी खाद से और क्या-क्या फायदा होता है?
1: देसी हिसाब से खाद से ये फायदा है कि इसमें फसल में बीमारी कम लगती है और उसकी पैदावार भी ज्यादा बढ़ती है। बीमारी बहुत कम लगती है उससे देसी खाद से।
0: और जो मिट्टी है, मिट्टी की ताकत
1: मिट्टी
0: बढ़ती,
1: की ताकत बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, उससे मुलायम होती है,
0: मुलायम होती है।
1: मुलायम होती है और
0: अब जैसे हम रासायनिक खादें लगा रहे हैं
1: वो
0: लगातार,
1: कम लगाना पड़ती है।
0: कम लगाना पड़ती हैं, और
1: हाँ,
0: रासायनिक खादों के लगाने से अब भूमि कम उपजाऊ
1: कम
0: होती जा
1: उपजाऊ
0: रही
1: होती
0: है,
1: जा रही है।
0: तो इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने खेतों में देसी खाद, हरी खाद का प्रयोग
1: प्रयोग
0: करें
1: करें,
0: और जैविक खेती का प्रयोग।
1: प्रयोग करें।
0: तो जैविक खेती अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो उससे जो खेतों की जो मिट्टी है वो ताकतवर बनी
1: ताकतवर होती
0: रहेगी
1: है,
0: और जो उत्पादन है वो भी शुद्ध
1: शुद्ध
0: मिलेगा।
1: मिलता है।
0: अब बात करें रईस जाफर भाई, आपने कहीं पशुपालन भी
1: हाँ,
0: करते हैं, तो कितने पशु हैं आपके पास?
1: हमारे पास 3 पशु हैं, एक गाय है, भैंस है,
0: गर्मियों
1: एक कटरा है। इसको
0: में कैसे देखभाल कर रहे हो अपने
1: गर्मियों में
0: पशुओं
1: उसके साथ अब तो जो मोटर लगी है, मोटर
0: की?
1: से ताला वाला अब तो है रहे नहीं है, अब तो उन्हें मोटर से ही दोनों टाइम तीनों टाइम नहलाना है, फर्श उनका साफ सुथरा रखनी है कि क्योंकि गंदगी से उसमें बीमारियां ना लगाएं। गंदगी से बीमारियां भी लगती हैं इन पशुओं को, बहुत बीमारी लगती है,
0: बिल्कुल लगती हैं।
1: तो वो फर्श को साफ रोज 2 फेरे या एक बार तो रोज धोना ही धोना है सर, इस तरीके से उन्हें रहते रखते हैं।
0: और इस समय जैसे चारा की बात करें तो क्या खिला रहे हो?
1: चारा इस वक्त भूसा है और चरी बो रखी है, चरी काट के ला खिला रहे हैं खाने के।
0: अच्छा,
1: हाँ, और चोकर,
0: चरी और भूसा और चोकर खिला
1: चोकर
0: रहे। इस समय जैसे कुछ भाई क्या करते हैं, खाली सूखा चारा दे
1: सूखा
0: देते
1: चारा
0: हैं, कुछ
1: दे
0: भाई हरा चारा दे
1: हरा
0: देते
1: देते हैं।
0: हैं, तो उनसे क्या कहना चाह रहे हो, कैसा चारा देना चाहिए पशुओं को?
1: उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चारा सूखा भी देना चाहिए और हरा भी जरूर देना चाहिए। चरी है बोले अपनी, थोड़ी थोड़ी चरी काट के चरी खिलाएं, उससे जंगल बाहर जल्दी होता है।
0: क्या क्या फायदा दिखता है
1: भाई,
0: आपको पशुपालन से?
1: पशुपालन से हमें दूध खाने को मिलता है, घी खाने को मिलता है, मक्खन मिलता है, सारे लाभ होते हैं।
0: तो आजकल ये देखा जा रहा है कि गांव में लोग कम पशु पाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
1: कम पशुपालन की जो वजह है कि आप काम कर रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं है।
0: तो देखो राम साहेब भैया, कितनी अच्छी बात आपने बताई, केवल एक पशुपालन को काम हम करें, और देखो खेती और पशुपालन तो एक दूसरे के पूरक हैं भाई, खेती के संग पशुपालन बहुत जरूरी
1: बहुत
0: भी है,
1: जरूरी है।
0: और कितने फायदा है, दूध दही मठा खा सकते हो, खेतन के लिए हरी खाद मिल जाएगी,
1: हरी
0: देसी
1: खाद
0: खाद मिल जाएगी। तो जैसे हमारे किसान भैया परेशान रहते हैं कि खेती में बचत ना हो रही है, अगर चाहें तो वे पशुपालन कर
1: सब
0: करके
1: कुछ कर सकते हैं।
0: सब कुछ कर सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर
1: जी हाँ,
0: खेती के साथ साथ पशुपालन नहीं करेंगे तो हमें समस्या होंगी, अब हमें खेतों के लिए देसी खाद कहाँ से मिलेगी? तो हम तो यही कहेंगे आज की गोष्ठी के माध्यम से, आप भी एक भैंस पालो जिससे ये है कि आपके बच्चों के लिए दूध दही मट्ठा की भी पूर्ति होती रहेगी, और वो भी। अब बताओ रईस भाई, की सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं सरकार
1: जी
0: की, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, इसका लाभ मिल रहा है आपको?
1: हाँ, मिल रहा था किसान का।
0: तो इसमें क्या फायदा मिलता है किसानों को?
1: साल में 3 किस्तें मिल जाती हैं साहब मुझे अपने थोड़े बहुत खर्चे के लिए, ना होने से तो वो बहुत है।
0: और जो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना है उसके माध्यम से किसान भाइयों को कम ब्याज पर लोन
1: कम
0: मिलता
1: मोल पर
0: है,
1: लोन मिलता है
0: तो इसका
1: तो
0: फायदा उठा रहे हो?
1: हाँ, इसका ही फायदा उठा रहे हैं।
0: तो इसमें कैसे फायदा उठा सकते हैं किसान इसका?
1: इसमें किसान ऐसे फायदा उठा सकता है, कम लोन पे उसे ले लिया, कम ब्याज पे अपने, उससे फिर और अपना काम कर लिया दूसरा, उसमें फायदा हुआ, जमा कर दिया साल बाद।
0: हाँ एक साल में
1: एक
0: उसमें।
1: साल में उसका पैसा जमा होता है कम ब्याज पे।
0: हाँ लेकिन बस ये है कि लोन को लेकर भूलो
1: भूलो
0: मत,
1: मत, ये मत समझो कि हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा, हमारे पास कोई तगादा नहीं कर रहा,
0: अब ये
1: इसलिए
0: देखो
1: भूल जाता है आदमी।
0: ये सरकार ने योजना लाई है तो इसमें इतना फायदा है, 3% ब्याज ही
1: तीन
0: देना
1: परसेंट
0: पड़ता है।
1: 3% ब्याज देना पड़ता है
0: बिल्कुल, और उसमें क्या है कि

0: आप एक साल के अंदर लौट करो, तीसरे
1: लौट
0: दिन फिर से
1: तीसरे
0: पैसे।
1: दिन फिर दोबारा ले लो
0: तो
1: उसी पैसे को,
0: बहुत से किसान भाई इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत आमदनी कर रहे
1: आमदनी
0: हैं,
1: कर रहा है सब,
0: दूसरे
1: मुनाफा हो
0: व्यापारों
1: रहा
0: में।
1: है बहुत,
0: हाँ, दूसरे व्यापारों में लगा रहे हैं।
1: व्यापारी करा हम करा ले, जो लेके उन्होंने खा लिया, मकान बनवा लिया, उसके
0: हाँ
1: लिए साहब नुकसान है।
0: ना, बिल्कुल। वो तो देखो, मेहनत करके आप
1: हाँ,
0: पैसा कमाओ और पैसा
1: उस
0: लगाओ।
1: पैसे से पैदा करो।
0: तो आज रेडियो के माध्यम से क्या बताना चाहते हो?
2: यही कि हरी खादों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।
0: बिल्कुल। तो राम साहब भैया, आपसे अब जानना चाहेंगे हम कि खेती बाड़ी कर रहे हो, पशुपालन भी कर रहे हो, और जे बताओ मुझे कि जैसे जो खाली समय है वो गांव में कैसे काट रहे हो?
2: मजदूरी दूरी कर लेते हैं,
0: मजदूरी कर लेते
2: मजदूरी
0: हैं,
2: कर लेते हैं खाली
0: तो
2: समय में।
0: उससे भी जे है कि घर की
2: घर की,
0: आमदनी
2: हाँ
0: बढ़ती है। जे जानना चाहते हैं, महिलाएं भी सहयोग करती हैं खेती में?
2: जी हाँ, करती हैं।
0: क्या क्या काम करती हैं महिलाएं खेती के?
2: हम इंजन लेके गए, हमसे अकेले इंजन नहीं जा रहा, साथ में जा रही हैं, इनने पानी भरवा दिया।
0: हाँ हाँ
2: हाँ, तो जी काफी सहारा।
0: हाँ
2: और क्या,
0: और
2: पशुपालन
0: पशुपालन में?
2: में भी, हाँ, हम चारा लाए वो खनवा देती हैं, हाँ, साथ में काम करवा देती हैं।
0: काम करवा देते। तो रईस भाई, किस तरह से हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं खेती में अपने पति का साथ दे सकती हैं, क्या क्या काम करवा सकती हैं?
1: वो काम यही करवा सकती हैं साहब, खाना टाइम पर पहुंचा देंगी, और अपने बैल डंगर हैं उनके लिए चारा जो घर में आदमी ला कर डाल दे उसे टाइम पर दे देंगी। यही है, इंजन उंजन पड़ गया थोड़ा बहुत सहारा लगाने के लिए, वो चले गए सहारा दे, आज यही कर सकती हैं।
0: बिल्कुल। बहुत से किसान भाई ये कहते हैं कि खेती से फायदा नहीं है, खेती में ज्यादा फायदा नहीं है, लाभ कम है, इस पे आपका क्या विचार है?
1: सब खेती में फायदा तो है, लेकिन अब निरी खेती पे ही बैठे रहो तब लाभ कुछ कम लग जाए। आप खेती के सहारे और का काम करो खाली टाइम के लिए, जैसे पशुपालन कर लो, उसमें एक
0: हाँ
1: दो अपने पशु पाल लो, उसका दूध है घी है वो हमारे खाने के खर्चे में आया, वो बचत है पैसे की सब। अब जब होगा ही नहीं घर में तो आप मोल भी लोगे, दूध दही भी मोल लोगे।
0: तो ये है कि किसान भाइयों को खेती के संग संग जैसे पशुपालन
1: पशुपालन
0: है,
1: जरूरी है,
0: मछली पालन
1: मछली
0: है,
1: पालन है,
0: मुर्गी
1: मुर्गी
0: पालन है,
1: पालन है,
0: अगर इस तरफ भी ध्यान देंगे
1: ध्यान
0: हमारे
1: देंगे कि
0: तो उनकी आमदनी
1: बढ़ जाए,
0: बढ़ेगी
1: बढ़ेगी,
0: और उनको रोजगार भी
1: रोजगार
0: मिलेगा,
1: भी मिलेगा
0: चार आदमियों को और रोजगार
1: और
0: भी दे पाए।
1: रोजगार मिलेगा।
0: जो हमारे किसान भाई थोड़े होशियार हैं,
1: हाँ,
0: पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो वो ऐसा कर रहे
1: कर रहे
0: हैं
1: हैं उसमें, यह चार आदमी और भी लग जाते हैं,
0: और लग जाते हैं। तो
1: उनका
0: आप
1: भी
0: कम से कम चार आदमियों को रोजगार भी दे रहे
1: रोजगार भी
0: हो
1: दे रहे हैं,
0: और आपकी आमदनी भी बढ़ रही है।
1: बढ़ रही है।
0: तो अब आज की कृषि गोष्ठी को यहीं संपन्न करते हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हैं कृषि गोष्ठी, खेती को लाभकारी कैसे बनाए। प्रतिभागी है रईस जाफर, जहूर अब्बास, राम साहब, और संचालन कर रहे हैं रविंद्र भैया। राकेश भैया, हम देख रहे हैं कि तुम मन मन मुस्कुरा रहे हो।
4: भैया इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो कि रेडियो के कभी पास में बैठे रहते हैं कि हमारे नाम आवंगे और हमने जो लोकगीत की फरमाइश भेजी है वो लोकगीत हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो हमारे जो भैया ने आज अपनी कमेंट हमारे पास में भेजी है, जरा उनके नाम कार्यक्रम में शामिल करो।
3: राकेश भैया देखो, हमारा प्रयास पूरा जय रहता है कि जो हमारे भैया बहन है उनकी पसंद के लोकगीत हम सुनवा पाए, पूरा प्रयास करते हैं। तो पहली जो फरमाइश हमारे पास आई है वो आई है ग्राम दूनीनगर जिला बदायूं से, ठाकुर मुन्ना सिंह कटहरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेनू, कुमकुम, निव्या, सरिता, अंतमा। जे भैया कहना है हमें सुनवा दो लोकगीत कुएं का ठंडा जल, पीपल की छांव, देवेंद्र देव की आवाज में।
4: और भैया इसी लोकगीत की फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम मलगांव विकास खंड आलमपुर जाफराबाद जिला बरेली से, आप हैं कमल सिंह, धर्म सिंह, अर्जुन सिंह, धनवीर सिंह, सुमन देवी, स्वाति, सीमा, कंचन और उमा।
3: कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदी जंगेल। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरसी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल।
4: तो आप सबकी फरमाइश के आधार पर हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारो सो लोकगीत।

0: और वे देखो आपने लोगी सुनो। अब इसके बाद सुनते हैं एक भेंट वार्ता, निसार अहमद और भैया सुरेंद्र पाल की बातचीत।
1: संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं, हमारे साथ एक किसान भैया हैं। आप जान लेते हैं उनको परिचय, उनकी जवानी और उनसे जानते हैं कि किस तरीका से वे खेती बाड़ी करता है। भैया नाम कहा है आपको?
2: निसार अहमद।
1: घर के जिस गांव में खड़े हैं, जय गांव को क्या नाम है?
2: लखीमपुर।
1: किस ब्लॉक को गाँव है?
2: सेड़गढ़।
1: तहसील कौन सी है?
2: मीरगंज।
1: जिला बरेली को गाँव है?
2: जिला बरेली।
1: बात करें आपकी उम्र की तो आपकी उम्र कितनी हुई?
2: हमारी उम्र हैगी 50 साल।
1: 50 साल की उम्र। पढ़ाई लिखाई करी है आपने?
2: ना करी है।
1: अच्छा हम देख रहे हैं आप गन्ना खोद रहे हो, तो जो गन्ना आपने कब लगाओ?
2: फागुन में लगाओ हमने तो। ये
1: तो जब खोदन से जाओ कब फायदा होता है?
2: ज्यादा मान लो जो घास है जो खत्म होता है ये, और ये कल्ला भी देते।
1: कल्ला भी देते।
2: हाँ।
1: आप खुदाई कर रहे हो और फागुन में बता रहे हो आपने गन्ना लगाओ, लगभग फागुन की बात करें 3-4 महीना ही गए गन्ना लगे।
2: 3-4 महीना है गए।
1: और गन्नों काफी अच्छा लग रहा हूँ। तो जामा कैसे करे गन्ना बोओ आपने? जो
2: हमने रेजा से बोओ जी।
1: रेजा से
2: बोओ ट्रैक्टर से।
1: ट्रैक्टर से। तो बाम पेड़ा डाले हम काट के
2: डाले हमने।
1: अच्छा तो तीन बार पानी लगा।
2: पानी हमने जामे 4 पानी लगाए थे।
1: 4 पानी लगाए थे। खोद के लगाए थे
2: हमने जामे 4 खोदे लग गई।
1: 4 खोद यानी कि जितने पानी लगता है उतनी खोद। अच्छा हर पानी में खोद लगाऊं जरूर?
2: हाँ, बिल्कुल जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी।
2: हाँ, अगर खोद ना लगाऊंगे तो ये कल्ला ना दे फिर।
1: अच्छा खोद से कल्ला बढ़ जाते हैं। खोद ना लगाऊंगे तो सिंगल कल्ला रहा है।
2: सिंगल रहा है।
1: तो अभी यहाँ में कौन कौन से काम गन्ना में होता है?
2: जाम हमारे जाम मान लो हम खाद तो लाग ही रही है और लगाएंगे अभी, और बाकी बाद में हम फिर जाके नराई भी करने।
1: नराई
2: हमें करने, फिर इसकी बंदाई करने।
1: अच्छा नराई कौन से महीना में हुई?
2: जे हम करेंगे सावन में जाके।
1: सावन
2: सावन में जाके करेंगे हम इसकी।
1: अच्छा जिस समय जाम कसीना लिख रहे हैं।
2: हाँ,
1: तो नराई के बाद तो खुदाई को मतलब ना
2: हुई? फिर ना खुदाई ना हुई।
1: फिर खुदाई
2: ना फिर हम इसकी बनाई करेंगे।
1: 50 साल की उम्र है आपको, काफी खेती बाड़ी को अनुभव है। हम जो देख रहे हैं आपके यहाँ गन्ना की फसल ज्यादा होती है?
2: गन्ना है हमारी यहाँ।
1: गन्ना ज्यादा होता है
2: हमारी यहाँ।
1: कौन सी फैक्ट्री में जाता है गन्ना?
2: हमारे मीरगंज जाता है।
1: मीरगंज जाता है। भाव अच्छा मिल जाता है?
2: हाँ, बढ़िया मिलता है।
1: कोई गन्ना तोला में कोई दिक्कत तो ना होती है?
2: कोई दिक्कत ना है।
1: सेंटर अपने गाँव में?
2: गाँव में है हमारे।
1: तो पर्ची आती हुई?
2: हाँ, पर्ची आती है।
1: और कौन कौन सी फसल है आपके यहाँ?
2: हम धान भी लगाते हैं।
1: तो धान भी लगा? हाँ, धान भी पौध डाल दी हुई?
2: हाँ, पौध डाल दी, तैयार है हमारी।
1: अच्छा देसी खाद लगा तो ना लगा?
2: हाँ, देसी खाद डालते हैं।
1: देसी खाद डालते
2: हैं।
1: जानवर पालते हो?
2: जानवर पालते हैं।
1: कई जानवर?

0: हमारे यहाँ ने दो भैंस हैं और दो गाय हैं इस वक्त।
1: तो जानवरों की देख रेख कैसे करते हैं?
0: देख रेख मान लो उनकी तो जैसे अब हमने चरी बो दी है, हाँ तो वो चरी अब खा रहे होंगे, भूसा भी खाते हैं और दाना भी खाते हैं।
1: तो देसी खाद तो घर की ही जाती
0: है? हाँ देसी, हाँ घर की ही जाते हैं।
1: देसी खाद डालने से खेत में कुछ फायदा होता है?
0: बहुत लंबू फायदा है।
1: का फायदा होता है?
0: फायदा का मान लो जमीन भी बढ़िया हो जाएगी, फुल्ली जमीन हो जाएगी। खाद अगर वो घूरों नहीं डालेंगे हम तो जमीन सही नहीं रहेगी वो, और घूरे से फुल्ली हो जाते जमीन।
1: रासायनिक खाद से जमीन कमजोर ही जाती है?
0: और हाँ कमजोर हो जाएगी, बस
1: कमजोर ही जाती है रासायनिक।
0: अगर हम जो अपनी बारी खाद लगाएंगे मान लो यूरिया लगाएंगे तो बस कमजोर तो होगी,
1: बस कमजोर।
0: हम देसी खाद जरूर डालते हैं,
1: देसी खाद जरूर डालते
0: हैं जरूर।
1: अच्छा धान की फसल जो आप लगाओगे बहुत देसी खाद डालो?
0: बिल्कुल हमने डाल दी हमने।
1: अच्छा डाल दी,
0: डाल दिया
1: तो खेत तैयार कर दो?
0: बिल्कुल तैयार है हमारो।
1: क्या कहते हैं कि खेती और पशुपालन दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। खेती कर रहे हैं तो पशुपालन भी बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल हमारे किसान भैया बहन ने पशुपालन कम कर दो, क्या कारण है?
0: कारण का मान लो बहुत से घर में मान लो कन्ने की परेशानी। हम तो पालते हैं। हाँ हम पालते हैं।
1: अच्छा आप जो
0: हम न पालेंगे तो हम दूध मठा कहाँ से खाएंगे?
1: अच्छा बात करी दूध मठा की, आप गाँव में रह गए और दूध मठा ना हो तो अजीब
0: बात, कोई चीज ना मिलेगी
1: है
0: भाई। दूध मठा आया हमारे यहीं तो
1: दूध मठा बहुत जरूरी है। अच्छा दूध बेच तो हो?
0: हाँ बेच लेते हैं,
1: बेच लेते हैं। गांव में बिक जाता है?
0: हाँ गांव में जो दूधिया है वो ले जाते।
1: अच्छा दूधिया ले जाते,
0: ले जाते।
1: का भाव चलो जाता है
0: इस वक्त? तो मान लो 50 रूपया हो जा रहा हमारे यहाँ से तो।
1: अच्छा 50 रूपए लीटर एक टाइम को बेचत हो गए? हाँ, और एक समय को जो है वो खानते।
0: सुबह को हमने मान लो बेच लो और शाम को अपने घर रोक लो।
1: बहुत अच्छी बात है निसार अहमद जी कि आप खेती भी करते हो, पशुपालन भी करते हो और खेत में अपने देसी खाद ज्यादा लगाते।
0: हाँ, ज्यादा लगाते हैं।
1: बात करें गन्ना में सामयिकारी इसमें खुदाई कर रहे हो आप? जाके बाद एक आध खुदाई और लगाई?
0: जाके बाद मान लो हमारी अब जो साल में एक और लग जाएगी सर, बाकी बाद में हम न लगाएंगे।
1: अच्छा बाकी बाद में खुदाई लगाई?
0: मान लो बारिश शुरू हो जाए।
1: अच्छा बारिश शुरू हो जाए तो खुदाई वैसी ना हुई?
0: फिर ना हुई।
1: जब पानी लगाते हो तो ईंट आई थी आपने? हाँ,
0: खुदाई करते हैं।
1: कर दे। हाँ। देसी खाद से अपनी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो अच्छी हो जाती है।
0: बिल्कुल बढ़िया।
1: और रासायनिक खाद से कमजोर ही
0: कमजोर हो जाते, जहाँ से मान लो ताकत हैगी,
1: जहाँ से ताकत बनती
0: और ताकत बन थेगी।
1: जानवर घर के हैं।
0: हाँ,
1: देसी खाद हो जाती है। और बात करें अब जैसे धान की फसल लगाओगे तो जाके तैयारी कैसे कैसे करोगे खेत की?
0: तैयारी कहा मान लो जुताई फुताई उसी कर दी, मेड़ डाल दी हमने।
1: अच्छा मेड़ उड़े
0: डाल दी, फिट कर दी
1: मेड़ा डाल के जुताई करके। हाँ, देसी खाद डाल के फिट कर दी। पौध कब डाली है आपने?
0: पौध को मान लो हमारी आज 26 दिन की होगी।
1: 26 दिन?
0: हाँ अभी हम मान लो 2-4 दिन और लग जाएंगे।
1: अच्छा लगान को काम शुरू रात होने वाली है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जब धान आप लगाओगे तो कैसे करके धान लगाए जाएंगे, क्या क्या काम करने पड़ते हैं?
0: बाकी बाद में मान लो हमें DAP डालने और मान लो और दवाइयाँ डालने और अपने हाथ से लगाने हमें तो।
1: अच्छा
0: हाँ चौल लगाते हैं हम तो।
1: कन्हर कैसे करता हूँ?
0: ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर?
1: अच्छा अब गांव में जो पहले बर्दन से होते या हैरों से या भैंसन से कन्हर होते बेना ही रहे?
0: ना ना बेना होंगे अब तो ट्रैक्टर है। अच्छा ट्रैक्टर ले लो।
1: अच्छा ट्रैक्टर से कन्हर होता
0: है? वैसे ही जाते
1: हैं। अब पानी लगाओ इंजन से और कन्हर कर
0: कन्हर बना लो हमने।
1: अक्सर जो धान की पौध लगाई जाती है बा कैसे कर लगाई जाए तो बा में का बात को ध्यान रखो जाए कि हमारे जो पौधा की जड़ टेढ़ी ना हुआ है, या जो हमारे भैया बहन खेती बाड़ी करते हैं कौन कौन सी बात?
0: तो लो हम लगाए रहेंगे तो हमें तो मालूम है जड़ अगर तुमने टेढ़ी लगाई दी तो वो टूट भी सकते हैं, इसलिए हम अपने हाथ से लगा रहे हैं तो टूटे ही क्यों वो।
1: अच्छा अपने हाथ से ध्यान रख दो।
0: बिल्कुल।
1: कौन सी प्रजाति को धान लगा रहे हो आप?
0: ज्यादातर मान लो इस वक्त तो 26 है।
1: अच्छा 26 ज्यादा लगता है?
0: 26 ज्यादा है।
1: मोटे में आते महीन में आते?
0: मोटे में आए जी, जहाँ से मान लो हम कम्पाइन से ये कट जाते हैं।
1: अच्छा 26 धान है कम्पाइन से?
0: कम्पाइन से कट जाते हैं।
1: तो अब कटाई को सब काम ज्यादातर मशीनों द्वारा?
0: मशीन से है।
1: अब हाथ को काम कम रहे हो?
0: कम है।
1: गन्ना में ज्यादातर हाथ को ही काम है, खुदाई है छिलाई है वो सब हाथ को ही काम है?
0: सब हाथ को ही काम है।
1: गन्ना की फसल में ज्यादातर काम मेहनत को होता है। गन्ना की बात करें पैदावार की तो कितनी पैदावार लव गन्ना की लेकर जाती है?
0: पैदावार मान लो 50-60 क्विंटल को तो लिख रही आते हैं।
1: 50-60 क्विंटल
0: तो लिख रही आते
1: गन्ना की 50-60 क्विंटल बीजा की यहाँ पैदावार बता रहे हो और पूरे हम देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में आपके गन्ना ज्यादा
0: गन्ना है
1: तो धान की फसल तो खानला होती
0: है? हाँ, मान लो जो बढ़ती है वो तो बेच लेते हैं।
1: अच्छा बढ़ती है
0: तो
1: ज्यादातर लोग खान
0: खान के मतलब को है बस।
1: वैसे।

0: यहाँ मुख्य फसल है वो गन्ना
1: की। गन्ना है तो।
0: गन्ना लगभग बिल्कुल तैयारी की स्थिति में खड़ा हुआ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब जहाँ जो सामयिक कार्य है बस खुदाई को और खाद पानी को,
1: बस यही है।
0: जब तक बरसात ना हो रही, बरसात होने के बाद गन्ना के काम लगभग बंद हो गया।
1: बंद हो गए।
0: बरसात के बाद क्या काम होगा यहाँ?
1: बरसात के बाद तो मान लो चलाई है फिर,
0: बस कोई काम ना,
1: फिर कोई काम ना।
0: मतलब गन्ना के जो काम है वो बरसात तक है, बरसात के बाद गन्ना के काम बंद है।
1: बंद है।
0: आप जानवर भी पालते हो, खेती बाड़ी भी अच्छी कर रहे हो, काफी अनुभव है खेती बाड़ी को आपको। आज आपकी और हमारी बातचीत, बहुत सारे भैया बहन रेडियो पर सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनसे?
1: हाँ, जैसे मान लो हमारी तरह करें सब जने खेती बाड़ी, जैसे हम कर रहे होंगे, डंगर पाल रहे होंगे, मान लो भैंसी पाल रहे होंगे, गैया पाल रहे हैं, मान लो यही काम बढ़िया होंगे।
0: यानी कि जैसे आप खेती बाड़ी कर रहे हो, ऐसी जो हमारे भैया बहन है बेहू खेती बाड़ी कर रहे हैं।
1: हाँ, करें
0: और पशुपालन जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि बिना पशुपालन के गांव में सही ना है।
1: ना ना ना, सही ना है।
0: बहुत जरूरी है पशुपालन।
1: मान लो जहाँ से खाद वो सब कुछ हो जाता है और ना पालेंगे तो कहाँ से खाद बनाएगी।
0: आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहनों, देखो जहाँ भेंट वार्ता के बाद अब सुन लेते लोकगीत, कुछ भैया बहन ने फरमाश हमारे पास भेजी, तो ये फरमाश आई है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निशार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। और अगली फरमाश है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र, पीएस नहापकर, निर्मला नहापकर, विशाल नहापकर, मलकापुर महाराष्ट्र, सोपान ताइडे, नारायण इंगले और आशीष मोहित।
2: और आप हैं ग्राम अहिरवाणा, तहसील बिसलपुर, जिला पीलीभीत से शंभूचरण, प्रियंका, नित्या, पवित्रा और परावहाउद्दीनपुर, जिला बरेली से सुनील श्रीवास्तव, सत्यपाल श्रीवास्तव, धर्मपाल, आकाश, मुनेंदर, मोनू, सुरेंदर और अमन।
0: कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य। जब भैया कह रहे हैं लोकगीत सुनवा दो, सत संगत और बिमल मती से समूह स्वर्ण।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत सुरेंद्र पाल और राकेश कुमार शर्मा के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। लाला राम पुत्र पूरन लाल नगरीय कला थाना शेरगढ़ बरेली सूचित करते हैं। इनकी पुत्री पूनम, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, कद 5 फुट, रंग सांवला, शरीर पतला, आंख सामान और जो गुलाबी सूट और सलवार पहने हुए हैं। 1/6/2026 9 बजे सुबह नगरीय कला से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो अरुण कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी बहेड़ी जनपद बरेली को सूचित करें या फिर इनके मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8954302034। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8954302034। खोए व्यक्ति संबंधित सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति संबंधित एक और सूचना सुनिए। साहिल पुत्र मुनेम निवासी सलारगंज पानी की टंकी थाना दरगाह जिला बहराइच सूचित करते हैं, एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल महबूद है, जिनकी उम्र 70 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग सावला, शरीर सामान, चेहरा गोल, बाल भी सामान हैं, जो आसमानी कमीज और सफ़ेद पायजामा और लाल अंगोछा पहने हुए हैं। 24/5/2026 5 बजे काजी टोला थाना बारादरी बरेली से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी बरेली को सूचित कर सकता है। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं, समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान

0: दो कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
1: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, उसके क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत दो टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है, एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
2: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
3: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात यह आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
4: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान की है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेरठ को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेरठ के अंदर आएगा उसका पैसा मेरठ का प्राधिकरण और जितना हिस्सा

0: मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
1: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेशी मतलब 4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है दौरे पड़ने की बीमारी और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकील अहमद।
4: रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
5: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
6: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
4: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
6: महिलाओं के और जसाने की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
4: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
6: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
4: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
7: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है दौरे पड़ने की बीमारी, उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर शकील अहमद जी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
8: शुक्रिया।
7: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये दौरे क्या हैं।
8: दौरे का मतलब नॉर्मली आप आम भाषा में बोलेंगे झटके आना। लोग कहते हैं ना, झटके आ गए, आंखें चढ़ गई, बेहोश हो गया इंसान
7: जी।
8: हाँ, तो इसको इसी तरीके से दिमाग में कभी कभी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, उसके वजह से पेशेंट का बेहोश हो जाना, उसको दौड़े पड़ने की समस्या कहते हैं।
7: तो इसका ये जो आप बता रहे इस तरह झटके होते हैं, इनका कारण क्या रहता है बेसिकली?
8: इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा, ठीक है, तब भी होगा। दिमाग में बुखार हो जाए तब भी होगा, जैसे कहते हैं ना दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस हो जाए तब भी दौड़े पड़ते हैं। बच्चों में अक्सर दौड़े नॉर्मल बुखार होने पे भी पड़ सकते हैं, फिब्राइल सीजर कहते हैं उन्हें, या फिर किसी के दिमाग में कोई गांठ हो, ट्यूमर हो, उसके वजह से भी दौड़े पड़ सकते हैं। दिमाग

0: के अंदर नस ब्लॉक हो जाए तब भी दौड़े पड़ सकते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि कोई ना गांठ है, ना इन्फेक्शन है, ना बुखार आता है पेशेंट को, फिर भी दौड़े पड़ सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं दिमाग के अंदर कुछ मरीजों में। जैसे कहते हैं ना, वायरिंग अच्छी नहीं है, कवर अच्छी नहीं है, उसके वजह से दौड़े पड़ सकते हैं। ये
1: अच्छा,
0: कारण
1: तो ये किस उम्र से शुरू होते हैं? किसी भी उम्र में ये हो
0: किसी
1: सकता
0: भी
1: है?
0: उम्र में पड़ सकते हैं। इन्फेंटाइल मतलब 1 साल से कम के बच्चों को भी पड़ सकते हैं जिनने जन्मजात लिया। कभी कभी के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची लोगों बच्चों के और दिमाग कमजोर है तब भी दौड़े पड़ेंगे। फिर 1 साल के बाद 5 साल तक फिब्राइल सीजर पड़ सकते हैं, बुखार आता है और उसके बाद बच्चा बेहोश हो जाता है, दौड़े पड़ सकते हैं। उसके बाद दौड़े पड़ सकते हैं जुबिनाइल कंडीशन, मतलब 13 साल तक।

0: से शुरू होते हैं, किसी भी उम्र में ये हो
1: किसी
0: सकता
1: भी
0: है।
1: उम्र में पढ़ सकते हैं। इन्फेंटाइल मतलब 1 साल से कम के बच्चों को भी पढ़ सकते हैं, जिनने जन्मजात लिया। कभी कभी के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची लोग बच्चों के, और दिमाग कमज़ोर है तब भी दौड़े पड़ेंगे। फिर 1 साल के बाद 5 साल तक फिब्राइल सीजर पढ़ सकते हैं, बुखार आता है और उसके बाद बच्चा बेहोश हो जाता है, दौड़े पढ़ सकते हैं। उसके बाद दौड़े पढ़ सकते हैं जुबिनाइल कंडीशन, मतलब 13 साल तक 12 साल तक दौड़े पढ़ते हैं, जुबिनाइल एपिलेप्सी कहते हैं। फिर एडल्टहुड होती है, मतलब आप 21 साल तक वयस्क हैं तब तो दौड़े पढ़ सकते हैं। या फिर किसी के दिमाग में ट्यूमर है, वो कभी भी हो सकता है, या कोई गांठ है, या इन्फेक्शन हो गया दिमाग के अंदर, या
0: जी जी
1: दिमागी
0: जी
1: बुखार
0: जी
1: बन
0: हाँ
1: गया, तब भी दौड़े पढ़ सकते हैं। और ओल्ड एज में भी होते हैं, जैसे नस ब्लॉक हो जाए तब दौड़े पढ़ सकते हैं, या दिमाग के अंदर ट्यूमर हो तब दौड़े पढ़ते हैं।
0: हाँ तो मतलब
1: तो
0: किसी
1: कोई
0: भी
1: भी
0: उम्र में।
1: हाँ किस कोई भी उम्र वो नहीं है इसके लिए।
0: तो क्या आजकल हमारे पास जो भी मेडिकल साइंस में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत इसका इलाज संभव है स्थायी रूप से?
1: हाँ स्थायी रूप से संभव है, हमें सिर्फ एक रीज़न ढूंढना होता है कि क्या रीज़न है, क्या वजह है जिसके वजह से दौड़े पड़ते हैं। जैसे अगर बच्चों को दौड़े पड़ रहे हैं और बुखार आने पर पड़ते हैं, तो कारण क्या हुआ, बुखार,
0: अच्छा,
1: तो अब बुखार को रोके रहिए, दौड़ा नहीं पड़ेगा,
0: दौरे नहीं पड़ेंगे बिल्कुल।
1: सिंपल। हाँ तो कुछ दवाई देते हैं, और बुखार अगर 1 डिग्री से ज़्यादा आता है, मान लीजिए हाई डिग्रेड फीवर आते हैं बच्चों को, तो हमेशा या देख घर वालों को बता कर रखते हैं कि बुखार अगर आए तो आप नियर बाई डॉक्टर को देके लेके जाइए, बार बार बुखार क्यों आ रहा है, और बुखार ज़्यादा तेज आएगा तो दौड़े पड़ने की ज़्यादा संभावना है, तो आपको उससे दवाई चलती है, और बुखार ना आए इसके लिए दवाई चलती है, तो दौड़े अक्सर नहीं पड़ते बुखार वाले मरीज को। अब
0: अच्छा,
1: बाकी अगर किसी के दिमाग में कोई चोट है, चोट लग गई उसके बाद दौड़े पड़ जाते हैं, नस ब्लॉक हो गई उसके बाद दौड़े पड़ सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन है दिमाग में, मेनिनजाइटिस जिसे कहते हैं, तो आपने उसको ट्रीट कर दिया, दवाइयाँ दी, उसके बाद दौड़े रुक जाते हैं और दौड़े की दवाई चलती है कुछ समय तक।
0: हम लोग जैसे देखते हैं अपने अनुभवों में भी कि कई लोग हैं जिन्हें काफी सालों से दौरे पड़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि सर इलाज भी चल रहा है इसके बावजूद भी उन्हें समय समय पर वो दौरे, क्या
1: हाँ
0: कारण की सही खोज ना हो पाना या कोई और कारण भी
1: एक
0: है?
1: मिथ्स हैं थोड़े से सोसाइटी में
0: जी
1: कि दौड़ा पड़ रहा है पेशेंट को, तो वो या तो डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे, मतलब उसका पता नहीं कर पा रहे बीमारी क्या है, या फिर वो जैसे कहते हैं मिथ है कि दौड़ा पड़ गया कि फूक झाड़ करा, झाड़ फूक करा लिया,
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा
1: ठीक है, तो
0: अंधविश्वास
1: पूरा
0: ही है।
1: प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हुआ। या फिर एक कभी कभी कहते हैं कि दौड़ा पड़ा था डॉक्टर साहब, दवाई खिलाते रहे, दौड़ा नहीं पड़ा, अब दवाई रोक दी हमने, ये भी एक कारण है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दौड़ा इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप दवाई खा रहे हो, आप
0: बिल्कुल
1: दवाई छोड़ोगे तो दौड़ा पड़ जाएगा। तो उसका एक समय सीधा निर्धारित करिए साइंस ने, जैसे देखा बहुत सारे मरीजों में कि हाँ इस टाइम तक अगर हम दौड़े की दवाई खिलाते हैं तो दौड़ा अगर रुका फिर भी दौड़ा नहीं पड़ा, तो हम उसे कहते हैं कि दौड़ा फ्री हो गया, एपिलिप्सी फ्री कहते हैं, मिर्गी, एपिलिप्सी को मिर्गी कहते हैं। तो एक समय कि 5 साल तक कोई दवाई खा रहा है, दौड़ा नहीं पड़ा, उसके 5 साल और दवाई नहीं खाई उसने तब भी दौड़ा नहीं पड़ा, तब उसे हम कहेंगे एपिलिप्सी फ्री। इसका मतलब है पेशेंट को 10 साल तक दौड़ा नहीं पड़ना चाहिए दवाई खाने के साथ और बाद भी,
0: अच्छा,
1: तब
0: माना
1: मान
0: जाए
1: जाएगा
0: कि
1: कि
0: ना
1: वो
0: किडनी डाउन हो
1: एपिलिप्सी
0: गया
1: फ्री
0: है,
1: है,
0: एपिलेप्सी फ्री है। अच्छा,
1: मिर्गी, अब दौड़ा नहीं पड़ेगा। होने को किसी कुछ भी हो सकता है, कल चोट लग जाए तो दौड़ा पड़ सकता है, लेकिन उसको एपिलिप्सी फ्री मानने के लिए किसी की दवाई 3 साल तक चली, अब हल्के हल्के आपने बंद कर दी और अब उतने दौड़ा नहीं पड़ा, और 10 साल तक फिर दौड़ा नहीं पड़ा पूरा टोटल कोर्स में, तो दौड़ा अब नहीं पड़ेगा नॉर्मली।
0: तो इसके लिए कुछ विशेष टेस्ट वगैरह होते हैं कि अगर
1: नॉर्मली हम टेस्ट में ये कराते हैं कि सीटी स्कैन करा लेते हैं, या फिर एमआरआई ब्रेन की कराते हैं, या फिर इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं दौड़े वाली एमआरआई कहते हैं, एपिलिप्सी प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें हम कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत माइनर चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे हमें देखना है कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, दिमाग का एक हिस्सा होते हैं बहुत सारे अलग अलग, एक होता है हिप्पोकैम्पस कहते हैं उसे, तो अगर उसमें कुछ सूजन आ जाए या फिर वो ख़राब जैसा हो जाए, आम भाषा में ही कहेंगे लेकिन वो स्क्लेरोसिस कहते हैं हम नॉर्मली, हार्ड हो
0: जी
1: जाती
0: जी
1: है वो चीज़,
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो उसके वजह से भी पेशेंट को दौड़ा पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है घर के अंदर, ठीक है,
0: बिल्कुल
1: और उस पर एक कवर चढ़ा होता है, तार कवर, प्लास्टिक का कवर चढ़ा, तार अंदर होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी अंदर से जा रही है और आप ऊपर से छुओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा नॉर्मली,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अगर वो प्लास्टिक टूटी हुई है तो आप छुओगे तो आपको करंट लगेगा क्योंकि वो बाहर की तरफ आ गई। ऐसी हमारी पूरी इंसुलेशन है हमारे ब्रेन के अंदर, कवरिंग है बहुत सारी,

0: ऐसी वायरिंग कवर आए वो जहां से भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज निकल जाएगा तो वो पूरी उसमें फैल जाएगा, दौड़ा पड़ेगा, बेहोश हो जाएगा। ये नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कहीं कहीं कमियां हैं, वो इन्फेक्शन के बेस हो जाती हैं, ट्यूमर के बेस हो जाती हैं, नस ब्लॉक होगी तब हो जाएगी, फीवर बहुत तेज आएगा तब हो
1: तब हो
0: जाएगी,
1: जाएगी बिल्कुल।
0: इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा बॉडी में तब हो जाएगी, ये चीज़ें हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और रहती है, चूँकि ये ऐसी समस्या है कि हमारे आसपास में देखने को मिल जाती है, और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस विशेषज्ञ के पास हमें जाना चाहिए, फिजिशियन के पास जाना चाहिए, न्यूरो के पास जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में डिसीजन लेने में।
0: मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए जो भी फिजिशियंस हैं दे आर ट्रीटिंग, ऐसा नहीं है नहीं ट्रीट कर
1: जी
0: रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग, दे आर गुड, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस, रीजन क्या है, रीजन का पता होना जरूरी है। जैसे अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है और इपिलिप्सी हो रही है, दौड़ा पड़ रहा है, तो आप दौड़े की कितनी भी दवाई चलाइए
1: ठीक नहीं होगा,
0: नहीं होगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ट्यूमर निकालना है, ठीक है।
1: हाँ
0: और नॉर्मली किसी को फीवर आ रहा है और ये पीडियाट्रिशियन है, बच्चों का डॉक्टर है, वो ट्रीट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट ठीक हो गया, फीवर कम हुआ, दौड़े की दवाई दी, ठीक हो गया, कोई भी ट्रीट कर देता है, फिजिशियन बच्चों को पीडियाट्रिशियन करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, ब्रेन के नॉर्मल फिजिशियंस होते हैं वो करते हैं, न्यूरो सर्जन्स भी करते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि मतलब इसमें वो है कि ड्रॉबैक है कि या फिर कोई गाइडलाइन है कि नहीं यही बंदा कोई करेगा, तो डॉक्टर जनरल फिजिशियन भी ट्रीट कर सकते हैं
1: जनरली
0: क्योंकि जो अवेलेबल है,
1: केस के अकॉर्डिंग
0: हाँ
1: ही,
0: केस के
1: केस
0: अकॉर्डिंग।
1: के
0: लेकिन
1: अकॉर्डिंग
0: अगर
1: देखा
0: ब्रेन ट्यूमर
1: जाता
0: है
1: है।
0: तो नॉर्मली कोई ऑपरेट नहीं कर सकता सिवाय न्यूरोसर्जन के। ट्रीटमेंट जो एपिलिप्सी का है दौड़े का वो कोई भी कर सकता है, स्पेशली फिजिशियन और न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोसर्जन्स और पीडियाट्रिशियंस इन बच्चों में, और इवन प्रेग्नेंट लेडीज में भी होती है, जैसे किसी का बीपी बढ़ जाता है तब
1: जी
0: भी दौड़ा पड़ता है, एक्लेम्शिया कहते हैं उसे, ठीक है, दौड़ा पड़ा, बीपी बढ़ा, उसको एक्लेम्शिया कहते हैं, सिर्फ बीपी बढ़ता तो प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, तो उसको गाइनेकोलॉजिस्ट भी ट्रीट करती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन मकसद है ये है कि पेशेंट का ठीक होना जरूरी है और किस कारण से हुआ है वो वजह जानना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और दिमाग में एक इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस हो गई है, तो शायद उसके लिए मुश्किल है, लेकिन एंटीबायोटिक से वो भी ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दे कैन टेक द ओपिनियन फ्रॉम द अदर हायर अथॉरिटीज और जो भी इसका स्पेशलिस्ट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब बीपी बढ़ता है तो गायनी दे आर नोइंग कि वो कैसे ट्रीट करते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, जो भी आपके आसपास डॉक्टर है उसको जानकारी है वो ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफिकल्ट होती हैं ट्रीट करना, जिनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है, तो उसके लिए वो अपने हायर जो भी डॉक्टर अवेलेबल उनसे बात कर लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं, रेफर कर देते हैं, ऐसा होता है।
1: अच्छा, जैसे कि आपने ये बताया कि जो शारीरिक संरचना में जो कुछ अगर ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ियां होती है, तो उसकी वजह से इस तरह के दौरे या कुछ और समस्याएं आती
0: जी
1: हैं या बुखार। कई लोग कुछ जैसे अंधविश्वास भी हम लोगों का काफ़ी प्रचलित रहता
0: मिथ्स
1: है,
0: हैं,
1: मिथ्स
0: हाँ
1: बहुत सारे रहते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया या टोटका हो
0: हाँ
1: गया, तो इस वजह से भी कई बार होता है लोग झाड़ फूक में चले जाते हैं, दवाइयाँ ना लेकर इलाज ना कराकर मरीज को ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ इन सब चीज़ों से वो
0: कभी
1: करते
0: कभी
1: हैं।
0: इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। सम स्टडीज हैं ऐसे कहती हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो दौड़े बार बार पड़ते हैं उनमें एक
1: जी
0: स्टडी ये भी है कि वो लोग कहते हैं कि इंडियन सिनेरियो में ज़्यादा दौड़े उन लोगों को पड़ते हैं जो दवाई छोड़ देते हैं,
1: अच्छा
0: और उनमें जब रीज़न उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपनी स्टडीज में तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट दवाई इसलिए छोड़ दे रहा कि लिटिल बिट कॉस्टली है तो और लॉन्ग ड्यूरेशन तक है। और एक मिथ ये भी है बीच में, जैसे आप अक्सर देखते होंगे एक सोसाइटी में एक मिथ है कि डॉक्टर साहब दवाई खा रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है,
1: छोड़ दे।
0: छोड़ दे, वो उनको जानकारी, जैसे किसी भी दवाई, जैसे शुगर है किसी को या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर थायराइड है, जो ऐसी डिजीज हैं आप दवाई खाते रहोगे आप सही रहोगे, आप छोड़ोगे तो वो फ्लक्चुएट करेगी या बढ़ेगी, तो ऐसी ब्रेन का है, ब्रेन बिल्कुल लाइक ए स्प्रिंग है, तो आपने स्प्रिंग को दबा दिया बहुत ज़्यादा जोर से और आप सडनली रिलीज कर रहे हो तो वो डैमेज करेगा, उसको स्लोली स्लोली रिलीज करना होता है, एंड सी कि उसका रिपरकशन बहुत तेज ना हो, प्रॉब्लम ज़्यादा ना करे, इसलिए स्लोली स्लोली विड्रॉ करते हैं। कुछ
1: अच्छा जी
0: ड्रग्स को विड्रॉ करने का बिल्कुल वैसा जैसे आपने स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा ताकत से दबा रखा है और सडनली आप रिलीज कर दीजिए
1: जी
0: तो वो डैमेज करेगा, वो हिट करेगा, कूदेगा, ऐसे होगा, ऐसी ब्रेन है, ब्रेन में भी आप हल्के हल्के मेडिसिन को रिलीज करना शुरू करते हो कि एक ड्यूरेशन तक चलाई है आपने मेडिसिन, पेशेंट को अब 2 साल तक दौड़ा नहीं पड़ा, हल्के हल्के आपने डोज कम करी,

0: हृदय का कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है, यानी ब्रेन अब सेटल डाउन है, तब आप बंद कर सकते हो। हाँ ये होता है।
1: जैसे आप बता रहे हैं कि इसके इलाज में पूरी तरह से अगर स्थायी रूप से इलाज चाहें तो उसमें काफी लंबा समय लग जाता है,
0: हाँ
1: तो इसमें क्या कुछ परहेज वगैरह की भी जरूरत पड़ती है या जीवन शैली में कुछ परिवर्तन इसमें?
0: सीजर डिसऑर्डर में नॉर्मली कोई परहेज की जरूरत नहीं होती। सम ऑफ द मतलब कहते हैं कि कुछ स्टडीज कहती हैं कि नींद प्रॉपर होनी चाहिए,
1: जी
0: एंजाइटीज, नींद नींद अगर नहीं है प्रॉपर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, कि ब्रेन जितना अवेक रहेगा उसमें उतने एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम रहेगी। जैसे मैंने बताया ना, वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं नॉर्मली हम, जैसे किसी को डायबिटीज़ क्यों हो रही है तो लोग कहते हैं मोटापे से हो रही है, तो
1: जी जी
0: प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, स्ट्रेस हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी ब्रेन में भी चीज़ें हरकत हो रही है तो स्ट्रेस हो रही है, या फिर ब्रेन बहुत स्टिमुलेट हो रहा है। सम ऑफ द पेय पदार्थ में भी कहते हैं कि कॉफ़ी स्टिमुलेंट होती है तो उसको अवॉइड करते हैं। अब इनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि स्टिमुलेशन जो करता है ब्रेन को, उन चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे सबसे ज़्यादा हम अपने पेशेंट में देखते हैं कि नींद जिसे कम आती है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, उसमें ज़्यादा इंसिडेंस होते हैं या फिर रिकरेंस चांसेस होते हैं दौड़े पड़ने के,
1: दोहराने के
0: और
1: सर।
0: डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना।
1: अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कि हमने इलाज चलाई, पूरा कोर्स किया 10 साल 7 साल जो भी चीज़ है, उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग एकदम स्वस्थ हैं, उसके बाद भी लौटने के भी चांसेस इसमें बने रहते हैं?
0: नहीं, नॉर्मली जैसे मैंने बताया ना कि सीजर फ्री है, इपिलिप्सी फ्री है। जैसे एक गाइडलाइन इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट इपिलिप्सी, एक सोसाइटी है, उसने अपनी एक गाइडलाइन बना दी कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा पेशेंट्स में देखा, और अगर ये पेशेंट 10 ईयर्स तक, 5 ईयर विद मेडिसिन और 5 ईयर विदाउट मेडिसिन फ्री रहता है, तो इसमें इपिलिप्सी होने दोबारा इसी कारण की वजह से दोबारा होना संभव नहीं है, बहुत कम
1: अच्छा,
0: चांसेस हैं।
1: फिर कोई दूसरा कारण ही
0: इफ
1: अगर?
0: अनदर कॉज, जैसे अभी पेशेंट को बुखार के वजह से दौड़े पड़ रहे थे, बहुत कम है, और ये थोड़ी सी स्टिग्मा है अगर आप ऐसा बोल रहे हो किसी को कि अभी आपको फीवर के वजह से दौड़े पड़ रहे थे, वो फीवर फिर खत्म हो गया, दौड़े रुक गए, सब कुछ सही है, 20 साल तक 25 साल तक पेशेंट ठीक रहा, और उसके बाद सडनली उसको इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, किसी भी कारण के वजह से, पेशाब में इन्फेक्शन हुआ, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ जो दिमाग पर चढ़ गया उसके, या फिर किसी का अनफॉर्चुनेटली ट्यूमर हो गया ब्रेन में, तो आप उसका उससे रिलेशन नहीं है कुछ, एक नई चीज़ पैदा हुई ना दिमाग में, तो वो उससे आप रिलेट नहीं कर सकते कि इसको वैसे बोलते हैं।
1: अच्छा, इससे जो होता है इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? जैसे जिसको अगर दौरे पड़ रहे हैं तो क्या शारीरिक रूप से क्या अक्षमता आ
0: हाँ
1: सकती है
0: तो
1: किसी
0: एक
1: तरह की
0: ये है
1: चीज से?
0: कि बार बार किसी को दौड़े पड़ रहे हैं तो प्रिकॉशन ही लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को हेडेक होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा, बार बार गिर जा रहा है, या फिर इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं
1: गिरने की
0: आप
1: वजह से
0: गिरने की वजह
1: अचानक
0: से।
1: कहीं
0: हाँ
1: बाहर
0: तो
1: जा रहे
0: हम
1: हैं?
0: नॉर्मली अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को जिसको दौड़े पड़ते हैं उसको आप कोई भी हैबिट, मतलब कोई भी रोड ट्रैफिक जो भी आप रूल्स फॉलो कर, वो तो करते ही हैं, स्पेशली आप जैसे गाड़ी चलाने का अवॉइड करते हैं, ड्राइविंग को मना है, या फिर हैवी मशीनरी जहाँ यूज़ होती है वहाँ जाना मना है, कि अगर आपको दौड़े पड़ रहे हैं और आपने अभी मेडिसिन स्टार्ट की है तो आप कुछ दिन के लिए आप प्रिकॉशन लीजिए कि आप वहाँ पर नहीं जाइए, क्योंकि अगर वेल कंट्रोल्ड है नो इफेक्ट, अगर वेल कंट्रोल नहीं है, आप मेडिसिन चला रहे हो फिर भी पेशेंट को कभी कभी महीने में 2 महीने में एक बार पड़ जाता है, और तो आपने डोज बढ़ाई फिर कंट्रोल हो गया, ठीक है, लेकिन हम पेशेंट को ये साथ वालों को एडवाइस करते हैं कि आप ड्राइविंग करना, ड्राइविंग के लिए अवॉइड करिए, या फिर जहाँ पे हैवी मशीनरी यूज़ होती है वहाँ पर जाना अवॉइड करिए।
1: तो एक सामान्य जीवन जिया जा सकता है अगर ये समस्या
0: हाँ
1: है उसके साथ
0: ये
1: कि?
0: कोई ऐसे स्टिग्मा है फॉर
1: अच्छा,
0: बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनमें एपिलिप्सी होती है, मिर्गी होती है, और ये ट्रीटेबल है, वी हैव लॉट ऑफ
1: ट्रीटेबल है?
0: पेशेंट, आज ये पेशेंट आज इसमें दिमाग में कीड़े हो जाते हैं लोगों के, आपने सुना होगा न्यूरोसिस्टिस दिमाग में
1: बिल्कुल।
0: कीड़े हैं, कुछ लोगों में मिथ है कि गोभी खाने से हो जाते हैं, बंद गोभी खाते हैं
1: हाँ,
0: उससे हो
1: ये भी
0: जाते हैं,
1: एक।
0: तो बहुत सारे लोगों के हैं, वो ऐसा नहीं है। आई हैव सो मैनी वीडियोज ओवर दिस, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बताया कि उसके रीजंस हैं, उसके रीजन बंद गोभी से नहीं है, बंद गोभी से नहीं है असल में, वो गंदगी से है रिलेशन,
1: जी
0: ठीक है, तो आप गंदे हाथ से आप खाना खा रहे हो, और वॉशरूम गए आपने हाथ हैंड वॉश नहीं किया, या फिर आप कहीं भी काम से आया था खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं किया, या आपको पानी खराब आ रहा है, या आपकी सब्जी जो है ना पकने से पहले धुली नहीं है, ठीक है, तो इन्फेक्शन तो कहीं भी फैल सकता है ना, ये कैबेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कैबेज का सिर्फ एक रिलेशन ये है कि कैबेज बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो जिग जैग होती है, आप उसके पत्ते देखोगे ना बहुत सारे, तो उसको धोना मुश्किल होता है, आप बहुत अच्छी जगह पे देखोगे तो आप देखोगे वो काट के धोई जाती है, हमारे यहाँ काटने से पहले धोई जाती है।
1: काटने से पहले धोई जाती है,
0: हाँ तो ये प्रॉब्लम है,
1: बिल्कुल।
0: इसमें एक थोड़ा सा एक इशू है कि आप बाहर देखोगे पहले काटने से पहले धोई गई, काट लिया आपने, जब बस छोटे छोटे

0: आपके जितनी भी आपको काटनी है उसके हिसाब से, और उसके बाद भी धोई जाए फ्लश रनिंग वाटर में। जब रनिंग वाटर में धोएंगे तभी वो सही से
1: गंदगी
0: धुलेगी।
1: निकलेगी, बिल्कुल सही
0: हाँ,
1: बात है।
0: तो आप कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत सारी लेयरिंग है, जिग जैग है, जैसे अनियन है, उसको भी धोना डिफिकल्ट है, लेकिन उस पर एक कवर क्यों होती है, और या फिर जो स्मूथ चीज़ें होती हैं उनको धोना आसान है, जैसे लौकी है उसको धोना आसान है क्योंकि वो सिंगल है, आपने रनिंग वाटर डाल ली साफ हो गया। जिसमें जिग जैग मोशन है तो अंदर वो आपको अंदर वाली कवर में पता नहीं है, अंदर कीड़ा है,
1: क्या
0: खराब
1: है, सही
0: है,
1: बात है।
0: सफाई नहीं है उसके अंदर, मुश्किल है, तो आप उसको कट करिए फिर धोइए, ये
1: अच्छा,
0: तरीका।
1: जैसे कि आपने बताया डॉक्टर साहब इसके बारे में, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या इसका जेनेटिक भी होता है क्या सर, कि आने वाली
0: हाँ,
1: पीढ़ी को भी?
0: सम ऑफ द कॉजेज हैं, सम ऑफ द कॉजेज हैं जो बेनाइल एपिलेप्सी में होते हैं, और जेनेटिक भी है कॉरर की, सम ऑफ द सिंड्रोम्स कहते हैं जिन्हें।
1: अच्छा
0: हाँ, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, ठीक है, उनमें भी होते हैं,
1: ये जेनेटिकली भी है,
0: जेनेटिकली
1: ये
0: भी होते हैं,
1: हो
0: लेकिन
1: सकता है,
0: बहुत रेयर मिलते हैं देखने को, लेकिन होते हैं,
1: होते हैं
0: जैसे
1: कुछ
0: फैमिली में
1: केसेस।
0: कुछ लोगों को पेशेंट में है, तो एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को भी, तीसरे बच्चे को भी है। जुवेनाइल एपिलेप्सी होती है जो मतलब कॉमनली अदर फैमिली में रन कर रही है, ऐसा भी होता है।
1: कई पीढ़ियों तक वो आगे
0: हाँ,
1: चलने
0: लेकिन वो
1: वाला
0: ट्रीटेबल हैं, कुछ
1: ट्रीटेबल है,
0: चीज़ें
1: उसके बावजूद
0: ट्रीटेबल हैं, कुछ
1: भी।
0: चीज़ें नहीं है ट्रीटेबल, तो पेशेंट को एडवाइस करना होता है उसके अकॉर्डिंगली कि कैसे करना।
1: अच्छा, इनकी जो मेडिसिन होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ रहते हैं
0: कुछ
1: क्या?
0: मेडिसिन जैसे अब न्यूर एंटीपिलिप्टिक ड्रग्स हैं, मतलब जो भी एपिलेप्सी में मतलब मिर्गी में दी जा रही हैं, जो नई दवाइयाँ हैं उनके बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, जो पहले आती थी शुरू में जब हम फेनिटोइन वगैरह यूज़ करते थे, तो उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं, जिससे पेशेंट को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो दवाइयों में सिर्फ ये कॉस्ट का प्रॉब्लम है कि थोड़ी सस्ती होती हैं वो कॉस्ट, और आप जो न्यूअर एंटीबायोटिक है थोड़ी कॉस्टली हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट कम है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको जज करना होता है कि किसको क्या मेडिसिन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हाँ, पेशेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका दौड़ाना पड़े
1: जी
0: इन कंपेरिजन टू अदर थिंग्स, कि अगर आपको दौड़ा पड़ गया तो आपको, जैसे 8 रुपए की टैबलेट है और आप टैबलेट नहीं खा रहे हो, आपको दौड़ा पड़ गया तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी, ये प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि आप मेडिसिन प्रॉपरली खाएं।
1: अच्छा, सारे केसेस में मुझे लगता है कि दवाइयों से ट्रीटमेंट हो जाता है इसका, या कई बार शल्य चिकित्सा की भी जरूरत पड़ती है?
0: हाँ, एपिलिप्सी सर्जरी भी एक चीज होती है,
1: जी
0: सम ऑफ द डिजीज, जैसे कोई भी ऐसी एपिलिप्सी है या फिर जैसे दौड़ा पड़ना है, कुछ दौड़े कभी रुकते ही नहीं है,
1: जी
0: तो उसका एक क्राइटेरिया जैसे बनाया ना, हर चीज़ का एक गाइडलाइन बना दी गई है कि अगर 1 साल तक या 1-2 साल तक आप दवाई दे रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हो, फिर भी वो दौड़ा नहीं रुक रहा, तब वो एक क्राइटेरिया में आ गया है। अभी रिसेंट में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में हो रही हैं, एपिलिप्सी सर्जरी कहते हैं उसे, सम ऑफ द ब्रेन का, जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एक एबनॉर्मल एरिया है जो डिस्चार्ज पैदा कर रहा है, जैसे वायरिंग है आपकी, अब एक जगह से करंट बार बार पैदा हो रही है,
1: जी बिल्कुल।
0: ठीक है, और आप बल्ब जला रहे हो बार बार, तो क्या आप क्या करोगे, या तो वायर चेंज करोगे या फिर उसके साइड को कट करके दोबारा जोड़
1: दोबारा
0: दोगे,
1: जोड़ेंगे, बिल्कुल।
0: बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में जो भी डैमेज एरिया है वो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे ऊपर से कोई एरिया है जो डैमेज कर रहा है तो हमको पता चल जाता है कि ये वाला एरिया डैमेज है जो हमें परेशान कर रहा है, यू टेक दिस आउट तो डिस्चार्ज रुक जाएंगे, लेकिन कुछ एरिया जो अंदर की तरफ होता है दिमाग के, क्योंकि दिमाग तो एक बॉल की तरह है, ठीक है, ब्रेन हमारा बॉल की तरह है, तो जो सरफेस पे है ऊपर की तरफ है उसको तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ स्टिमुलेट रखा, कुछ ग्रिड रखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये वाला है, इससे यहाँ से एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहे हैं, इसको आप निकाल दोगे तो हो सकता है ठीक हो जाए पेशेंट। कुछ एरिया होता है डीपर स्ट्रक्चर में होता है अंदर की तरफ, उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, उसके भी आप बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो उससे भी वो भी पता चल जाता है,
1: तो
0: तो
1: इसमें तो
0: एपिलेप्सी
1: थोड़ा सा
0: सर्जरी
1: टाइम लगता होगा रिकवरी
0: कॉस्टली
1: में,
0: हैं,
1: कॉस्टली
0: कॉस्टली
1: भी है,
0: सर्जरीज हैं, और ज़रूरत है तो करनी पड़ेंगी,
1: करनी पड़ेगी, और टाइम टेकेंगे
0: टाइम
1: ये
0: टेकिंग
1: क्या?
0: है,
1: अच्छा,
0: हाँ बहुत टाइम टेकिंग है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं सब में हो रही हैं।
1: लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम होगा मुझे
0: हाँ,
1: लगता है,
0: परसेंटेज कम है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट तो 2 ड्रग, एक्सम 3 ड्रग से रुक जाती हैं,
1: हो जाता है।
0: एक ड्रग से भी, एक मोस्टली एक ही ड्रग खाते हैं, और नॉर्मली कॉमनली तो हमारे पास पेशेंट जो आते हैं वो मेनली इन्फेक्शन के होते हैं, जो में हम लोगों के पास एनकाउंटर होते हैं, या फिर किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं है, हमने
1: अच्छा,
0: MRI भी कराई नॉर्मल है, EEG भी कराया नॉर्मल है, फिर भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से, तो आप उसको नॉर्मल आप मेडिसिन देते हो 1-2 टैबलेट्स, दे आर टेकिंग, दे आर ओके, दे आर डूइंग गुड जॉब, नो प्रॉब्लम।
1: तो श्रोताओं, आज थे हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद, और हम बात कर रहे थे दौरे पड़ने की बीमारी और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। अगले एपिसोड में हम

0: पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। अनुमति दीजिए गौरव सक्सेना को, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक रोहेलखंड का आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली।
2: मानसिक तनाव, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, सोचते सोचते खो जाना, याददाश्त की कमी, परेशान रहना, रोज के कार्य करने में असक्षमता, मेंटल ट्रॉमा जैसी किसी भी समस्या में परामर्श एवं सुझाव करें गंगाशील अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर अभिलाषा गुप्ता से।
3: कैंसर के इलाज का अति आधुनिक अस्पताल,
4: गुर्दे और पेशाब संबंधी बीमारियों के इलाज की सभी सुविधाएं,
5: महिलाओं के बांझपन और जठराने की सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा,
4: स्किन अथवा त्वचा के रोगियों का संपूर्ण इलाज,
5: 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
4: आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के इलाज के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल गंगाशील हॉस्पिटल दीदीपुरम बरेली। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 8273254444।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, विषय था दौरे पड़ने की बीमारी और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर शकील अहमद और आपसे बातचीत कर रहे थे गौरव सक्सेना। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर,
7: 8.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
8: FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com।

0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमले विचार एफएम पर। श्रोताओं, रात के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात्रि के 8 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं मौलिक अधिकार और मानवाधिकार, इस विषय पर डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की वार्ता।
2: भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विश्व के सबसे विस्तृत एवं प्रगतिशील संविधानों में से एक है। इसके भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, प्रत्येक भारतीय नागरिक को राज्य की मनमानी शक्ति से संरक्षण प्रदान करते हैं। दूसरी ओर मानवाधिकार वह व्यापक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म या लिंग का हो। मौलिक अधिकारों की अवधारणा पे अगर हम जाएं, तो भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है। ये अधिकार न्यायोचित हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संरक्षण मांग सकता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, जहां पर कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सरकारी रोजगार में अवसर की समानता, अस्पृश्यता उन्मूलन आदि बातों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति वाक एवं अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है। सभा, संगठन, आवागमन, निकास एवं वृत्त की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 21, जो भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है, जिसमें बलात्श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया है, जिसके अंतर्गत अंतःकरण एवं धर्म के आचरण की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विध द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में इसकी व्यापक व्याख्या की है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब ने कहा था कि जीवन का अर्थ केवल जैविक अस्तित्व नहीं है, बल्कि गरिमा

0: पूर्ण जीवन है। इसी व्याख्या के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, भोजन का अधिकार और अभी वर्ष 2017 में निजता का अधिकार, जो कि 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय बना। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्यावरण का भी अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। मानवाधिकार अगर देखा जाए तो वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के आधार पर प्राप्त होते हैं। ये जन्मजात होते हैं, अहस्तांतरणीय होते हैं, अविभाज्य होते हैं एवं सार्वभौमिक होते हैं। इनका उद्गम प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अंतर्गत पाया जाता है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण को लेकर के 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना तथा इसी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग की भी स्थापना की गई। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश के नागरिकों को वहां के संविधान के अंतर्गत दिए जाते हैं और मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो मानव होने मात्र के कारण उनको उपलब्ध होते हैं। भारत में मानव अधिकार के संरक्षण तंत्र को अगर हम देखें तो NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार है और इस मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है या राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे न्यायिक उपाय जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हैं और इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करके उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय लोगों के मानव अधिकारों की संरक्षा करता है, चाहे वह बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका हो, चाहे वह परमादेश की याचिका हो, उत्प्रेषण की याचिका हो, प्रतिषेध की याचिका हो या अधिकार परीक्षा की याचिका हो। इसी के साथ साथ संसदीय तंत्र में भी मानवाधिकार संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए हैं जिनमें मानवाधिकार समितियां बनी हुई हैं और इसके साथ साथ लोकपाल एवं लोकायुक्त के भी कुछ कार्य मानवाधिकारों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ विशेष न्यायालय जिसमें SC ST अत्याचार न्यायालय, महिला न्यायालय, पॉक्सो न्यायालय की भी स्थापना की गई है और इन सब की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक कानून वर्ष 2005 में बना जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं और इस कानून के अंतर्गत भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के माध्यम से मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात की जा सकती है। अर्थात मौलिक अधिकार और मानवाधिकार दोनों ही मानवीय गरिमा की रक्षा करते हैं, दोनों की जड़ें प्राकृतिक विधि के अंतर्गत निहित पाई जाती हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने UDHR 1948 से बहुत पहले ही संविधान सभा की बहसों में इन अधिकारों की चर्चा की थी। वस्तुतः भारत ने UDHR के मसौदे को आकार देने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। 21वीं शताब्दी में तकनीकी क्रांति ने नए मानवाधिकार प्रश्न उठाए हैं। अगर हम KS पुट्टास्वामी निर्णय, जो कि निजता के निर्णय के रूप में या राइट टू प्राइवेसी के निर्णय के रूप में जाना जाता है, में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। इस निर्णय के प्रकाश में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जिसे DPDPA एक्ट कहते हैं, 2023 अधिनियमित किया गया है। मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों के संदर्भ में एक बात जो करनी अत्यंतधिक महत्वपूर्ण हो जाती है यह कि ये दोनों अवधारणाएं परस्पर एक दूसरे की पूरक हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 ने न केवल अपने नागरिकों को सशक्त किया है बल्कि वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन को भी प्रेरणा दी है। 21वीं शताब्दी में चुनौतियां नई हैं, AI है, डिजिटल निगरानी, जलवायु परिवर्तन, प्रवासन संकट, किंतु मूल प्रश्न वही है जो 1215 में मैग्ना कार्टा से लेकर 1948 के UDHR तक रहा है कि क्या राज्य की शक्ति व्यक्ति की गरिमा से बड़ी है। भारतीय संविधान इसका उत्तर देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है और यही हमारा संवैधानिक संकल्प है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे डॉक्टर राजीव कुमार।

0: सिंह की वार्ता, विषय था मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 8:10। इसी के साथ आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस खूबसूरत सी गजल के साथ जिसे लिखा है कतील शिफाई ने।

सुगम संगीत के आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल जिसे लिखा राहत इंदौरी ने।

राहत इंदौरी की लिखी और जगजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सी गजल। और सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लियाकत अली अजीम की लिखी ये खूबसूरत सी गजल, जिसे आवाज दी जगजीत सिंह ने।

लियाकत अली अजीम की कलमबंद ये खूबसूरत सी गज़ल जिसे आवाज़ दी जगजीत सिंह ने अभी आप सुन रहे थे। और इसी खूबसूरत सी गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताज़ा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर

मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 8:30 और इसी के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में आपको सुनवाने जा रहे हैं कलंक फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं अमित भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है

कलंक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं निकिता और अरिजीत सिंह की आवाजों में केदारनाथ फिल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

केदारनाथ फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थी अरिजीत सिंह और निकिता की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अब अंतिम गीत फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत प्रीतम का।

0: और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम जीतकालीन तत्परता से

0: जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की खेड़ से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने

से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन और फिल्म का नाम है समाधि।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की, और फिल्म का नाम है इशारा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है पूजा के फूल।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम सुन लीजिए हिमालय की गोद में।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है संगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया जाता, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद सम्मानित कपूर परिवार की सदस्य हैं। पर दादा पृथ्वीराज कपूर, दादा राज कपूर, पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता की लाडली बेटी करिश्मा प्यार से पुकारी जाती हैं लोलो। वैसे घर में कोई इन्हें लोलीमा तो कोई लोला भी कहता है।

करिश्मा कपूर परिवार की ऐसी पहली महिला सदस्य हैं जिन्होंने फिल्मों में प्रवेश किया। हालांकि इससे पहले उनकी मां बबीता और चाची नीतू सिंह भी फिल्मों से जुड़ी थीं, लेकिन कपूर परिवार से जुड़ने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया। और जब करिश्मा ने फिल्मों में काम करने की बात अपने परिवार के सामने रखी तो उनकी ये बात मानने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और तब उनका साथ दिया उनकी माँ ने और इस तरह करिश्मा आ गई फिल्मों में। तब उनकी पहली फिल्म आई प्रेम कैदी।

करिश्मा को अपने फिल्मी करियर को संवारने में उनकी माँ बबीता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और करिश्मा ने भी अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि फिल्मों में आने का उनका फैसला गलत नहीं था।

करिश्मा कपूर के शुरुआती फिल्मी करियर में आने वाली ज्यादातर फिल्में गोविंदा के साथ आईं और बाकी की फिल्मों में भी करिश्मा के डांसेज और खूबसूरती का करिश्मा उनकी एक्टिंग पर हावी रहा।

करिश्मा कपूर एक संवेदनशील अभिनेत्री हैं, ये बात बताने का मौका करिश्मा को नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐसे मौके की तलाश में थी और आखिर ये मौका उन्हें दिया श्याम बेनेगल ने। फिल्म थी जुबैदा।

0: अपने अभिनय का एक और रूप उन्होंने दिखाया शाहरुख और माधुरी के साथ, फिल्म थी दिल तो पागल है।
1: मुझको हुई ना पगल।

करिश्मा कपूर की कुछ और चर्चित फिल्में थीं अनाड़ी, खुद्दार, राजा बाबू, कुली नंबर वन, बीवी नंबर वन, शक्ति, राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल। आइए सुने कुछ सुरीली झलकें।

0: करिश्मा के करिश्माई हुस्न और जादुई अदाकारी का दीवाना तो पूरा जमाना है, और शायद ये बात वो भी अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए फिल्मों से नाता तोड़ना वो भी नहीं चाहेंगे।
1: दादू,

0: रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

43 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है रात के 10 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम

ओल्ड इज गोल्ड, और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, लिखा है कमर जलालाबादी ने, और धुन बनाई है ओपी ने।

आशा भोसले की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को मेरे महबूब इस फिल्म के गीत में। गीत के बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का।

मेरे महबूब, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दिल्ली का ठग। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, शैलेंद्र के लिखे बोल हैं और संगीत रवि का।

इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थीं किशोर कुमार और आशा भोसले की। आइए सुनते हैं लव इन टोक्यो, इस फिल्म का गीत जिसे गाया लता मंगेशकर ने, लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन तैयार की शंकर जयकिशन।

0: एक खास ही परिस्थितियों की जिंदगी का नारा मनाया।
1: अंकल।

लव इन टोक्यो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं किशोर कुमार को मिस्टर एक्स इन बॉम्बे इस फिल्म के गीत में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम हम दोनों। गीत के बोल हैं साहिर के और संगीत जयदेव।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे हम दोनों, इस फिल्म का गीत। और इसी पुराने फिल्मी नगमे के साथ ही आज का ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास का ख्याल गायन, पहले राग गोरख कल्याण में, उसके बाद राग मिश्र पहाड़ी में। आपके साथ हारमोनियम पर संगत दी दिनकर द्विवेदी ने और तबले पर सौरभ से।

0: अभी आप सुन रहे थे पार्थ प्रतिम दास का ख्याल गायन, पहले राग गोरख कल्याण में, उसके बाद राग मिश्र पहाड़ी में। आपके साथ हारमोनियम पर संगत दे रहे थे दिनकर द्विवेदी और तबले पर सौरभ सिंह। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों

0: की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।